मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:57 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच

रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is...

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समूह स्वरों में देशभक्ति गीत के साथ।

ओम कहो, साई कहो, रहमन कहो या राम, सब में उसकी जोत है अनगन उसके नाम। प्रभु सवारे काम सब, शरण होए जब नाम, वो मालिक तो एक है जिसने रचा जहान। मुस्लिम तो सजदा करते, हिंदू धरते ध्यान, ओम कहो, साई कहो, रहमन कहो या राम।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।
1: आम तौर पर आहार का अर्थ वे सभी भोज्य पदार्थ जिन्हें हम भोजन के रूप में शामिल करते हैं

0: जाता रहा है, किंतु इसका अर्थ काफी व्यापक है। मेरी समझ से भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त वे सभी चीजें जिसे हम आँखों, कानों तथा अन्य माध्यम से शरीर में प्रवेशित कराते हैं, आहार के अंतर्गत आती हैं। आहार का संबंध हमारे स्वास्थ्य से तो है ही, आहार का संबंध हमारे स्वभाव से भी है। उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। अर्थात आहार के शुद्ध होने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा के शुद्ध होने से हमारी चेतना का विकास होता है, चेतना के विकास से हमारी ज्ञान की ग्रंथियां खुलती हैं, और जब हमारी ज्ञान की ग्रंथियां खुलती हैं तब मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। चेतना के आधार पर मनुष्य का स्थान सभी प्राणियों में अग्रणी है। आहार नाल एवं दांतों की संरचना के आधार पर मनुष्य स्वभावतः शाकाहारी प्राणी है, किंतु इसके विपरीत आज हम मांसाहार को शौकिया अपनाए हुए हैं। इस मामले में जानवर हमसे बेहतर हैं। जानवर अपने स्वभाव के अनुरूप हैं। भूख से तड़पता हुआ बैल भी मांस की ओर आकृष्ट नहीं होता है, किंतु मनुष्य शाकाहार त्याग कर मांस को अपना भोजन बना रहा है। यह मनुष्य के स्वभाव के विपरीत है। आहार का स्वभाव से विपरीत होना व्यक्ति के आचार, विचार और व्यवहार को प्रभावित करता है, जो स्वयं व्यक्ति ही नहीं वरन समाज के अन्य क्षेत्रों पर भी बुरा असर डालता है। हम धीरे धीरे गलत सोचकर, गलत देखकर, गलत काम कर आनंद लेते हैं, और मजे की बात है कि इन गलत आदतों का हमें आभास भी नहीं होता। हमारे स्वभाव से उचित अनुचित पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है। मैं कह सकता हूँ हमारा गलत आहार कई बीमारियों को आमंत्रित करता है। विपरीत आहार हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से रुग्ण बनाता है। मनुष्य स्वभाव से अहिंसक है, किंतु हम मांसाहार में भूल रहे हैं कि अपने भोजन के लिए किसी पशु की हत्या करना हिंसा की पराकाष्ठा है। धीरे धीरे हमें हिंसा करने में, हिंसा देखने में, सोचने में मजा आने लगता है। वैसे कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं है। वनस्पतियों में भी प्राण है, किंतु कोशिका की बनावट के आधार पर मांस में सड़न क्रिया वनस्पतियों की तुलना में शीघ्र प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही किसान निकलता है, केशिकाओं में बहने वाला रुधिर थमता है, मांस में सड़न क्रिया प्रारंभ हो जाती है। भले ही हमें मांस के सड़ने का बोध नहीं होता है, यही मांस हम न जाने कितनी देर के बाद ग्रहण करते हैं, यह धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत असर डालता है। यद्यपि शाकाहार भी पूर्ण रूपेण अहिंसक नहीं है, किंतु मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार में बहुत कम हिंसा है, क्योंकि वनस्पतियों में चेतना या स्नायु तंत्र का विकास नहीं होता है। आहार के मामले में हम जानवरों से भी भटके हुए हैं। धन के संचय की प्रवृत्ति हमारे अंदर आहार में भी देखने को मिलती है। हम अपना आहार या भोजन शरीर की आवश्यकता के अनुरूप तय नहीं करते, किंतु अधिकतर भोजन हम अपनी आवश्यकता के विपरीत लेते हैं। ध्यानपूर्वक सोचें तो हमारा शरीर, हमारा मन वही मांगता है जिस चीज की हमारे अंदर जरूरत है। थोड़ा सा भी हम यदि अपने स्वास्थ्य और शरीर पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि जब हम सर्दी या जुकाम से ग्रस्त हों, उस समय हमारा मन दही, खट्टी चीजें या ठंडी चीजों से दूर भागता है। यही खट्टी चीजें या ठंडी चीजें हमें शीत ऋतु में उतनी प्यारी नहीं लगती जितनी प्यारी हमें गर्मी के दिनों में लगती हैं। हम अपने आहार के बारे में ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमारा आहार स्वतः ठीक होगा, फिर हमारा स्वभाव भी मानव के अनुरूप होगा, तब हमारा जीवन आनंदमय होगा।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर था सुनील कुमार का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। गायिका हैं कविता कृष्णमूर्ति, संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

पार्वती की हस्तरेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिवजी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। गायिका थी कविता कृष्णमूर्ति, संगीत आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि सामये की बेड़ा खाड़ा चौकोट।
1: किसान दाता दीदी मन जोंदरा बल्लो ने तो तुम्हें जान आश्चे कि जोंदरा के आमी भुजुन बले खाऊं से और एक भाजुन काय रसिया लाई फुटाउन बले खाऊं से। खातो लोग काय सुंदर जोंदरा चो पेज बले पीऊवात और कोनी कोनी ए चो पिसान पिसुन रोटी बले खाऊवात। आज मैं तुमके बरसा बतरने कमानी करतो जोंदरा फसल चो कमानी हुआट के सांगे से। सबले आगे जाना कि बेड़ा के कसन तैयार करतो राय। नगद पानी निस्को असन बारू बीती भूईने जोब जाप करून नगद लगड़ा मारून माटी के बिरबिरा बनाऊन देतो राय। मानतर सरासरी हार लगड़ा मारतो पहिल 2.5 एकड़ हिसाब ने 20 किलो फाली डाल डस्ट के मिसातो राय और 15 टन गोबर चो खत बले मिसातो राय। नगद मक्का बल्ले जोंदरा फसल का जे पहिल हार जोपतो बेरा माटी पलटतो नांगर ने जोपतो आए फेर पाछे देसी नांगर ने जोपतो राय। एचो कमानी का जे नगद किसिम बनात कंपोजिट किसिमात प्रमाणित बीज गंगा 2 डेक्कन 103 गंगा 11 विजय नवजोत जे 684 किरण जे 660 माही कंचन माही धवल अरुण डी 765 पूसा कंपोजिट 1 पूसा कंपोजिट 3 एचो संकर किसिम बनात चंदन मक्का 3 जवाहर मक्का 8 जवाहर मक्का 12 आरु किरण। फसल पाक तो हिसाब ने काय काय किसिम बनात एके बले मैं सांगुन दें से। झपके पाक तो बीती किसिम बनात जवाहर मक्का 8 जवाहर मक्का 12 पूसा कंपोजिट 2 पूसा अर्ली हाइब्रिड 1। मंजी समिया ने पाक तो बीती किसिम बनात नवजोत अरुण सरताज डेक्कन 107 जवाहर मक्का 13 बेरले पाक तो बीती किसिम बनात गंगा 11 प्रभात त्रिशुलता डेक्कन 103 डेक्कन 105। अदाय जाना बीजोपचार चुगोट के जोंधरा के गोटो किलो के 3 ग्राम थायरम ले उपचारित करतो राय। एचो पाछे एजेटोबैक्टर नावचो जीवाणु कल्चर ले 10 ग्राम के गोटो किलोग्राम बीज हिसाब ने उपचारित करतो राय। एक खरार सुना जोंधरा के गोटो किलो के 3 ग्राम थायरम ले उपचारित करतो राय। एचो पाछे एजेटोबैक्टर नावचो जीवाणु कल्चर ले 10 ग्राम के गोटो किलोग्राम बीज हिसाब ने उपचारित करतो राय। जोंधरा कमानी काजे कितरो बीज धरतो राय एके बले जाना 2.5 एकड़ हिसाब ने संकर बीज धरलो ने 15 ले 20 किलो बीज धरतो राय और असनी देसी किस्म चो बीज धरतो राय जाले 2.5 एकड़ चो हिसाब ने 20 ले 25 किलो बीज के धरतो राय। जोंधरा चो बुनतो वाटा जून सरासरी नहले जुलाई चो पहिल हफ्ता ने एचो काजे धाड़ी ले धाड़ी 60 सेंटीमीटर बल्ले 2 भीता महा और बूटा ले बूटा 20 सेंटीमीटर बल्ले 8 इंच महा लाफी संगातो राय। लेख करा कि बीज के 5 सेंटीमीटर ले आगर गढ़िया ने नीपुना। एचो काजे खत भात लागे से बुनतो पहिल खूबे गोबर खत दिलो आसे जाले 2.5 एकड़ ने 81 किलो यूरिया खूबे होए दे। संगे संगे सुपर फास्फेट पोटास के 175 और 67 किलो 2.5 एकड़ हिसाब ने लगातो राय। लाटा बूटा के मरला तो काजे एट्राजीन 9 किलोग्राम के 2.5 एकड़ हिसाब ने बुनलो पाछे मांतर अखरलो पहिल उपयोग करा। जोंदरा फसल ने लाटा बूटा आगर होलो ने 30 ले 35 दिन ने 2-4 D दवाई चो गोटो किलो के 2.5 एकड़ चो अखरलो लाटा बूटा मन ने छिचुन भाती लाटा बूटा के मरलाउक सकूं। एचो पानी झपातो और निकरातो वाट के बले जाना। बूटा 5 ले 15 दिन बेरा फेर मांडक बूटा रलो बेरा 30 ले 35 दिन ने फेर फूल फूटतो बेरा 50 ले 55 दिन ने फेर बीज फूटतो मूर बेरा

0: हम नी हो और यही समयाने पानी आगर बोले नी हो बेड़ाने भरू नी रहो नहाले फसल के नुकसान हो सके। किसान दादा दीदी मन असन नंगत वाट ने कमानी करून तुम्ही जोंधरा फसल चो आगर ले आगर उपजन पाऊ सकासे।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी बेड़ा खाड़ा चौकोट, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली में लीजिए सुनिए हिंगलाजिन माता पाड़। वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

हुलहुली में आप सुन रहे थे हिंगलाजिन मातापाड़। वादक कलाकार थे गणपति कडियारी और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का, तो लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। संदेश टू सोल्जर्स हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे शाम 4:00। इंग्लैंड के द ओवल लंदन में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल समाप्ति तक हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। क्रिकेट मैच का प्रसारण मीडियम वेव पर किया जाएगा। एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर शेष कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसका विवरण इस प्रकार है। क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे रात 10:00। सुबह 7:00 होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर आकर्षण। सुनिएगा कहानी ईमानदारी का इनाम। कहानी सुनाएंगी योगिता पानीग्राही और होगी मधुरिमा। लोक मंजरी में सुनेगा विभिन्न बोलियों में लोकगीत सुबह 8:30 पर। पाटावेनार में ध्रुवी लोकगीत, कलाकार होंगे जयती नाग और साथी। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म अर्पण के गीत सुबह 9:30 पर। सुबह 10:00 गुलशन में आप सुनेंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दू में प्रस्तुत करेंगे ध्रुवी आदिवासी गीत सुबह 10:30 पर। कलाकार होंगे महांगुराम और साथी। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:00। गैर फिल्मी गीतों गजल का कार्यक्रम गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 11:30।

आप सुनेंगे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी। हल्बी लोकगीत सुनिएगा। शाम 6:35 पर कलाकार होंगे सुदनी और साथी। बस्तर के स्वर शाम 7:21 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। रात 8 डांडामाली में सुनिएगा मुरई और साथियों के गाए ध्रुवी गीत। पिलामन काजेकोट में आप सुनेंगे सावित्रीबाई फूले के बारे में। रात 8:30 पर प्रस्तुति

0: कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकाई चेत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेष् विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन कप इत्यस्य 35.1 संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पेंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

नमस्कार श्रोताओं, आज के नमस्कार जगदलपुर के साथ मैं तृप्ति परिडा, स्वीकार कीजिए मेरा अभिवादन। नमस्कार जगदलपुर में आज आपके लिए है कहानी पाठ और मधुरिमा। तो आइए अगले कुछ पल बिताते हैं सुरीली गीतों और दिलचस्प बातों के साथ।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
3: श्रोताओ, आज 2 जुलाई को विश्व पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार संगठन की स्थापना के 70 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में की गई थी। इस संगठन की नींव 2 जुलाई 1924 को रखी गई थी। श्रोताओ, खेल पत्रकार केवल मैच का स्कोर नहीं बताते, बल्कि खिलाड़ियों के संघर्ष, मेहनत, जीत हार और जज्बे की कहानी भी दुनिया तक पहुंचाते हैं। उनकी निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग खेलों के प्रति विश्वास और उत्साह को मजबूत बनाती है। कई बार अनदेखी प्रतिभाओं को पहचान दिलाने में भी उनकी अहम भूमिका होती है। विश्व खेल पत्रकार दिवस हमें उन सभी पत्रकारों के समर्पण और ईमानदार प्रयासों को सम्मान देने का अवसर देता है जो खेल जगत की हर धड़कन को अपनी कलम और आवाज से हम तक पहुंचाते हैं। इस अवसर पर सभी खेल पत्रकारों को हार्दिक शुभकामनाएं और सम्मान प्रेषित है। घर्ष और जीत की असली कहानी वही समझ सकता है जो खेल की धड़कन को करीब से महसूस करे। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी ही गजल जो एहसासों की गहराई को बेहद खूबसूरती से बयां करती है।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा

0: एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: नमस्कार, जगदलपुर में लीजिए अब सुनिए कहानी ईमानदारी का इनाम। कहानी सुना रही है योगिता पानीग्राही।
4: श्रोताओं नमस्ते, मेरा नाम योगिता पानीग्राही है। मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेती और मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे, जबकि माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार का सहारा बनती थी। घर मिट्टी का था, बरसात में छत से पानी टपकता था, कई बार खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं होता। गरीबी के बावजूद मोहन के माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। वे हमेशा कहते थे, बेटा पैसा इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन चरित्र खोकर सब कुछ खो लेता है। मोहन इन बातों को दिल से बसाया हुआ है। वह सुबह जल्दी उठता और घर के कामों में माता पिता की मदद करता और फिर कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाता। पढ़ाई में वह होशियार था। उसके शिक्षक भी उससे बहुत प्रभावित मजाक उड़ाते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे सड़क किनारे एक चमड़े का बैग दिखाई दिया। उसे आसपास देखा पर कोई नहीं था। उसने बैग उठाया और खोल कर देखा। बैग में लाखों रुपए, कुछ जरूरी दस्तावेज और एक पहचान पत्र था। इतने सारे पैसे देखकर मोहन के मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर यह पैसा मेरे पास रह जाए तो हमारे घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। माँ को काम नहीं करना पड़ेगा, पिता को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगले क्षण उसने अपने माता पिता की सीख याद आ गई। उसने बैग लिया, घर ले आया। जब उसने सारी बात माता पिता को बताई तो पिता ने कहा, बेटा यह परीक्षा है, अगर तुम गलत रास्ता चुनते हो तो जिंदगी भर खुद की नजर में गिर जाओगे। मोहन ने तुरंत फैसला लिया कि वह बैग उसने असली मालिक को लौटाएगा। पहचान पत्र में शहर में एक बड़े व्यापारी विजय मल्होत्रा का नाम था। अगले दिन मोहन बस में बैठा शहर पहुंचा। काफी खोजबीन के बाद वह उस व्यापारी के घर पहुंचा। वहां का माहौल बहुत चिंताजनक था। व्यापारी और उसका परिवार कई दिनों से परेशान थे। जैसे ही मोहन ने बैग लौटाया, व्यापारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी है। उन्होंने मोहन को इनाम देना चाहा, लेकिन मोहन ने विनम्रता से मना कर दिया, मैंने यह काम इनाम के लिए नहीं किया। कुछ दिनों बाद व्यापारी स्वयं मोहन के गाँव पहुँचे। उन्होंने उसके घर की हालत देखी और सब कुछ समझ गए कि वास्तव में यह लड़का ईमानदार है। उन्होंने मोहन से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मोहन बिना देर किए जवाब दिया, मैं पढ़ लिखना चाहता हूँ। व्यापारी मुस्कुराए और बोले, आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। यह सुनकर मोहन के माता पिता की आंखें भर आई। अब मोहन पहले से अधिक मेहनत करने लगा, स्कूल में टॉप किया। सालों की मेहनत के बाद उसने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देने का निर्णय लिया। पहली और दूसरी बार भी सफलता नहीं मिली। कई लोग ने कहा, इतनी बड़ी परीक्षा तुम्हारे बस की नहीं, लेकिन मोहन ने

हार नहीं मानी, तीसरी बार परीक्षा दी और कुछ दिनों के परिणाम आया। पूरे जिले में खुशी की लहर लौट गई। मोहन अधिकारी बन चुका था। कुछ वर्षों के बाद वह अपने गांव लौटा। गांव के लोग उसका स्वागत के लिए इकट्ठा हुए। मोहन ने अपनी कहानी सुनाई। मैंने पैसे के बजाय ईमानदारी को चुना था। मोहन की पढ़ाई, पूरी मेहनत सुनकर तालियां की गूंज उठा। उस दिन मोहन अपने गांव में एक स्कूल और पुस्तकालय बनवाया ताकि कोई गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

Vado. आप सुन रहे थे कहानी ईमानदारी का इनाम। कहानी सुना रही थी योगिता पानीग्राही। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओ, आज 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन रहस्यमय उड़न वस्तुओं यानी अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2001 में UFO शोधकर्ताओं और उत्साही समूहों की पहल पर हुई। 2 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन वर्ष 1947 में अमेरिका के रोसवेल क्षेत्र के पास एक रहस्यमय वस्तु मिलने की घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और दुनिया में UFO को लेकर बहस और खोजबीन को नई दिशा दी। आज भी वैज्ञानिक इन घटनाओं का अध्ययन तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर कर रहे हैं। विश्व UFO दिवस हमें अंधविश्वास नहीं बल्कि जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को समझने की प्रेरणा देता है। आखिर ब्रह्मांड जितना विशाल है उतने ही अनगिनत हैं उसके अनजाने रहस्य। कौन जाने आने वाला समय हमें कौन सी नई खोज से रूबरू करा दे। श्रोताओ, रहस्यमयी उड़न तश्तरियों की बातें हों या कल्पनाओं के पंखों पर उड़ता प्यार, आसमान हमेशा इंसान की जिज्ञासा और भावनाओं का साथी रहा है। अब रहस्यों से निकलकर चलते हैं कल्पनाओं की दुनिया में जहां प्यार प्यार भी उड़ान भरता है।

श्रोताओ, इस वर्ष बारिश का इंतजार थोड़ा लंबा जरूर रहा, लेकिन अब बारिश ने अपनी दस्तक दे दी है। हर किसी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छी और भरपूर बारिश होगी, जिससे खेत खलिहान लहला उठे और चारों ओर हरियाली छाए। हमारे बस्तर और जगदलपुर की प्राकृतिक सुंदरता बरसात में और भी निखर जाती है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, पेड़ों की ताजगी और ठंडी फुहारे मन को सुकून से भर देती हैं। किसानों के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान है और हर कोई अच्छी बारिश की कामना कर रहा है। हम भी ये दुआ करें कि ये बरसात खुशियां, समृद्धि और भरपूर बारिश लेकर आए। अब इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: अपेशे मधुरिमा।

जब बारिश की बूंदें धड़कनों से मिल जाए तो मौसम सिर्फ भीगा भीगा नहीं रहता, बल्कि मोहब्बत की खुशबू से महक उठता है।

एक दिन भीगे थे बरसात में हम दोनों, एक दिन भीगे थे बरसात में हम दोनों, अब जो बरसात में भीगोगे तो याद आऊंगा।

जो तार से निकली है वो धुन हर सबने सुनी है, जो सांस पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। बारिश की बूंदें भी कुछ ऐसी ही धुन छेड़ती हैं जिन्हें हर कोई सुनता है, लेकिन उनके साथ जुड़ी यादों की कहानी हर दिल की अपनी होती है।

बारिश की सबसे सुंदर बात यह है कि वो बिना कुछ कहे दिल की बात कह जाती है। कभी यादों को भिगोती है, कभी मुलाकातों को लंबा कर देती है, और जब दिल चाहे कोई कोई अपना यूं ही पास बैठा रहे, तब होठों पर यही पुकार आती है।

0: अभी आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित किया गया। इस वक्त सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ

0: स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलों, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4

0: जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार।

0: किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the

अभी आप सुन रहे थे जलधर और साथियों का गाया भत्री लोकगीत। लीजिए अब सुनिए चंदन कश्यप और साथियों के स्वर में हल्बी गीत।

0: जी देकर नाम अर्जुन हवे तुमने जिसके इस राजा द्रुपद हाथ जोड़ करके कहते
1: हाँ।
0: धन्य हो अर्जुन के धन्य हो
1: हाँ।
0: मोर दलना दे जिसके ले आए द्रुपद कथे मैं तोला कहते अर्जुन
1: हाँ।
0: ये जन्मो कन्या हवे तोला मैं तोला सुपुर्द करता
1: हूँ
0: ते मोला समझी बना ले
1: हाँ।
0: और ये

धर्मराज के पास आए, सिर पड़ के राजा दुष्टिल्ला चिंता हो गए। हे भगवान, मैं 12 साल वनवास गये, 1 साल अज्ञातवास गये हूँ। फिर कर्तव्य हम हो निभावा, मांगे 5 गांव नहीं पावा, 5 गांव नहीं दो कहा से, क्या उपाय करना चाहिए? अर्जुन कथे भैया, हमार प्रति कन्या मिल गए, पुत्र अभिमन्यु के शादी कर दे। ये संचित थी अर्जुन लिख करके दूत लभेज से। अरे तो नाम है।

0: मैं भैया बलराम के सही मैं अभिमन्यु के शादी के निमंत्रण देता हूँ
1: और
0: यदुवंशी जते खवैते करते हैं ताजा
1: है।
0: दूध पत्र लेकर के भगवान के प्रति पहुँचे, भगवान पत्र ल पढ़े।

0: भगवान लाला लाजपत हवे
1: है
0: गजब दिन हो गए। अरे पांडव केरी दरस नहीं पावा जब ते बन पांडव चले जावा
1: है
0: गजब दिन हो गए मैं पांडव के दर्शन नहीं पाए हो बहुत दिन हो गए वनवास चले।

0: है ब्राह्मण लबुलवा करके राजा विराज लगन लधरवाई
1: है।
0: अरे पानी ग्रहण कर मुहूर्त धरावा और निज मुलरी सबे ब्याह करावा और दहेज कतिक दी दाढ़ी तीन दहेज कुबेर लजावा अतिक दहेज दी पांडो के पांडो मल्ला के कुबेर झलालत
1: है।
0: ये कर बाद में भगवान कृष्ण राजा द्रुपद
1: है
0: त्रिखंडी धृष्णु
1: है
0: काशी नरेश
1: है
0: राजा द्रुप विराज
1: है
0: महावीर उत्तरा कुमार
1: है
0: शंख है पांचों भाई पांडव अभिमन्यु के सहित भगवान कृष्ण हम मनन करी
1: है।
0: भैया अरे निज कर्तव्य पांडव निभावा और आधा राजा गुरु नाथ बतावा। अरे सुन करके राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़ के कथे प्रभु
1: है।
0: अरे दीना

0: पैर में चंदन के खड़ा हूँ। अब पीताम्बर पहने भगवान कमर में कटनी काटे, हाथ में बंसी लेकर के तैयार हो गए। अरे श्याम सुखदाई।
1: लोक मंजिरी में आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। पाटावेनार में लीजिए सुनिए जयती नाग और साथियों का गाया ध्रुवी लोकगीत।

தரமேடி ஆ.

0: definitely.
1: Ular ududu siler, tiri tegarayat.
2: पाटा वेनार में आप सुन रहे थे चेती नाग और साथियों का गाया ध्रुवी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं 1983 में प्रदर्शित फिल्म अर्पण के गीत। ये एक भावनात्मक पारिवारिक और संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन और निर्माण जे ओम प्रकाश ने किया था।

0: फिल्म अर्पण में जितेंद्र ने मुख्य नायक की भूमिका निभाई, जबकि रीना रॉय मुख्य नायिका के रूप में नजर आई। परवीन बॉबी और राज बब्बर ने भी अपने प्रभावशाली अभिनय से फिल्म को नई ऊंचाई दी। इनके अलावा सुजीत कुमार, दिनेश हिगू और अन्य कलाकारों ने भी अपनी भूमिकाओं को बखूबी निभाया, जिससे फिल्म की कहानी और अधिक प्रभावशाली बन गई।
1: बात नहीं कर रही मुझसे।

फिल्म अर्पण का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया, जबकि गीतों को आनंद बख्शी ने लिखा है। गीतों को अपनी मधुर आवाज से किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और अनवर जैसे गायकों ने सजाया। फिल्म के गीत आज भी पुराने फिल्म संगीत के शौकीनों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं।

फिल्म अर्पण के कई गीत सुपरहिट हुए जिनमें लिखने वाले ने लिख डाले ताकि उताकी और मोहब्बत अब तिजारत बन गई है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन गीतों में प्रेम विरह और भावनाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। मधुर धुनों और प्रभावशाली बोलों ने इन्हें सदाबहार गीतों की श्रेणी में स्थान दिलाया।

फिल्म अर्पण को उसके भावपूर्ण कथानक और उत्कृष्ट संगीत के लिए आज भी याद किया जाता है। निर्देशक जी ओम प्रकाश ने फिल्म में पारिवारिक मूल्यों, प्रेम और त्याग को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया। फिल्म के संगीत ने इसकी लोकप्रियता में चार चांद लगाए और इसके कई गीत आज भी रेडियो और पुराने फिल्म संगीत के कार्यक्रमों की शान बने हुए हैं।

0: एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुने फिल्म अर्पण के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार। हम
1: आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वीबीजी रामजी योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड की गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में श्री साय ने कहा कि एआई मिशन के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और नवाचार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में एआई कौशल विकास, स्टार्टअप, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स और सुरक्षित एआई नीति के साथ मोबाइल नेटवर्क विस्तार, भारत नेट फेज 3 और सेवा सेतु पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में राज्य में लगभग 1000 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। वहीं भारत नेट फेज 3 के तहत राज्य की 4114 ग्राम पंचायतों को आधुनिक इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजों में प्राचार्यों की पदोन्नति पूरी करने को कहा गया। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातकोत्तर स्तर तक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकार से समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। वहीं 3 जुलाई को सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ होगी। जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में

मुख्यमंत्री विष्णु देसाय शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डटसेना और सभी नवनिर्वाचित पार्षद पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। रायपुर में आज गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक इस मानसून के दौरान मौसमी वर्षा सामान्य से 60% कम दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वीबीजी रामजी योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। गुलशन में लीजिए सुनिए शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म खामोशी से, स्वर लता मंगेशकर का, गीत गुलजार का, संगीत हेमंत कुमार का। ये गीत राग बरबा पर आधारित है।

अगला गीत फिल्म अनुपमा से, जो राग खमाज पर आधारित है, स्वर लता मंगेशकर का। गीत कैफी आजमी का, संगीत हेमंत कुमार का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: राग हेमंत पर आधारित है फिल्म बालिका वधू का ये गीत, स्वर अमित कुमार का, गीत आनंद बख्शी का, संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म महबूबा से स्वरमन्ना डे का गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। यह गीत राग मियां मल्हार पर आधारित है।

0: गुलशन में आप सुन रहे थे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के साढ़े दस बजे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दू में लीजिए सुनिए मांगूराम और साथियों का गाया धुरवी लोकगीत। पर पहले ये संदेश।
1: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।

0: गुरुदम कार्यक्रम में आप सुन रहे थे महंगूराम और साथियों के गाए ध्रुवी गीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
9: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
10: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
9: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
11: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से अब पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज बात उस कलाकार की जिन्होंने 100 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों और रंगमंचों में अपनी कलात्मकता साबित की है। कभी माँ, कभी भाभी, तो कभी सच्ची मित्र की भूमिका में उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। चेहरे पर ममत्व भरी मुस्कान और आवाज में अपनेपन की मिठास लिए जिन्हें हमने हमेशा पर्दे पर देखा, वो अदाकारा हैं आशा लता। पूरा नाम आशा लता वाबगांवकर, जिन्हें प्यार से लोग आशा लता ताई कहकर बुलाते हैं। और अब भी अगर आपकी कल्पना में आशा लता का व्यक्तित्व साकार नहीं हुआ है, तो हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अंकुश का ये भजन, जिसमें उन्होंने एक सहृदय नेक दिल माँ की भूमिका निभाई थी।

सन 1973 में फिल्म जंजीर से अपना फिल्मी करियर आरंभ करने वाली आशा लता को पहचान मिली सन 1980 की बासु चटर्जी की अपने पराये फिल्म से। इस फिल्म में घर की बड़ी बहू के रूप में एक ममतामयी और सरल हृदया बड़ी माँ की भूमिका को आपने हूबहू निभाया। कहानी का किरदार आशा लता जी के व्यक्तित्व में बिल्कुल फिट बैठा, जिसे अपने लाजवाब अभिनय से आपने और भी जीवंत कर दिया। इस फिल्म में उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार। सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत यशोदास और आशा भोसले की आवाजों में।

आशा लता बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। अभिनेत्री और नाटककार होने के अलावा वे एक अच्छी गायिका भी थीं। मराठी थिएटर जगत में आशा लता वाबगांवकर एक बड़ा नाम था। हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने हर बड़े कलाकार के साथ काम किया। फिल्म जंजीर में जहां उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई थी, तो फिल्म सदमा में भी वे श्रीदेवी की मां के किरदार में नजर आईं। कहीं घर की आज्ञाकारी बहू तो कहीं न्यायाधीश की कुर्सी पर जज के रूप में भी वे सुशोभित हुईं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने उन फिल्मों के गीतों को शामिल किया है जिनमें आशा लता जी ने यादगार और महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हैं, भले ही उन पर वे गीत ना फिल्माए गए हों। ऐसा ही एक गीत फिल्म सदमा से सुनते हैं, गाया गया है श्रीदेवी और कमल हासन पर, लेकिन फिल्म में वे एक यादगार भूमिका में थीं।

आइए एक नजर डालें उन कुछ फिल्मों के नामों पर जिनमें आशा लता जी ने अलग अलग भूमिकाएं निभाई थीं। ये फिल्में हैं चलते चलते, आहिस्ता आहिस्ता, दिले नादान, लव इन गोवा, कुली, वो सात दिन, राज तिलक, जमाना, घरद्वार, यादों की कसम, हत्या, दाता, खून का कर्ज, हमला, फौजी, जिंदगी एक जुआ, अग्नि साक्षी, दावा और सनी देओल के साथ फिल्म घायल।

आशा लता के व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू था उनके मुस्कान की कशिश। वे जब हंसती बड़ी मनमोहक लगती थीं। अपनी हर फिल्म में वे एक अलग किरदार में नजर आईं, मगर ज्यादातर फिल्मों में उन्हें एक स्नेहमयी माँ का ही रोल मिला था, जिन्हें आशा लता जी ने शिद्दत से निभाया भी। याद करते हैं फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन की माँ का वो किरदार जिसमें वे एक शराबी पुत्र को सही राह पर लाने की कोशिश करती हैं। इन दोनों के बीच का भावनात्मक रिश्ता फिल्म के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था। सुनते हैं

जैसा कि हमने आपको बताया, 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी अभिनय दक्षता निभाने के बाद आशा लता सन 2020 में कोरोना संक्रमण की शिकार हो गई। ना कोई लंबी बीमारी और ना उम्र की मार। एक सक्रिय और स्वस्थ अदाकारा ने मुंबई के निजी अस्पताल में मृत्यु को गले लगा लिया। इस महामारी ने हमारे बीच की प्रतिभा संपन्न अदाकारा को असमय ही अपनी चपेट में ले लिया। आज 2 जुलाई को आशा लता वाबगांवकर जी के जन्मदिन पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: ये था आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार, जो केंद्रित था बीते समय की सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेत्री आशा लता पर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है गैर फिल्मी गीत और गजल का प्रोग्राम गुलदस्ता। आगाज करते हैं ए हरिहरन की गाई इस गजल के साथ।

0: फैसले लिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजों में प्राचार्यों की पदोन्नति पूरी करने को कहा गया। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातकोत्तर स्तर तक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकार से समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। वहीं 3 जुलाई को सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ होगी। नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आगामी 4 और 5 जुलाई को 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। इस शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की भी समीक्षा की जाएगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किसानों से मिश्रित खेती अपनाने की अपील की है। कांकेर में किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान धान के साथ दलहन और तिलहन की खेती करें तथा खेतों की मेड़ों पर मुनगा लगाएं। उन्होंने कम लागत और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री नेताम ने खेती के साथ मछली पालन, मुर्गी पालन और पशुपालन अपनाने की सलाह दी। उन्होंने जैविक खेती अपनाने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रूपये आदान सहायता प्रदान करेगी। वरिष्ठ IPS अधिकारी बद्री नारायण मीणा ने बुधवार को बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सुंदर राज पी का स्थान लिया है, जिन्हें भारत सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर NIA में पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। संस्कृति और राजभाषा संचालनालय ने वर्ष 2026-27 के सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों और सांस्कृतिक दलों से 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित कलाकारों को शास्त्रीय संगीत और नृत्य, रंग तरंग वाद्यंत्र संगम, रंग परब, नाट्य श्रृंखला और लोक रंग पर्व जैसे आयोजनों में प्रस्तुति का अवसर मिलेगा। गरियाबंद जिले के अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट खुटगांव पर पुलिस द्वारा की गई 2 अलग अलग कार्रवाई में 48 किलो से अधिक का गांजा बरामद किया गया है। 4 पहिया वाहन के जरिए ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहे गांजे की कीमत 24 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 4-पहिया वाहन और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। दुर्ग पुलिस ने लगभग 1,149 खातों की पहचान कर 39 लोगों पर FIR दर्ज की है। इस मामले में अब तक 165 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में खुलासा हुआ है कि आम लोगों के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट यानी किराए का खाता बनाकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। राजधानी रायपुर में कल से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और गरियाबंद जिले में पुलिस ने 48 किलो से अधिक गांजा बरामद कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं मित्र।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।

हाँ, कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब भाई भाई बहन मन के मैं नमति करें से जुहार। और फिर रेडियो कटा कटा बसलो नान नान पीला मन के नानी नानी कलाकार मन के मुझे बाटले खूबे खूबे माया। तो देखा भाई बहन मन, जैसन कि नाम जो कार्यक्रम जो नाव जी आए कला और कलाकार बोलो ने था जित्रो बोले कला ने पारंगत लोग मन आसोत जोन काई नहाले काई हुनर जान सोत असन लोग मन जो गोट के आमी ये था गोठियाऊ से। तो असनी ची आम जो राज ने आम जो देश ने कई एक प्रकार जो कला मन होए से, कोनी गाव तो चो, कोनी नाच तो चो, कोनी बजा तो चो और संगे संगे शिल्प चो। शिल्प ने बोले भिने भिने प्रकार चो कई एक प्रकार चो कलाकारी मन हुनर मन के आम जो कलाकार भाई बहन मन जान सोत और हुनके पूरे आंतो का जे बले हुन मन कोशिश कर सोत। तो असनी ची गोटो कला होए से लोक कला। लोक कला बोलो ने आम जो गाँव गाँवली ने बोलो ने जित्रो लोग मन रह सोत हुन कहीं नहाले कहीं अलग एक प्रकार से जोन कला है उनके जानुआत बोलो ने हुन गाँव ने बनाउन भाती जो पुरखती ले एतो बीती जोन कलाकारी आए हुनर आए उनके जानुआत जेके हमी बोलो से लोक कला। बोलो ने हुन लोग मन जोन बना सोत जोन पुरखती ले बनाते ए सोत और जोन पूर्ण जुग चो जोन कला है असन कलाकारी मन। और ये बोले लोक कला बोले कैक प्रकार चो नाचा डगा बाजा मोहरी संगे संगे हुन शिल्प लकड़ी चो बाँस चो माटी चो ये सब पाए जोन रह से हुन अलगे प्रकार चो हुन मन चो बाना चीना बनुआए। तो असन जोन लोक कला रह से हुनके हुन मन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाए सोत हम जो कलाकार भाई बहन। और केबे केबे हुन पीढ़ी चो लोग मन नी करला जाले दूसर लोग मन वाले सीखुन भाती हुन कला के आगे बढ़ा तो कोशिश कर सोत। और आजिकाली सरकार बाटले बले असन कलाकार भाई बहन मन का जे हुन जीवन यापन चो जोन व्यवस्था बले होली से कि जोन कलाकार मन आसोत हुन मन के हुन चो जीवन यापन चो खर्चा बले सरकार बाटले दे जाए से। और जैसन असन कलाकारी आसे हुन मन का जे हुन बाजार बले हुन मन का जे उपलब्ध कराए जाए से कि हुन चो कला लोग मन जानोत और एक राज ले दूसर राज संगे संगे एक देश ले दूसर देश तक।

पुलिस है कि जोन कलाकार मनास होत हुन मन के हुन जो जीवन यापन जो खर्चा भले सरकार बाटले दे जाए से और जैसन असन कलाकारिया से हुन मन का जे हुन बाजार भले हुन मन का जे उपलब्ध कराए जाए से कि हुन जो कला लोग मन जानो तरु एक राज्य ले दूसर राज्य संगे संगे एक देश ले दूसर देश तक।

0: विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: हाँ, तो देखा गोठ मन वाले होली आरु मैं बोलते रहले कि जैसन कि हम जो जोन कलाकार भाई बहन मन आसोत उन मन का एक प्रकार जो कला मन के सीखुन भाती आप लोग कला के आगे बढ़ा तो कोशिश भले कर सोत और फिर संगे संगे दूसर लोग के सिखा तो भले कोशिश कर तो रहे तेबे तो हम जो जोन कला है, लोक कला है, हुन ए तो जुग का जे भले हुन देखा पड़े दे और सुना पड़े दे। तो ये काजे हमके सफा है जोन लोक कला है उनके संरक्षित भले रख तो संगा तो रहे और हुन मन के आगे बढ़ा तो भले आए। तो असनी ची हम चो जैसन लोकगीत मन हो से उसने ही हम चो लोकगीत रह सोत तो उनके भले गाँव तो कलाकार मन, लोक कलाकार मन रह हुआत और आप लोग कला के आगे बढ़ा हुआ। तो असनी एक गोटक लोकगीत तो मन मन का जे मैं आनले से और उनके सुना और पाछे आजी जो कलाकार जो गोठ के हमें गोठियावा बोले ने हुन भले गोटुक छत्तीसगढ़ी लोक गायक आसोत और हुन चो मान काजे हमें ये गोटुक छत्तीसगढ़ी गीत के सुनू आले सुनू ये गीत के।

हां, काय सुंदर ये गीत. आरु ये गीत संगे आमी आजी चो कलाकार चो स्वागत बोलो ने उनचो गोठमन के गोठिया हूं दे. आरु आजी ये जुन गीत रहे उनके गावते रहोत शत्रुघ्न सिन्हा आरु हुंचो संगवारी मन. आरु आजी चो कलाकार ने आजी आमी सुरता करूं दे आमचो गोटोक छत्तीसगढ़ी लोक गायक कलाकार अनुज शर्मा चो गोठमन के. आरु अनुज शर्मा बोलो ने उन कलाकार कोनी चीना बाना चो पहचान चो उनके जरूरत भले नहीं आए. सफा लोग जान सोत कि छत्तीसगढ़ चो जो ये कलाकार आ सोत उनके पद्मश्री सम्मान ले भले सम्मान करे गेली से. तो असन कलाकार चो जीवना चो बारे ने आज ही हमें यथा सुरता करूँ दे. तो ये मन रामानुज शर्मा बोलो ने जन्म ये मन जो जन्म रहे अनुज शर्मा जो नाम ले ये मन फेमस बोलो ने प्रचलित आसोत. और ये मन जो जन्म हो रहे 15 मई 1976 ने. आरु छत्तीसगढ़ी कलाकार जो रहोत संगे संगे ये मन सिनेमा ने बोले गोटो काम करला सोत. और फिर संगे संगे रंगमंच और फिर गीत गोविंद गाव तो काजी ये मन खूबे काम करला सोत. आरु इके भारत सरकार बाटले 2014 ने सर्वोच्च चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बोलवाओ जे हुन पद्मश्री ले सम्मानित करे गेली. आरु पद्मश्री ले सम्मान हो तो बीती छत्तीसगढ़ चो गोटोक पहिल व्यक्तित्व आसन भले आसोते मन. आरु एमन जो जीवन जसन हो रहे कि ये मन आप लोग पूरे चो बोलो ने पीला बेरा ले हुन मन कला ने अभिनय ने और गीत ने एमन जो रुचि रहे. अरे मन चो जन्म छत्तीसगढ़ चो रायपुर जिला चो भाटापारा ने टेकन लाल शर्मा और देहुती शर्मा चो घर ने हो रहे. हुन मन आप लोग स्कूल चो शिक्षा भाटापारा ने धरला और पाछे रायपुर चो पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने इतिहास विषय ने स्नातकोत्तर चो हुन मन के उपाधि मिलली. और ये मन जो रहोत बोलो ने राजनीति ने बले कई ठन काम करला सोत. और फिर एमन कलाकार चो रूप ने 10 साल चो उम्र ने अभिनय और गायन बोलो ने गीत गाओ मूर करला. और एमन जो सबले पहल फिल्म 2000 ने हुन मोर छैया भुइया नाव चो यऊ रहे. और हुन थाने हुन मन आप लो अभिनय चो करियर कैरियर के बोलो ने उन चो काम के मूर करला जे चो खूबे सफल होली ये फिल्म. और ये चोले हुन मन चो खूबे नाम बोले सफाए बाटे होली. और हुन जो पहल फिल्म जो सफलता बोलो ने हुनके स्टार असन बनाऊन दिला. तो देखा ये अनुज शर्मा जो गोट के अमी फेर बोले.

0: तो भाई बहन मन देखा कितरो सुंदर ये गीत रे मंतर जोन आम चो कलाकार चो गोठ के आमी गोठियाँ से हूँ छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार संगे संगे फिल्म ने बले काम कर ला सो तारू रंगमंच ने बले तो असन कलाकार के आमी आजी सुरता करूँ से जे मन पद्मश्री पुरस्कार ले सम्मानित बले आसोत और ये मन चो नाव रे आसे अनुज शर्मा। तो ये के तो सफाई लोग जान सोत बले और फिल्म ने बले दखला सोत होती ने तो हूँ मन चो गोठ के आमी गोठियाते रलू तो ये जैसन की जितरो काम मन आम चो काजे करला सोत ये मन बोलो ने कलाकार मन काजे रंगमंच काजे फिल्म काजे और फिर संगे संगे हुन मन कैक जोन कैक प्रकार जो कैक बोली भाषा ने बोले हुन मन जो फिल्म मन होली से जोन फिल्म बन ली से उन कैक भाषा ने जैसे झारखंडी बुंदेलखंडी और भोजपुरी असन भाषा मन ने अनुवाद बोले होली से और मध्य भारत बोलो ने हुन जो हिस्सा ने मंच और टेलीविजन ने बले हुन सक्रिय रूप ने हुन रह सोत और छत्तीसगढ़ ने यूनिसेफ जो अभियान मन ने बले हुन मन जुड़ला सोत हुन मन राष्ट्रीय एफएम चैनल ने बले रेडियो जाकी चो रूप ने बले काम करला सोत और हुन सबले पहले छत्तीसगढ़ चो छत्तीसगढ़ी ने एंकर बोलो ने संचालक बले रहत छत्तीसगढ़ी ने गोठिया तो एंकर बोलो आज हुन मन असन बले काम करला सोत अरु हुन मन लगभग 125 टेलीविजन शो मन ने बले हुन एंकरिंग बले करू रला अरु फिर पाछे हुन छत्तीसगढ़ी लोक गायक जोन अनुज शर्मा आसुत हुन मन सफाई शैली ने छत्तीसगढ़ी लोकगीत ने सफाई प्रकार चो गीत मन के हुन मन गातोर मूर करला और सफाई प्रकार चो गीत गावतो ने हुन मन माहिर बले आसुत अरु हुन जो सौले आगर वीडियो एल्बम मने बनली से अरु 200 ले आगर हुन जो फिल्म अरु लोक गीत मन बले होली से तो असन कलाकार के अमी यथाले मान देऊ से अरु हुन जो और नाम होते जाओ अरु हुन मन जसन गोटो के एल्बम चो नाव लेबल बनाला सोत हुन चो नाव आए आरुग म्यूजिक मलो ने ये लोक कला लोक गीत मन चो छत्तीसगढ़ी लोक गीत मन चो ये संस्था असन अरु लोक गीत मन के हुन थन ले ये मन प्रचार प्रसार करे सोत तो असा ना सोत ये अनुज शर्मा तो ये मन जो बारे ने फिर गोठियावा मंतर हुन जो मान काजे गोटोक और हमी छत्तीसगढ़ी लोक गीत सुनु और ये गीत के गावला सोत ममता चंद्राकर और हुन जो संगवारी मन मंतर ये गीत ले पहल ये गोठ बना से अले गोठ मन के पहल सुनु दे।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
6: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
7: 2 लाख क्या हुआ पापा?
6: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।

0: अरे काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 to 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 to 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
5: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवें राहत दरकना उम्मीद मिंदे। यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।

हाँ, तो भाई बहन मन काय सुंदर ये गीत रहे। आरु असने जी आमी कला और कलाकार ने कैक ठन कलाकार मन के उन मन जो जीवना चो बारे ने एथा गोठिया होंदे आरु कोनी कोनी कलाकार मन संगे भेट बले होंदे। आरु असने ये हम जो कार्यक्रम के तुम्ही सुनते रहा आरु रोजे दिन नुआ नुआ कलाकार मन जो जानकारी थाले धरते रहा आरु कला चो बले ले जानकारी थाले मिलते रह दे। तो आज ही आमी गोठियालु हम जो छत्तीसगढ़ी लोक गायक कलाकार अनुज शर्मा चो गोठ के और यही संगे संगे मुझे जातो समय बले हुए से तभी कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब भाई भाई बहन मन के मैं मैनमती करें से जुहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार।

घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव करी बहन मन के मैं नमती करे से जुहार और फिर रेडियो कटा कटा बसलो नानी नानी पीला मन के मोचो बाटले खूबे खूबे माया। तो देखा बहन मन मैं तो समय ने अमर ले आरु तुम चो संगे कई ठन गोट बात कर तो काजे बले आरु ज्ञान ध्यान चो संगे संगे गीत गोविंद बले था धरुण भाती इले से।

करें से जुहार और फिर रेडियो कटा कटा बसलो नान नान पीला मन के मोचो बाटले खूबे खूबे मया। तो देखा बहिन मन, मैं तो समय आने अमर ले और तुम चो संगे कई

अनि काम बुता मनले मूर करतो रहे कि हमी ये बुता के करुक सकूं दे कि नहीं सकूं दे बोलून। तो असन करुन करुन फिर हुन बड़े काम बले हुन मन करुक लाए सकुआत। तो ये चुका जे आम बात मन के हम जो गाँव करी बहन मन के दीदी मन के नानी नानी काम के पूरा करतो कोशिश पहल करतो रहे फिर पाछे हुन बड़े काम के मूर करतो रहे बोलो ने एक दाए बड़े काम के मूर नी करतो रहे तबे काय हो दे कि जो हम जो बहन मनास होत हुन मन लग आत्मविश्वास बले रह दे और हुन काई बूता के करतो काजे पाठ कोती नी गूच दे और हुन मन काई बले काम के करतो काजे पूरे तो कोशिश कर दे। तो ये जो काजे हम के जसन लोग मन संगे गोठिया तो रहे जाले दुई चार जन संगे पहल गोठिया तो रहे फिर दस बारह जन संगे ने तो असन धीरे धीरे करूँ फिर हुन कहें भले गोड बात आप लोग जो समस्या है हम जो कहीं भले दुख डंडा है नाले लोग मन जो समस्या है उनके हमी काचोय भरे काचोय पूरे भले हमी गोठिया उग सकूँ दे और असन काम करतो जो मेहरार मनास होत हुन मन जो आत्मविश्वास सबले आगर रहे से और हुन कहीं भले बुता के करतो काजे हुन पूरे ए उग सक दे और आप लोग गाँव चो संगे संगे आप लोग देश चो विकास ने भले हुन मन संग दे उग सकुआत। तो असन काजे हम के कहीं भले काम के करतो काजे डर नहीं होतो रहे पूरे तो कोशिश करतो रहे पढ़ाई लिखाई करतो रहे और अच्छा ले आप लोग ज्ञान के बले बढ़ातो रहे और आजकल जैसन उन ऑनलाइन कई एक ठन शिक्षा मन बले हो से उन मन लगने बले जुड़न भाती आप लोग ज्ञान के बाढ़ती करतो रहे। तो देखा बहन मन हंसने नानी नानी काम मूर होन भाती उन बड़े होन जाए से नहीं तो हम के कहीं भले काम के मूर करतो रहे और अच्छा ले करतो कोशिश करतो रहे ऐचो ले आप जो आत्मविश्वास बाढ़े दे। तो देखा मैं तो गोठियाते रहें दे मंत्र और

0: ना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता। जीएसटी तक कोंडे पुनाव मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आय 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दरकता। डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो। इदेना संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता। जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता। सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता। इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोर कीता।
4: हाँ तो बहिन मन, ये तो रहे गोठमन। और फिर मैं जसन बलते रहे कि आमी कहीं बले काम के कर तो काजे खिंडिक हिम्मत जुटा तोर कोशिश करते रहे। बोलो ने आमके पाठ को नहीं हो तो रहे कहीं बले काम बुता के आमके अच्छा ले कर तो रहे। जसन घर ने आमी काम बुता करूँ से रांधा बाटा हो कि कहीं बले घर चो बुता हो सपा के आमी करूँ से उसने ही आमके गांव चो विकास ने और फिर आप लोग आर्थिक विकास का जे बले एक ठन काम बुता के कर तो रहे। तो देखा असन आत्मविश्वास ले आमी कहीं बले बुता के कर लूँ जाले आमके हरिक बले लागे से कि आमी आजी 2 पैसा कमा लूँ बोलते नहीं। तो जसन आम चो बहन मन का एक ठन स्वसहायता समूह बना उन भाती बले हूँ आर्थिक आमदनी करे सोत और असने स्वरोजगार बले उन मूर करुन भाती संधान बड़ी पापड़ बना उन भाती बले उन मन काम बुता करुआत। तो देखा कितरो हरिक बले लागे से नहीं। तो असन हरिक ने हमके गीत गाओ बोले भाई से और सुनो बोले भाई से। तो देखा असने हरिक ने ये गोटो गीत आसे आले ये गीत के सुना।

0: हाँ तो बहिन मन काय सुंदर ये गीत रहे आरु ये गीत के गावते रहत लखेश्वर खुदराम आरु हुंचो संगवारी मन। तो देखा गीत संगे संगे आम चो लगे गोटुक बहिन चो गोट मन बले आसे आरु ये मनात बहिन आनंद कुमारी बेसरा आरु ये मन संगे भेंट वार्ता आसे आरु ये मन आपलो पाय ने ठिया होला सोत मशरूम उत्पादन करून भाती। तो असन बहिन चो गोट मन के आम के बले सुन तो रहे ने आरु ये बहिन आनंद कुमारी बेसरा संगे गोट बात करे सोत बलबीर सिंह कच्छ। तो आले सुनू ये बहिन चो गोट मन के आलू आमी बले कहीं काम बुता के मोर करूँ। आले सुनू ये गीत गोट के मन चो
1: घर द्वार सुनबा बहिन मन आज फिर आमर लग गोटुक बहिन आसला आचे एमन बोले ने स्व सहायता समूह ने बोले ने कई कसन रोजगार का जे बोले ने मशरूम उत्पादन और बल दूसर काम मन करुआर। तो सबले पहल तोर नाम आरु गाँव और नाव सांग दे सुन।
2: मोर नाव आनंद कुमारी बेसरा है।
1: अच्छा
2: अरे मुई उपन पाल ने रेवा है।
1: अच्छा तो आनंद कुमारी ए सांग तुम्ही स्व सहायता समूह बनला।
2: हाँ।
1: अच्छा समूह काय नाव है जाले।
2: दुर्गेश्वरी है।
1: दुर्गेश्वरी। अच्छा कतक बर कसन होला जाले।
2: होला कुटुक 18 19 साल पर।
1: अच्छा बोले खूब दिन तो होला।
2: हाँ।
1: है कि नहीं। तो स्व सहायता समूह बनाए बा का जे बोलवे तुमके कौन सांगला कसन बनायला।
2: हाय थान ले गुटो लड़का है हमर गाँव और हाई यका सिकेरी हम के सांगला कि गुटो कसन समूह बनाए बर है और समूह थान ले पैसा वगैरह से जमा कर पर है। तो तुम यही जमा कर बाद ने तुम के सब थोड़ा बहुत लाभ हुई सी असन असन बोले कि पूरा हम के समूह बारे ने सांगला तो हम ठीक है बोलू आवरी 100 रुपया जमा कर लू।
1: अच्छा
2: आवरी हाईटा के हम ही 100 रुपया जमा करते करते 1000 से 10 लोग होते रहला तो निकर जमा करते रहू बैंक ने। फिर हाईटा 1 साल हो बाकी पाचे हम के हाई तिले हम के पैसा मिलला 10,000 रुपया।
1: अच्छा
2: 10,000 मिलला कैश। तो हाई थान ले हम निकलू 10,000 रुपया और बैंक थान ले हाई पैसा खाम निकलाई करी कई कई असने धंधा पानी करते गलू।
1: अच्छा
2: तो हाई थान ले कोनी कोनी 10 जन थान ले बात होला कि आमी कोनी कोनी मशरूम सिक्की रेला पहले ले मशरूम बनाए बेटा तो आरी कोनी कोनी आवरी पुनी धंधा करवा साग सब्जी धंधा करबू बल्ला पैसा खाई पैसा खाम बांट लू।
1: अच्छा
2: आवरी 5-6 जनर पैसा के अलग सुंगाइलू आवरी आधो लोग के है हाई मन धर ले तो धर खाई मन अपना अपना साग सब्जी धंधा मन बटे करते गला हाई मन और हमी 4-5 लोग असनी मिसी करी मशरूम बनाए बटा स्टार्ट कर लो।

0: पञ्चायतने हाम्रो रूपन पार्लर पञ्चायतने गरेलु आसिरेले हामी सिकाएपछि चाहिँ तँ हरेक दिन सिकिरहेलु।
1: अच्छा तो मशरूम बनाए बका जे बोलू बे सामान काय काय लागू है?
0: सामान बोले पेरा लागू है आवरी बीज लागू है अरे हाय थाने गोटो पाउडर मिलवाए लिक्विड मिलवाए तो हाय सब के डाली करी बनाए बरा ये लोग।
1: अच्छा कई मटी गोला वगैरह बोल बनाए बा पड़ गए
0: नाई पेरा हाय झिल्ली पोली थी हम झिल्ली ने डाल बारा हाय टक पेरा कैस करी हाय थाने बीज के डाल बारा है आवरी।
1: अच्छा
0: हाँती बनाए बारे।
1: अच्छा तो उनके संगाय बार कसन
0: हाँ झिल्ली भीतर भोर बारे का है दिखा हाय तके पहरा के हाय तन टुकड़ा टुकड़ा बनाए केरे हाय तके काय से कर बारे पूरा मिलाए बारे बीच संगे पहले राती वाला भिगा दे बारे ता पहले हाय तके।
1: अच्छा
0: हाँ फिर पाचे सकार पर हाय तके चट्टे योगरा था ने डाली दे बारे फिर हाय तेरे खिन जोन पानी खिन सुगला पर होइले हाय ती बीच के चटकी दे बारे बीच के चटक लर बाद ने हाय तके झिल्ली आने भोर बारे टाइट बांध बारे आउरी हाय थन खिनिक लाका छेदा छेदा बनाए दे बारे और डाल कायस कर दे बारे एक हफ्ता बाद ने झिल्ली थन खिन फपुंदी लगला पारा होइला बोलले हाय झिल्ली के फाड़ी दे बारे।
1: अच्छा
0: फाड़ी दे बारे फिर हाय थाने खिनिक लाका पानी छिड़कते जी बारे।
1: अच्छा
0: तो हाय थाने फिर मशरूम निकलते जाऊ है।
1: अच्छा तो एक हार बना लेने मशरूम कतक हार टूटा होगा जला
0: तीन हार टूटा है बारे।
1: अच्छा तीन हार टूटा है। अच्छा बोले कतक दिन ने हाय मशरूम निकलु है?
0: 15 दिन पर लाग सी 15-16 दिन लगु है।
1: अच्छा 15-16 दिन लाग से बोले लगभग 3 महीना चल सी आसे बोलु बे।
0: हाँ
1: गोटक एक बना लेने एक बार
0: नहीं 15-16 दिन टूटेल और बाद ने फिर पानी देते रहे और 2-3 दिन ने 4-5 दिन और होते जाऊ है।
1: अच्छा और होते जाऊ
0: है थाने पूरा जत की बीज रहु है नहीं पूरा बीज निकल तक पूरा हाय थाने निकलते छ रहु है।
1: अच्छा हाँ तो हाँ जैसन की कहीं आहेतान रोग रही बोल कहीं ना धरो उनके
0: नहीं काय काच बोल ले हाई पहले डाली रे वचनी दवाई पहले भिगाए बादाए भिगाए बादाए हाई पाउडर जोन मिली रुए नी पाउडर के हाई अरे लिक्विड मिट रुए हाई सब के पहले भिगाए बादाए डाली रे बरा कीड़ा कुछ कीटाणु के मारबा काचे।
1: अच्छा पहले ले
0: मारीगिरी हाई सब के पहले ले काय कर रे बरा तेबे हाई टा सुरक्षित रहीसी।
1: अच्छा तो जैसे मशरूम बनाए बाकाज कई लोग बोलुआत की आहेतान लाइटर व्यवस्था
0: नहीं हमर जो हम मशरूम बनाऊनी हाइटा अंधेरा ने सुंगाए बारा है।
1: अच्छा
0: हाँ हटा अंधेरा ने भीतरे सुंगाए बारा है और जो मशरूम हम बनाए हाइटा आयरट मशरूम बोलवात तो हाइटी लाइटर पुन जरूरत ना पड़ो है अंधेरा ने सुंगाए बारा है।
1: अच्छा अंधेरा ने हाँ हाँ तो बोले ने दक एच मशरूम है आग बनाई करी बोले ने बिकबा वीती कसन कतक रुपया किलो ने बिकबा जाले
0: नहीं हम हाइटा कसनी पेकट पेकट बनाओ आउरी 50 रुपया 40 रुपया कच्ची खेती बन देवो हमें पैकेट बनाऊँ
1: पैकेट बना।
0: हाँ
1: अच्छा हाँ आए छाती असन बीती है कि बगल ला बीती का ढूंढी?
0: हाँ बगल ला बीती है।
1: अच्छा बगल ला बीती है। हाँ हाँ तो पैकेट बनान बात भी खुआ दो कतक कर पैकेट बनाऊँ आसाले
0: आई हिसाब और बोलो बे
1: आधा किलो की एक पाव।
0: हाँ एक पाव असन लगा बने वो एक पाव लेकिन ज्यादा कौन रही इससे।
1: अच्छा फिर बिग बाबित कहाँ है तुम खुद हट नहीं वहाँ की?
0: नहीं आसुआत को नहीं कुन घेन के पुने आसुआत आ रही पड़ा पड़ोस ने पुन तो आजकल तो सब लोग खाऊआत सब लोग घेन हुआत।
1: अच्छा तो ये काम ने बोले चार कितना लोग तुम आसाद बहन हुन?
0: 6 लोग पर आज
1: 6 लोग आसा। अच्छा बोले ने हर समय एक बनाए बासी?
0: हाँ बनाए वो।
1: अच्छा तो बोले ने फिर बिकी करी पैसा भी तुम कसन?
0: हाँ बिकी करी है पैसा धरवा हुआ खर्चा पानी और जैसे नहीं पैसा हमर मुहूर्त तक तो हम काय से कर लू अचू बैंक ने छूट लू अचू हमारे जब तक फायदा चिन्ह आ जाए हम बाटा करू।
1: अच्छा
0: तो जब तक पैसा हम फंसा रह लू हाई पैसा तो निकल लू
1: अच्छा।
0: तक साल ने निकल ला हमारे पैसा ये भी हम जत की अपनी करू आऊ हाई मुहूर्त तक असनी सामान घेन बा तक के हम गुचाई देव और जब तक लाभ फायदा है इटा हम खर्चा पानी करू।
1: अच्छा अच्छा तो ये सामान पूरा कहाँ ले घेन बा जाए?
0: काय से थान ले कुमरा उन ले।
1: अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र। अच्छा तो जोन बीज आया जे के बोल सो
0: बीज के देव ने हो का बीज पैरा ने हो और नोले हम के अगर सस्ता पड़वे गांव गांव ने पुनी पैरा घेन ले पुनी घेनी करी बोलवे टुकड़ा टुकड़ा कर काट बारे।
1: अच्छा अच्छा बीज कसन हिसाब ने मेरे हुआ जलता हूं के
0: बीज बोले हाई
1: मतलब किलो हिसाब ने कम
0: नहीं पैकेट बनाए रुआ है टक पुनी।
1: अच्छा पैकेट में रहे
0: पैकेट में रुआ।
1: अच्छा हाँ पैकेट पैकेट ने गोटक पैकेट कितलन रहे से
0: जाले गोटक पैकेट ने बोले रे हुआ है 1 किलो पर 1 किलो ना आधा किलो सन रहे सी।
1: अच्छा हाँ अतर कीमत

0: कत तक रही सी हाले
1: कीमत बोले 150 तक
0: रहा। अच्छा
1: 120
0: अच्छा
1: हां अरे हमेशा ने वालों के काया बोले खिनी कम रेट ने तू बात।
0: अच्छा
1: हमेशा हम तो खूब साल होइला करी करी।
0: अच्छा हां तो बोले हर समय तो मरता नहीं रहसी चाचे भी मशरूम
1: हो
0: और बिक्री होते छ रहसी।
1: हो अब जान ला लोग मन आई पाड़ा पड़ोस ने पुन तो देते छ रे गो। अरे कई जे काम धाम कर ले पुनी हमें खुद बनाई करी हमें करबो।
0: अच्छा बोले कहीं बिक्री भांजरी सन बाचला सन तो कहीं नहीं है
1: नहीं।
0: बना लेन सब बिक्री हो
1: हो
0: हुए नहीं। अरे संग संग और कहीं बोल काम करबो आज की ऐसी है
1: नहीं हमें अपनी पर्सनल काम करो बोलो खीने का दकस नहीं बोलबे घरे खाली रेला दिने बोलबे सिलाई वगैरह पनी करो।
0: अच्छा बोले तू सिलाई बोल सिल के जाने। अच्छा काय काय सिल बुआ साले
1: सूट।
0: अच्छा सूट और
1: अरे ब्लाउज पन सिलो अरे फाटला टुटला टपन सिलो छ।
0: अच्छा ये काम के कहाँ सीख ली
1: एटा अपन पंचायत ने आ सीख लो अचू।
0: अच्छा अच्छा पंचायत ने सिखाला।
1: हाँ
0: हाँ हाँ तो तोर लगा है सिलवा दर्जी उर्जी सब आछे
1: नहीं आई मुई खुद तो सिलो आई तो
0: नहीं नहीं हा? सिलवा भी जो मशीन है
1: मशीन आछे
0: आछे
1: एटा अपन पंचायत ले आ मिलला आछे।
0: अच्छा हाँ हाँ
1: अब सिखला लोग के तो खिनी का दख पंचायत बाट ले पुन तो सहायता करवाई नहीं
0: सरकार
1: पुन के।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हम जाने तो बोल ले सो सहायता समूह लोग आचे तो बोली कर बोल ले तो कोनी पुन खेनी आसुआत आवरी
0: हाँ हाँ
1: कैसे करुआत।
0: अच्छा तो मशीन में बोले अलग अलग रुआ है तो कौन खाली सील बाबी थी कौन एकदम बॉर्डर रसन बनाए भी थी।
1: नहीं मुरसनी छोटे मशीन है उसका मशीन बोलो
0: अच्छा
1: हाई मशीन है मिल रहा चे
0: अच्छा
1: हमारे समूह लोग के मिल रहा मतलब कोनी कोनी सिलवात कोनी कोनी फाटला टूटला टक पुन सिलवात।
0: अच्छा हाँ हाँ तो ये आए कहीं घरे कहीं कपड़ा वगैरह बोले संग हुआ का जैसे कि खाली महिला मन चो सिल तो का कहीं जैसे भी लाओ जाए नहीं तो
1: हो
0: अच्छा
1: कोनी असनी आन ले सिलो आन दे ले
0: अच्छा हाँ हाँ तो बिलाओ जो वगैरह चो रेट कसम कम धर हुआ साले।
1: बिलास तो रेट तो ज़्यादा हो लाच मतलब गाँव बाटे तो खीन कम ची है 150 तक है।
0: अच्छा हाँ तान बोल तो अलग अलग अलग अलग रही सी आचे
1: हो
0: उन्हीं हिसाब ने।
1: हाँ धरवा रेट
0: हाँ हाँ अच्छा
1: सादा बीती के 150 120 लगा है।
0: अच्छा हाँ तो सिलाई और
1: आ सूट
0: मशरूम
1: बोल ले तो 250-300 तक का है।
0: सूट हाँ कपड़ा
1: हो
0: दे लेने
1: हो
0: सिल खाली सिलवा रहे।
1: ना हाँ खाली सिलवा का से
0: अच्छा कहीं सूट और कहीं कपड़ा बोल संगे
1: दे
0: वाजे।
1: नहीं कपड़ा दे हुआ कहे मन दे हुआ
0: अच्छा
1: हाँ मैं ना सुंगा कौन लिख सुंगा ये बोझू जे हाँ
0: अच्छा
1: मन दे हुआ।
0: हाँ हाँ आन लेने सिल कर दे सच बोलो।
1: हो
0: अच्छा तो फिर मशरूम भी थी और फिर सिलाई भी थी काम आए बोलो और इस संग कहीं
1: आरी का ही ना
0: बेड़ा खड़ा बोल
1: हो
0: कहीं
1: बेड़ा खड़ा करुआ हो का घर और लोकमन करुआ।
0: अच्छा हाँ हाँ बोले ये बोल तो अच्छा है बोलो भी घर चो जो काम संग संगे मशरूम बोले वैसी आछे सिलाई बोले वैसी आछे है कि नहीं बोले ने फोका ना रहो आज बोलो भी
1: हो
0: दुई पैसा बोले ने ये चलने ऐसी आज बोलो भी नहीं
1: आसु
0: है कि नहीं तो काय काम है ऐसी आज घरे जसन की पैसा वैसा ये कर लास मल ने दुई पैसा मिल लेने।
1: काय करबू ता घरे में तो पिला टोकी के
0: हाँ
1: पढ़ा लिखा करबू अचू और
0: हाँ
1: घर काम धाम कुली भूती करी खाए वालों तो
0: हाँ हाँ
1: हाई पैसा तो खाए बुआ चू।
0: हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ बोले नहीं घरे रह रही के तो अच्छा तो है कम से कम है कि नहीं गोटो को माने लगे हुनर रला बल्ले ने अपना जीवला जीख से कुछ है कि नहीं तो अल्हारक फिर काय नाम बोल लीज जाले
1: आनंद कुमारी
0: तो आनंद कुमारी तोर संगीत लो अच्छा मशरूम बनावा भी थी तोर स्व सहायता समूह फिर तोर सिलवा भी थी गोट के सबके सांगली साल खूब खूब जुआर
1: जुआर।
2: हाँ तो भाई बहन मन काय सुंदर ये गोठ मन रहे अरु ये बहन रहत आनंद कुमारी बेसरा अरु ये मन संगे गोठ बात करते रहत बलबीर सिंह कच्छ तो देखा घरे रहुन भाती बले ये बहन कितरो सुंदर आप लो जोन स्व सहायता बनाउन भाती मशरूम उत्पादन करून आर्थिक आमदनी करुआत तो असनी आमचो बहन मन के कहीं नहले कहीं बुता मूर करून भाती उनके आगे बढ़ा तो कोशिश करतो रहे ये चोले आमी खुद सक्षम हों दे आरु आर्थिक रूप ले मजबूत बले बनुक सकूं दे तो देखा असनी हरिक ने फिर गोटो गीत सुन तो काजे मैं बोले से कि यह एक गोटो गीत और सुना आरु ये गीत के गावला सोत दिलीप कुमार पांडे आरु हुंचो संगवारी मन आले सुनू ये गीत के

0: अभी घर द्वार कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 1 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
3: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा

0: पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चोगोट।
2: किसान दाता दीदी मन जोंदरा बल्लो ने तो तुम्हें जान आश्चे कि जोंदरा के आमी भूजुन बोले खाऊं से और एक भाजुन काय रसिया लाई फुटाउन बोले खाऊं से। खातो लोग काय सुंदर जोंदरा चो पेज बोले पीऊवात और कोनी कोनी ए चो पिसान पिसुन रोटी बोले खाऊवात। आज मैं तुमके बरसा बतरने कमानी करतो जोंदरा फसल चो कमानी हुआट के सांगे से। सबले आगे जाना कि बेड़ा के कसन तैयार करतो राय। नगद पानी निस्को असन बारू बीती भूई ने जोब जाप करून नगत लगड़ा मारून माटी के बिरबिरा बनाऊन देतो राय। मांतर सरासरी हार लगड़ा मारतो पहिल 2.5 एकड़ हिसाब ने 20 किलो फाली डाल डस्ट के मिसातो राय और 15 टन गोबर चो खत बले मिसातो राय। नगत मक्का बल्ले जोंदरा फसल का जे पहिल हार जोपतो बेरा माटी पलटतो नांगर ने जोपतो आय फेर पाछे देसी नांगर ने जोपतो राय। एचो कमानी काजे नगत किसिम बनात कंपोजिट किसिमात प्रमाणित बीज गंगा 2 डेक्कन 103 गंगा 11 विजय नवजोत जे 684 किरण जे 660 माही कंचन माही धवल अरुण डी 765 पूसा कंपोजिट 1 पूसा कंपोजिट 3 एचो शंकर किसिम बनात चंदन मक्का 3 जवाहर मक्का 8 जवाहर मक्का 12 आरु किरण। फसल पाक तो हिसाब ने काय काय किसिम बनात एके बले मैं सांगुन दें से। झपके पाक तो बीती किसिम बनात जवाहर मक्का 8 जवाहर मक्का 12

प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रानू का नमस्कार। लेकर आ गए हैं हम आपके खत और उनमें शामिल आपकी पसंद के फिल्मी गीत। आगाज करते हैं कविता कृष्णमूर्ति, करसन सरगठिया और साथियों की आवाजों में हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत से। महबूब की रचना है, संगीत है इस्माइल दरबार का। फरमाइश आप सबकी है। राजनगर कांति निकेतन

थे कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रेणु मिश्रा, गोल्डी रुद्र गुप्ता, राजनगर गांधी चौक से रानी गुप्ता, सोनाली गुप्ता, संगीता और मेनका गुप्ता, यहीं से पलक, पंखुरी, माधवी, साध्वी, हैप्पी, रिद्धि, गुनगुन, चुलबुल, रेणु, ज्योति, शालू, दीप, शिखा और अर्चना मॉडल टाउन करनाल के श्रोता हैं। सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन और सुनीता शर्मा, यहीं से हैं सुहानी शर्मा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतो, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आप हैं दरियापुर वाभली महाराष्ट्र के श्रोता गजानन येले और नवदीप येले। शेरी वड ने रकोला से यह पत्र है बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर का। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। दुर्गा चौक जूनापानी सनावद मध्य प्रदेश से यह पत्र आया है कालू सिंह बड़ौले, सीताराम हीरालाल बड़ौले का। साथ में है तेर सिंह डावर, साहिल हरिओम, विशाल सुमन, रमा और कंचन। हथकेरा भाटापारा से आप हैं पंचू यादव और दादू यादव। वाबली से कमलेश साहू, हरेंद्र साहू और सुशील बेलसपुरिया। ये पत्र है नागर कोह का। राजनांदगांव से झग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा देवी, दुष्यंत प्रांजल और समीक्षा साहू का। बन बघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन। अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप हैं जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्रानी और कृष्णा केवट। हजदा छत्तीसगढ़ से ये पत्र कमलेश साहू का आया है। नगरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम सेजल साहू। इसी गीत की फरमाइश आई है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। बचेली से आप हैं बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका पुष्पराज और भुवनेश्वर सेन। सतोसा बकावन से ये पत्र है गेनूराम बघेल, तनुजा बघेल, सुभाष और गोमती बघेल का। आप हैं मगरलोड छत्तीसगढ़ से कोमल सेन। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेखल्ला बख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना। अगला नाम चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ का। और आप हैं रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन और मोहम्मद हसनैन रजा। आप सबकी पसंद पर पेश है प्रोग्राम का पहला नगमा हम दिल दे चुके सनम फिल्म से।

प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म बेताब के इस गीत को सुनवाने का अनुरोध आप सबका है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवहाड़कर, श्रीमती सरिता गंवहाड़कर, प्रिंस एकांश गंवहाड़कर, बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गंवहाड़कर, श्वेता सुमित गंवहाड़कर और ध्वनि गंवहाड़कर। बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत गंवहाड़कर, प्रणीता और टुक टुक गंवहाड़कर। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से ये पत्र है नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम का। अगला नाम भाटापारा से दान सिंह रावत दानू का, साथ में है पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत। ये पत्र आया है गांव रतनपुर झिरनिया से भगीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य और गुनगुन नायक का। अगला पत्र है अशोकनगर बसमत महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू और मोनू ठोके। नागेश्वर नगर से ये पत्र है माटेगांव शेषराव बोबड़े और देवराव बोबड़े का। अगला पत्र हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र धोड़ीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिक्कू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजूषा गौतम इंगोले और नामदेव राव शिंदे पाटिल का। साथ में है मास्टर विलास शिंदे पाटिल और सुनील जबड़े। अशोकनगर हिंगोली महाराष्ट्र से हैं हिंगोली महाराष्ट्र जीजा माता नगर से हैं लक्ष्मी उत्तम काबले, तामसा रोड तहसील हदगांव से ये पत्र आया है श्यामराव पटघणे और बिट्टू पटघणे का। आप हैं मित्तला महोबा उत्तर प्रदेश से, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, भूपेंद्र गौरव गुरु महाराज, जानवी राजपूत और विनीता सिंह। फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं रोहित यादव, बेटा यादव, पंकज अंगद, आयुष आर्यन और आदर्श यादव। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता और वैदेही जोशी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आप हैं राधा नामदेव, उत्तम भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अन्नावानंद और सत्यमानंद। आप हैं पाकुड़ झारखंड से, ये पत्र आया है लोरमी मेघापारा से मनोज साहू, धनंजय कृष्ण कुमार, गायत्री और कुसुम लता साहू का। हलवाईयान मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू साजदारानी और हिना कौसर। घोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से आप हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। डोंडी लोहारा दुर्ग से देवशंकर।

तामुरिया, ये पत्र आया है महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, दिव्यांशी, रेनू और रोनिका यादव का। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से आप हैं भागवत वर्मा और गुलाब दास। सागर मध्य प्रदेश से पत्र आया है चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा। और ये पत्र है पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर मट्टू, संगीता मट्टू, हर्षित और वैभव मट्टू का। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म

मन की आंखें इस फिल्म का गीत पेश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार साहिर, मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पसंद आप सबकी है। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही राही और महराज जहां, गणेशपेट पाथर्डी महाराष्ट्र से अंबादास शिंदे और संगीता शिंदे, यहीं से अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा, गंगजला सहरसा बिहार से ये पत्र है राधे कुमार विद्यार्थी, सविता विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार और गुंजेश कुमार विद्यार्थी का। साथ है रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार और आनंद कुमार, प्रमिलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से फरमाइश आई है बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा की। आप हैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू और योगेश साहू, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी और मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, बिरखेरा हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु, हिमांशु, प्रांशु, निवेदिता, ज्योति, मानसी, सुदीप और सुशीला पाल। ये पत्र शिव कोठी ओमकारेश्वर से है। राकेश, पप्पू सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन और ओम सेन, साथ में पिंकी सेन का। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से फरमाइश है बाबू यादव, श्रीमती मंशा यादव, दुर्गेश, सीमा, अन्नू और अरुणेश यादव की। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आप हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। ये हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। अगला नाम पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल का। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। मेहरनगर उमेर कांकेर भानुप्रतापपुर से आप हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया और मनोहर निषाद। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम मन की आँखें।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम श्रोता सुमन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में अगला गीत सीता और गीता फिल्म से। आर डी बर्मन की बनाई तर्ज पर गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। प्रणाम सिटी खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा राजेश कुमार, अंजलि संदीप कुमार, माधुरी पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। कुंदानगर खरगोन से ध्रुवास सोनवड़े, सुनीता सोनवड़े, खुशी प्रियांश आशीष, पूनम कृष्णा और शुभम सोनवड़े। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर रेखा, गगन सोनी, सीता और गीता। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। आप हैं सुभाषवाद भाटा पारस से एम एल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन, गिरीश करण, युवान ढाबेश यादव। ये पत्राय है ताजमंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार का। बाजार चौक ग्राम दीवाल से हैं शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू पूजा, रोशनी अजय और वामिका गंगराड़े। ग्राम छैगांव देवी खंडवा से आप हैं अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र झवर, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश आई है दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से आप हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। मोटका माफी खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना कनिका, आदित्य मानस और मन पटेल। अगला नाम हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा और हनुमान बोड़खे का। तेलीपारा बिलासपुर से आप हैं।

से आप हैं पंकज सिंह, चंचल सिंह, ऋषिका, आकृति और वंशराज सिंह यमुनापुरम से, धीरेंद्र सोलंकी, सुनीता सोलंकी, निष्ठा शौर्य और मून सोलंकी यहीं से, एमएस अब्बासी कलानौर से, नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक शर्मा औरंगाबाद से इसी गीत को पसंद किया है, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। आइए सुने आप सबकी पसंद पर सीता और गीता फिल्म का ये गीत।

अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए, नगीना फिल्म से। गीत आनंद बख्शी का, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइशी खत आप सबके हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय और प्रीति राय, यहीं से नवनीत राय। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया।

आप हैं पुणे से पंकज वाडोदे, मीनाक्षी चर्बे, रजनी कनीरे और कार्तिक युवराज। अगला नाम महासमुंद तुमगांव से सतीश कुमार यादव, श्रीमती चित्ररेखा यादव का। सुभाष वार्ड भाटापारा से मोटू यादव, रिंकू कुमार यादव, श्रीमती भूरीबाई युग कुमार और युवराज कुमार यादव का ये पत्र था। परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ये खत आया है। ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र और तुषारिणी मसिया का अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान हिच्छा महासमुंद से ये पत्र है। अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश, ऋचा गायत्री, भीष्म दास मानिकपुरी का। इसी गीत की फरमाइश आई है बेरडी से राजेश सोनी, कंचल सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी ढोमड़े, चंचल ढोमड़े और अर्जुन गावनेकर की। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक और खुशी सेन। सोरई ललितपुर उत्तर प्रदेश से आप हैं संतोष नामदेव, अभय नामदेव, अनिल, अजीत, अनीता, ज्योति, संजना और भारती नामदेव। यहीं से पूर्वी रूही, शक्ति भक्ति, अनु, अनन्या, आदर्श, दीपक और लव नामदेव। बिरसिंहपुर पाली मध्य प्रदेश से आप हैं

कोंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगतिन चक्रधारी, आशीष कुमार और अस्तिका चक्रधारी का। और ये पत्र भी ले लें, ये आया है भाटापारा छत्तीसगढ़ से, रोहित लक्ष्मे और ऋषभ अंश लक्ष्मे का। आप सबकी पसंद, आप सबकी नज़र।

भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और झावेंद्र वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर, धांडी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे, खुर्सीपार भिलाई से श्रवण कुमार यादव, विक्की आरती, देविका और बेबी यादव, अमित यादव, श्रीमती ईश्वरी यादव, करण कुमार और डिम्पी यादव, आप सब सुभाष वार्ड भाटापारा के श्रोता। बुलडाणा महाराष्ट्र से ये पत्र आया है नारायण भाऊ खड़ से, रक्षा ताई खड़ से, ललिता संजना खड़ से, गणेश और कार्तिक खड़ से, यहीं से मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी, रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे ब्रोनो, गणेश कार्तिक संजना परी ललिता नारायण खर्चे। अगला नाम भंडार सिमनी कोंडागांव से, सुभाष चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का और भवानी चक्रधारी का, एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से आप हैं, सीताराम कागड़ा, पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, पीपल नीम चौक अमोड़ा केशकाल से सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्का और नौबत यादव, चीतलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेदा सर्वेश और अधीरा इंगले साथ ही राजवी, ग्राम टूकिया बालोतरा राजस्थान से आप हैं कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा देवी, अर्चना विक्रम और साक्षी डाबी। जामथड़ा कच्छ भुज से ये पत्र आया है गंगा वणकर, प्रीति, जूली, गीता, महिमा, विशाल, विजय, विराट और वणकर परिवार का, रजौनी महोबा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंदपाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश और दिव्यांश पाल, फरासी हिसार से आप हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और सौरभ डूडी, महाराष्ट्र से विजय भोमड़े, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने और निवृत्ति अडोकार, सहारनपुर से अपर्णा नामदेव और अभिषेक नामदेव, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, जाखोत राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी और शंभुदयाल खटक, कस्बा नोहर हनुमानगढ़ से आप हैं नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार और हिमांशु सुधार, गांधीनगर गुजरात से ये खत सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा का है, जलना महाराष्ट्र से आप हैं विजय पाटिल और अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बीबी गव्या और सुच्चा पाठक। आप सबकी पसंद पर अब सुनिए लता मंगेशकर की ही आवाज़ में नीरज की रचना, फिल्म प्रेम पुजारी के इस गीत की धुन बनाई है एस डी बर्मन ने।

कार्यक्रम श्रोता सुमन के आखिर में सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म अमानत का गीत, जिसे लिखा है साहिर ने, तर्ज बनाई है रवि ने और सुना चाहा है आप सब ने। काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, निधीश परिधी और मायरा सुरोशे। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन और तानिया। खंडवा लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल, शीला और गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद। गोलबाजार बक्सर से ये पत्र है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित आर्य का। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनाडी से आप हैं सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा। रायपुर से इसी गीत की फरमाइश है नीलू मेघ की। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील यादव, सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बमहर चाटीडी से पसंद किया है गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी और निधि देवांगन ने। कंडला बंदरकच्छ से ये नाम है जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी और जनिश का। अहमदाबाद से कंचन सोनार और कुसुम, गांधीग्राम से प्रवीण सोनी। ये पत्र आया है ताजपुर मोरवा से कारी राय, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा का। ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी अगला नाम। अमरपाल दरभा से गणपत बघेल, मनीष और अनंत बघेल का। बुल्लाड़ा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधवड़े, माधुरी और आकाश बोधवड़े। जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू और जितेंद्र किशन साहू। यहीं से हीरेंद्र नीलकंठ साहू, सुनीता ऋषिवन और चंद्रहास, संजीव त्रिलोक साहू, रणजीत साहू और राजा भिलौरी। भीमेतरा छत्तीसगढ़ से ये नाम है रोहिणी डागेश्वरी साहू का। साथ में है खुलासा देवी साहू, छविता, पूनम साहू और भामिनी साहू। यहीं से देवव्रत राघवेंद्र, विधि, दीपिका, कविता, रिद्धि सिद्धि, दिविशा और हेमंत कुमार साहू। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश विद्यानगर तेंदुखेड़ा से ओम प्रकाश नेहा, श्रीमती किरण, आकाश नेहा, विकास और नंदिनी नेहा नेमा। छत्रपति, शंभाजीनगर औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। यहीं से सदानंद, विराज, अंशुमन और ओवी। तीन महुआ, खापरखेड़ा, रायसेन मध्य प्रदेश से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत, आरती, ममता गोमती और रागिनी साहू। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत अमानत फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

0: in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time, and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं. एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है. क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं. इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे.
0: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
1: Technology partnership हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है. भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं. जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा.
0: The Prime Minister also informed that in the field of defense today, both nations have signed an agreement on the first co-development project between India and Japan.
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है. नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा. अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी.
0: The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the

0: that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
3: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
4: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को

0: कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमरीका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरी पल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए

0: मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी

0: से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
1: इसे तराशा जाता है और
2: हाँ
1: ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे

0: का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
0: जी,
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा

0: हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, चाहता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है

0: से तुमने मारा है।
1: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दो?
1: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
8: ये हंस कैसे बताएगा? गद्दी पे बैठ कर
9: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
8: किसके पास
9: जा रहा है?
8: देवदत्त
9: तो कर उनका है।
7: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।

0: ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
2: महाराज की जय हो।
3: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
5: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं चंचल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
10: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
11: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
7: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
6: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
7: विशाल गैसों का गोला?
6: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
8: शाबाश, समझ गए ना?
9: जी सर।
7: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
8: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
6: सर, आदित्य

0: अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
1: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
1: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
1: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
0: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
1: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना।
2: जी सर।
1: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
0: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
1: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
1: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
0: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें, ऐसा क्यों?
1: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
1: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। शाम 4 बजे अपनी विशेष सभा में हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। FM बैंड पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, हमारी विशेष सभा अब आरंभ होती है। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य

धैर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक। देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342-1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: ने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन SSB के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफ़र तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेकर जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
0: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसीलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर DIG थे जो अभी IG हैं, और IPS संजय सर थे, वो पटना फ्रंटियर में थे। उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
0: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर मैं ठीक बता रहा हूँ?
1: जी बिल्कुल ठीक बहुत
0: बता जी रहे हैं। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
1: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पिलुट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजुरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें मारे गए।
0: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
1: जी, उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
0: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
1: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ इसमें। जी जी जी।
0: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
1: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग आराम से अपने डीआईजी महोदय, आईजी महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं।
0: जी।
1: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
0: जी
1: जी।
0: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि ये कितना खतरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आज़ादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
1: आपको बताना चाहते हैं अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के एसटीएफ भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहाँ से ख़त्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
0: क्या बात है सर। तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर बाद में फ़ायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
1: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था, बाहर से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको भला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
0: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
1: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है और उसमें आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है।
0: बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
1: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे,
0: उनका
1: अहम योगदान है और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
0: जी।
1: तो बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे दोनों साइड से, काउंटर फायर बहुत जबरदस्त,
0: जी
1: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी।
0: सर हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाज़ा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या, मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
1: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
0: खात्मा करें। जी, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
1: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सैट टीम हमारा

0: दिया गया है, उसके बारे में बताइए
1: जी। एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था, जिसमें दो नक्सली मारे गए थे।
0: अच्छा।
1: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला। तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है
0: जी। जी, और दो बार आपको मिला है?
1: दो बार गैलेंट्री।
0: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला इनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा,
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4

0: कल मैं जो टेन्योर मेरा चल रहा
1: जी
0: स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबका सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन
1: जी
0: हमको ये सौभाग्य SSB की तरफ से प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ SSB का।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: और सर, हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से BA ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने SSB ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप। तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
0: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
1: अच्छा
0: जी जी जी हाँ,
1: तो
0: तो
1: ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
0: जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए,
1: जी।
0: फिर
1: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड, कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
0: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने SSB ज्वाइन किया, फोर्स में
1: अच्छा
0: ज्वाइन किया। जी
1: जी तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
0: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
1: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
0: हाँ टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ। वहाँ
1: अच्छा
0: भी NDFE के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
1: अच्छा
0: हाँ वहाँ फिर NDFE के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
1: तो सर आपकी जो, जी, एक तो SSB का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
0: हाँ,
1: जी,
0: इंडो
1: तो
0: भूटान
1: आपका जो
0: बॉर्डर,
1: खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
0: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर। फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय
1: अच्छा
0: असम जल रही थी NDFE का, उससे
1: अच्छा
0: तो उसमें NDFE पर भी हम लोग काफ़ी काम किए थे। हमारे बटालियन SSB बहुत अच्छा काम किए थी उसमें। उसमें NDFE कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय। जी
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, GD। GD मतलब जनरल ड्यूटी।
0: जनरल ड्यूटी, जी
1: जी
0: GD मतलब जनरल
1: तो
0: ड्यूटी। हाँ
1: ये जाहिर है, ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी, जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
0: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए।
1: जी
0: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद
1: जी
0: प्रमोशन मेरा हुआ। जी
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने CTC सलोन बारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की?
0: सलोनाबाड़ी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ,
1: अच्छा,
0: उसके
1: बेसिक
0: बाद
1: ट्रेनिंग।
0: हाँ उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
1: तो 23 बटालियन
0: हाँ
1: असम में आपने
0: ट्वेंटी
1: शुरुआत,
0: थर्ड
1: अच्छा,
0: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा।
1: के बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
0: हाँ असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई
1: थर्टी
0: गांव
1: फर्स्ट
0: में हुआ।
1: बटालियन
0: जी जी जी जी
1: अच्छा
0: जी
1: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे?
0: हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफ़र 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था,
1: अच्छा
0: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई
1: अच्छा
0: असम में, आ गई हॉली में। जी
1: ओके तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं?
0: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युकसुंग में मेरी पोस्टिंग
1: जी
0: हुई है।
1: अच्छा, एक चीज़ सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग्स रहीं जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है?
0: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है
1: जी
0: उसमें मेरा
1: जी
0: कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता
1: जी
0: है।
1: जैसे
0: जी
1: आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक
0: पचास
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट था?
0: हाँ उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये, 50 केस का। उसके पीछे STF वगैरह भी लगी हुई थी।
1: जी
0: जी हाँ,
1: तो ये जो आपका
0: लेकिन
1: पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी याद करते हैं

0: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा वो, उस चीज़ को हम याद
1: अच्छा,
0: करते हैं जी ज्ञान।
1: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था
0: जी
1: जी, तो इसको आप सबसे ज़्यादा याद रखते हैं
0: जी, क्योंकि इसे बहुत मेहनत करना पड़ा। टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हर छोटे चीज़ से हर बड़े चीज़ में
1: जी
0: जी जी जी।
1: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
0: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
1: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
0: हाँ,
1: इन्फॉर्मेशन
0: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है
1: जी जी,
0: उस पर उतना विश्वास नहीं। लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
1: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
0: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो आप ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है उसका फॉर्म, मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं।
0: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
1: जी,
0: तो
1: ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया
1: जी, जी। सर हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड RJ साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ऑफ बिलेविड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे मे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोध हैं फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से। जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम, आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशन के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए।
0: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है, तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
1: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं,
0: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिल करके ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार है ये जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज़ सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी, ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
0: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
0: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
1: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीज़ें,
0: फोर्स से ही मैंने जी जी
1: जी। आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर कभी कोर्स किया है सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये जी।
1: अच्छा।
0: इसमें कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
1: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
0: सिखाया जाता है
1: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा

0: ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है, और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं खाना है,
0: अच्छा
1: और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है,
0: ओके
1: कैसे

0: बाथरूम। एक और मैसेज आया है। नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं। जय हिंद।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए।
1: जय हिंद आपको भी।
0: आपके सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात। हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: गलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए, जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
1: जी।
0: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही, और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
0: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
1: जी। ये सर, ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
0: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
1: अच्छा।
0: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
1: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस
0: जो
1: के लिए
0: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
1: ओके।
0: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
1: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
0: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
1: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
0: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
1: जी।
0: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
1: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
0: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस एसोसिएशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है, देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिल के काम करेंगे।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये मैसेज है, जय हिंद, भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके SSB में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं, और ये भी बताएं कि SSB के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं। और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुंचाएं अपने दिल की बात।
0: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो UPSC के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
1: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
0: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
1: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
0: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए बलिदान के हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं

मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:30 पर मीडियम वेव पर इंग्लैंड के दियोवल लंदन में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 सेमीफाइनल का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रसारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:10 पर, शाम 6:35 पर आप सुन सकेंगे सुदनी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत एफएम बैंड और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7:00 प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय होगा शाम 7:21 का। लोकगीतों के कार्यक्रम डांडामाली में रात 8:00 सुनिएगा मुरैया और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत। कार्यक्रम पिलामन का जिगोट रात 8:30 पर, इसमें सावित्रीबाई फूले पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे गोपाल पोयाम। आज रात 9:15 पर ग्राम पंचायत की विकास गाथा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा वार्ता, ग्राम पंचायत खेल मैदान व्यायाम शाला आदि का संधारण। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे नाटक दूर के ढोल, लेखक होंगे सुभाष पांडे, प्रस्तुति होगी जी शाम की। ये थे हमारे आज के सभा के शेष कार्यक्रम, अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। हमारी प्रातःकालीन सभा में कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, चिंतन सुबह 6:20 पर, आलेख और स्वर होगा मुमुक्षु मधु का, श्री रामचरितमानस का गायन आप सुन सकते हैं सुबह 6:25 पर, स्वर अनुराधा पौडवाल का, संगीत संयोजक होंगे सतीश भाटिया, कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चुगूठ सुनिएगा सुबह 6:35 पर और इसका पुनः प्रसारण हम करेंगे दोपहर 1:05 पर। हुलहुली कार्यक्रम में सुबह 6:40 पर सुना जा सकेगा दंतेश्वरी आयापाड़, वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, इसके आकर्षण होंगे काव्य सरिता के अंतर्गत राजकुमारी देवांगन से कविता पाठ और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 9:00 प्रसारित किया जाएगा लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी, संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्छ। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुबह 9:30 पर, कल की फिल्म होगी अगर तुम न होते। कल सुबह 10:00 होगा कार्यक्रम गुलशन, इसमें मेरी पसंद में सुनेगा उद्घोषक के पसंद के गीत। सुबह 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दू में सुनेगा शिवराम नाग और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। कल सुबह 11:00 रुसरुसा कार्यक्रम में सुनेगा लोक गाथा आंधा राजा का सातवां भाग, गायिका होंगी सुबरीबाई। कार्यक्रम एक ही कलाकार दिन के 11:30 पर, कल का हमारे कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राजकुमार पर। कार्यक्रम कला और कलाकार आप सुनेंगे दिन के 12:00। 12:30 पर होगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन हम लेकर आएंगे दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हमारी सांध्यकालीन सभा में कल शाम 5:05 पर होगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवाओं का कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:10 पर। कल शाम 6:35 पर आप सुन सकते हैं बालमती और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7:00। ग्रामीण कार्यक्रम आमचुगांव सुनेगा कल शाम 7:21 पर। कल रात 8:00 लोकगीतों के कार्यक्रम घलर में सुनेगा जलधर और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। पिलामन का जिगोट कार्यक्रम सुन सकते हैं कल रात 8:30 पर, प्रस्तुति होगी बलराम कश्यप की। कल रात 9:15 पर नंजर कार्यक्रम में सुनेगा तुकेश्वर प्रसाद खूटे से ली गई भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। हल्बी खेल पत्रिका में कल रात 9:30 पर होगा भेंट वार्ता, जिसमें कुसुम शार्दुल से भेंट करेंगे भरत कुमार गंगादित्य। और कल रात 10:00 प्रसारित होगा फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस, प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की, संयोजन चंद्र ऋषि ठाकुर का होगा। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार।
1: रेडियो सुन तो सपाई लोकमन के मैं माधुरी यादव करे से जुहार। समसामयिक चर्चा बलो ने ए समयाचो गोट भीतरे आज आमी गोट कर्मा उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा चो बस्तर दौरा चो बारे ने। छत्तीसगढ़ चो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा आप लोग बस्तर दौरा भीतरे कांकेर नारायणपुर और कोंडागांव जिला चो दौरा करला। ये दौरा दाए हुन मन माओवाद पीड़ित परिवार और शहीद जवान मन जो परिवार।

0: चो लोग मन संगे भेंट करला हुताय सर्व आदिवासी समाज प्रमुख मन संगे बसका भले करला। बसका करून हुन गांव ने चौपाल लगाउन लोग मंचो समस्या सुनून गोट बात भले करला। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा गेलो 26 जून के कांकेर जिला कलेक्ट्रेट परिसर ने नक्सल पीड़ित परिवार और शहीद जवान मंचो घर चो लोग मन ले भेंट करला और हुन मंचो समस्या के सुनून पीड़ित परिवार और शहीद जवान मंचो घर चो लोग मन ले भेंट करला और हुन मंचो समस्या के सुनून अधिकारी मन के झपके समाधान करतो निर्देश दिला। उप मुख्यमंत्री बल्ला की राज्य सरकार नक्सल हिंसा ले प्रभावित परिवार और शहीद मंचो आश्रित चो सम्मान सुरक्षा और पुनर्वास का जे काम करे से। श्री शर्मा बल्ला की हर बुधवार के जिला चो पुलिस अधीक्षक नक्सल पीड़ित परिवार और शहीद जवान मंचो परिवार ले भेंट करून हुन मंचो गोट के सुंदे। श्री शर्मा घोषणा करला कि प्रदेश ने वीर शहीद मंचो सुरता के हर हमेशा सुरता राखतो का जे चिन्ह बनातो रहे दे। ए भीतरे गांव ने सामुदायिक भवन चौक चौराहा और दूसर सार्वजनिक ठान मंचो नाव शहीद मंचो नाव ऊपर राखतो रहे दे। संघ ने जोन ठान मन ने नक्सल हिंसा चो बड़े घटना होली से हुथा हूँ ठान मन के चिन्ह स्मारक बनातो रहे दे। आप लोग दौरा दाएं उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा कांकेर जिला पंचायत चो बस्कर ठान ने सर्व आदिवासी समाज प्रमुख मंच को बस्का धरला। ए मौका ने बस्तर ने नक्सल उन्मूलन चो पाछे सफाई क्षेत्र ने विकास सामाजिक एकता और आदिवासी मंचो पुरखत समय ले चलतो संस्कृति और विरासत के बचातो ऊपरे चर्चा होली। हुताय उप मुख्यमंत्री अंतागढ़ विकास खंड चो बोड़ा गाँव ने सी ए कैंप परिसर ने चपाल लगाउन शासन चो जन कल्याणकारी योजना मंचो लाभ हर लोग मन लगले अमरातो ऊपरे बल दिला। संगे संग अधिकारी मन के निर्देश दिला कि ये तो 2.5 महीना ने हर गांवकारी चुनाव ने बैंक खाता खुलो। उप मुख्यमंत्री गांवकारी मन के जैविक खेती संगे गोरस रोजगार के करतो का जे सलाह बले दिला। आप लोग बस्तर दौरा चो दूसर दिन 27 जून के उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा नारायणपुर ने होलो सर्व आदिवासी समाज प्रमुख चो बसका के संबोधित करते बल्ला कि सामाजिक अरु देवठान मन के चिन्हांकित करून राजस्व अभिलेख ने चढ़ातो काजे काम हो। हुन सांगला के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला ने एक काम चले से। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नारायणपुर पुनर्वास केंद्र अमरून हिंसा चो बाट के छानून समाज चो मुख्य धारा ने बोहरलो जुआन मन संगे गोट बात बले करला। हुताय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कोंडा गांव जिला चो मर्दापाल चो कन्हार गांव ने हफ्तावार लगतो हाट ने आमरून गांवकारी व्यापारी जनप्रतिनिधि मन ले भेंट घाट करून समस्या मन के सुनला और उस संगे संग दूसर गोट मन उपरे बले चर्चा करला।
1: हल्बी बोली में अभी आप सुन रहे थे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार।
2: देवियों और सज्जनों, मैं आपका अपना पंकज त्रिपाठी, आपको भी मैसेजेज आ रहे होंगे कि रातों रात शेयर का दाम बढ़ेगा, ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट करो। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। NPCI द्वारा जनहित में जारी।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पायल दास
1: और मैं हूं इंदु कश्यप। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन।
0: इंदु
1: किस
0: सोच में डूबी हुई हो वैसे तुम?
1: बस सोच रही हूँ कि आजकल हम कितने ज्यादा मोबाइल पर

0: होता है।
1: हाँ, और कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं और रात को सोने से पहले भी उसी में व्यस्त रहते हैं, है ना?
0: और आजकल तो ऐसा हो गया है पायल कि जो हर माए हैं अपने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उनको मोबाइल दे देती है,
1: हाँ,
0: छोटे बच्चों को, जो कि गलत है।
1: गलत है।
0: और उन बच्चों पर जो है मोबाइल का इतना ज़्यादा लत लग जाता है कि बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते। और यही आदत धीरे धीरे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और अकेलापन का कारण भी बन सकती है।
1: हाँ इंदु, लेकिन सवाल ये है कि इससे बचे कैसे?
0: हाँ, सबसे पहले तो मोबाइल का इस्तेमाल करने का समय तय करें।
1: हाँ इंदु, और दोस्तों खाने के समय, पढ़ाई के समय और परिवार के साथ बैठते हैं उस समय मोबाइल को दूर रखें।
0: जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, खाली समय में किताबें पढ़ें, खेलें और परिवार से बातें करें।
1: हाँ, और अगर बिना वजह बार बार मोबाइल देखने की आदत हो गई है तो फ़ोन का नोटिफिकेशन बंद करना भी एक अच्छा उपाय है ना?
0: बिल्कुल, असली खुशी स्क्रीन में नहीं बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और वास्तविक जीवन के अनुभवों में है।
1: हाँ दोस्तों, आइए आज से हम सब यह संकल्प लें कि मोबाइल का उपयोग समझदारी से करेंगे, उसकी लत लगने नहीं देंगे।
0: तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हमारे साथी पायल से कि आज के कार्यक्रम की सूची क्या है।
1: हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कार्यक्रम आज के फनकार में बहुत फेमस गायिका की गाने, और आप सुनेंगे सामान्य ज्ञान और खेल समाचार से जुड़ी बातें, और साथ ही सुनेंगे वार्ता और लघु नाटिका। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
6: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
5: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
7: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, हमारी आज की फनकार है जो जानी मानी गायिका हैं, जिसके गीतों के सभी दीवाने हैं। और जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे भारतीय फिल्म जगत की मशहूर गायिका अलका याग्निक जी के बारे में।
1: जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक जी तो आजकल काफ़ी चर्चे में हैं।
0: अरे आखिर क्यों ना होंगे चर्चे। अलका याग्निक जी को हाल ही में भारत सरकार के द्वारा उनको पद्म भूषण से सम्मानित जो किया गया है।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी खुशी के साथ चलिए जानते हैं अलका याग्निक के जीवन परिचय के बारे में।
0: दोस्तों, अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम धर्मेंद्र शंकर है, उनकी माता का नाम शुभा है, जो एक भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका थी।
1: अलका ने सन 1972 में 6 वर्ष की आयु में आकाशवाणी कलकत्ता के लिए गाना शुरू किया। 10 वर्ष की आयु में उनकी माता उन्हें बाल गायिका के रूप में मुंबई ले आई थी।
0: अलका याग्निक जी ने दिग्गज संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याणी आनंद जी को अपनी आवाज़ को निखारने और मार्गदर्शन करने का श्रेय दिया है।
1: दोस्तों, आज हम सुनेंगे अलका याग्निक की प्रचलित गीत जो

साल 2000 में आई फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए का ये गीत है, जो बेहद प्यारा और रोमांचक शीर्षक गीत है। इस गीत को अलका याग्निक और कुमार सानू ने अपनी जादुई आवाज़ दी है और इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने और इस गीत को लिखा है राजेश मलिक ने। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, कुछ पलों के लिए देते हैं गीतों को विराम और ले चलते हैं आप सभी को सामान्य ज्ञान की ओर, जहां आप सुनेंगे सामान्य ज्ञान की बातें।
1: दोस्तों, सामान्य ज्ञान में पहली खबर है, ज्ञान की बातें में है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी कैप कमोरियन है। पूरे भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार में है।
0: हमारा दूसरा सामान्य ज्ञान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा।
1: अगली सामान्य ज्ञान में है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है।
0: अगला सामान्य ज्ञान है, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी।
1: रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में नोबल पाने वाले पहले भारतीय हैं और उन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान लिखे हैं। दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान में बस इतना ही।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सामान्य ज्ञान, अब हम आपको सुनवाएंगे खेल जगत से जुड़ी बातें।

0: 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में होंगे।
1: खेल समाचार है एशियन गेम 2026 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आईची नागोया में जापान में आयोजित होंगी।
0: दोस्तों खेल समाचार में बस इतना ही, चलते हैं कार्यक्रम में आगे।
1: दोस्तों अलका याग्निक ने 1980 के दशक से लेकर 2010 के दशक तक मध्य मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम किया है।
0: जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक को कुछ और भी कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, भारतीय संगीत और पार्श्व गायिका गायन में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है।
0: तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं हमारा अगला गीत, जो है फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत, जिसे लिखा है अनिल पांडे और संगीत से सजाया है शैलेंद्र सोल्डन्स। अपनी मधुर आवाज दी है अलका याग्निक और सोनू निगम ने।
1: चलिए दोस्तों सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, अब हम आपको सुनवाते हैं लघु नाटिका। विषय है गिरगिट और इसके लेखक है चाकू। इसे हिंदी रूपांतरण किया है जफर अहमद ने और इस नाटक के निर्देशक है सत्येंद्र शरत जी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं लघु नाटिका।
1: इंस्पेक्टर साहब, कितना भारी है ये टोकरा,
2: पर आपने बड़ा अच्छा किया जो सारे का सारा जब्त करवा लिया।
1: बड़े बीते और अच्छे बेर हैं।
2: क्यों प्रभु, देखते नहीं बाजार है?
1: मगर सरकार इस समय तो चौक में एक भी आदमी नहीं।
2: खुदा बताए रूस की सर्दी से।
1: अरे जी, ये क्या? अंगूर पके, रस भरे, ताजा उतारे हुए।
2: जी जी, बिल्कुल ताजे दिलों पर पके हुए, जैसे हुजूर शाही महल में जाते हैं।
1: मैं कहता हूँ हुजूर, हो जाए इनका भी निपटारा।
2: हो तो सकता है, मगर तुम्हारा टोकरा तो पहले ही भारी हो रहा है और मैं
1: हुजूर, इसकी आप चिंता मत कीजिए, आखिर मैं आपका फरमा बरदार हूँ। मैं तो ऐसे ऐसे 10 टोकरे उठा सकता हूँ।
2: बस आप तो जल्दी से कोई ऐसी तरकीब सोचिए जिससे इस टोरगो के बच्चे की जो तरो ताजा गुण सब किए जा सके।
1: तरकीब और मैं सोचू?
2: यानी मेरा मतलब
1: चुप भी करो और मेरे पीछे पीछे आओ।
2: आइए।
3: कौन तोरगो?
1: कहिए, आपने शरीर की दुकान पर आने से कैसे?
2: बस, इन चिकनी चुपड़ी बातों को बंद करो और खुदा के नेक बंदे की तरह मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब दो।
1: फरमाइए, क्या हुक्म है हुजूर?
2: हुक्म नहीं, सरकारी तफ्तीश। मैं पूछता हूँ, तुम्हारे ये अंगूर किस बाग से चुराए हुए हैं?
1: चोरी? नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं, जरूर ये किसी बदमाश की उड़ाई हुई है।
2: खुदा गवाह है हुजूर, कल मैंने अपनी बीवी का इकलौता गहना गिरवी रख कर ये फल खरीदे हैं और अभी अभी खुदा का नाम लेकर बैठा हूँ। अगर इस मौसम में फलों का कारोबार चल निकला तो उसे ऐसे ऐसे 10 गहने बनवा दूंगा।
1: गहने?
2: फल वाले की बीवी के गहने?
1: वाह वाह वाह वाह वाह, खूब, यानी क्या खूब।
2: यानी तुम्हारी बीवी के पास गहने भी हैं? मगर मैं पूछता हूँ, ये गहना तुम्हारी बीवी के पास कैसे आया और मुझे खबर तक नहीं हुई? मैं पूछता हूँ, आखिर इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम उसके लिए गहना बनवा
1: सको? मगर हुजूर, वो तो उसके बाप ने उसे दहेज में दिए थे।
2: तो जरूर उसके बाप ने चोरी की होगी। बाहर के इस बात की तफ्तीश तो बाद में होगी, अभी तो अंगूरों का मामला है और बस ये यकीनी है कि ये चोरी गए।
1: नहीं हुजूर, मैं आपको मंडी वालों की रसीद तक दिखला सकता
2: हूँ। क्या हमें इतनी भी अकल नहीं कि ये जान सके कि रसीद भी जानी हो सकती है? और सिपाही, मैं पूछता हूँ, तुम खड़े खड़े नीचा देख रहा हो मेरा? उठाओ ये चोरी का बाजू।
1: हुजूर, मालूम पड़ता है कि दंगा फसाद हो गए हैं उधर उस लकड़ी के ताल के पास। वो देखिए,
2: हाँ, सिपाही तुम फौरन मेरे पीछे चले
1: आओ। चलिए, मजबूती से पकड़ लो ना, मैं ही करूंगा। तुम हुक्म कराते जाओ।
4: क्या
2: हंगामा मचा रखा है यहाँ? और तुम सुनार, ये उंगली क्यों उठाए हुए हो? और मैं पूछता हूँ, कौन चिल्ला रहा था यहाँ? तुम लोग यहाँ भीड़ क्यों लगाए हुए हो?
4: हुजूर, मैं बड़ी शराफत से चला जा रहा था, लकड़ी के सिलसिले में मुझे कुछ काम था। एकाएक मालूम नहीं क्यों इस बदमाश कुत्ते ने मेरी उंगली में काट दिया। हुजूर जानते हैं, मैं सुनार आदमी ठहरा और फिर हमारा काम भी बहुत नाजुक है। हुजूर, एक हफ्ते तक शायद ये मेरी उंगली ठीक ना हो पाएगी। मुझे

0: करो, हाथ नीचा कर, हाथ नीचा कर। गधा कहीं का, अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है तू? है सारा कुछ उठते रहेंगे।
1: वो देखिए हुजूर, वो देखिए जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है। इधर तो आना भाई।
2: क्या बात है, आ रहा हूँ।
1: भाई जरा इस कुत्ते को तो देखना, तुम्हारे यहाँ का तो नहीं है।
2: अरे कौन सा ये? ये अरे यावा, हमारे यहाँ कभी भी ऐसा कुत्ता नहीं था।
1: अच्छा हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, बेकार वक्त बर्बाद कर रहे हो। अरे देख नहीं रहे हो, आवारा कुत्ता है। हाँ फरा फरा आवारा कुत्ता है। यहाँ खड़े खड़े मैं पूछता हूँ, इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करना है। तुमसे कहा गया है कि आवारा है तो आवारा ही समझो, मार डालो और काम खत्म करो।
2: मार डालो मार डालो, हमारा तो नहीं। लेकिन एक बात है, जनरल साहब के भाई के पास एक इसी तरह का कुत्ता है, अभी थोड़े ही दिन से वो यहाँ आए हैं। हमारे जनरल साहब को ग्रेहाउंड कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर उनके भाई साहब को ये नस्ल बहुत पसंद है।
1: यहाँ जनरल साहब के भाई आए हैं? सोचो तो, मुझे मालूम तक नहीं। मैंने कहा अभी ठहरेंगे क्या?
2: यहाँ शायद कुछ नहीं।
1: जरा सोचो, उन्होंने अपने भाई से मिलना चाहा और मुझे मालूम भी नहीं कि वो आए हैं।
2: तो ये उनका कुत्ता है।
1: बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है।
2: अच्छा सुनो भाई, इसे ले जाओ। इतना प्यारा नंदा मुन्ना सा कुत्ता है, इस सुनार की उंगली पर काट रहा था। लग रहा है कितना बढ़िया पिल्ला है।

0: वजेंद्र मोहन, कीमती आनंद, बलदेव राम नागर, एस बी लाल गोयल, आर एच चिश्ती। इस नाटक के निर्देशक थे सत्येंद्र शरत जी। दोस्तों, आज की लघु नाटिका में बस इतना ही। चलिए सुनते हैं ये संदेश।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता चंद्र ऋषि ठाकुर से अरुणिता दास की बातें। विषय है युवा प्रतिभा।
4: चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम युवा प्रतिभा के अंतर्गत हम समय समय पर आपके समक्ष लाते रहते हैं ऐसी प्रतिभाएं जो आपको तो बहुत चक्का करती ही हैं, साथ ही हमें भी आश्चर्यचित छोड़ जाती हैं। तो आज ही एक ऐसी ही प्रतिभा आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आप है अरुणिता दास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज या कहें आजकल जेन जी यानी जो 1997 से 2014 तक पैदा हुए हैं, उन्होंने एक क्रांति लाई है और वो है सोशल मीडिया की क्रांति। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और सोशल मीडिया के माध्यम से वो काफी कुछ कर रहे हैं, काफी बदलाव ला रहे हैं और ऐसी ही एक कोशिश अरुणिता भी कर रही हैं। तो आइए उनके बारे में और भी चीजें जानते हैं और सबसे पहले हम अरुणिता का स्वागत करते हैं आकाशवाणी की स्टूडियो में।
5: थैंक यू सो मच।
4: तो जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं और सोशल मीडिया में आप काम भी करती हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जो युवा दोस्त हैं, हमारे श्रोता हैं, उनको ये चीज नहीं मालूम होती कि सोशल मीडिया का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कैसे आप सोशल मीडिया में कुछ करने के प्रति आकर्षित हुई, आप बताएं।
5: स्कूलिंग मेरी यहीं से, 9th तक मैं दिप्ति में ही पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं रायपुर चली गई थी अपने आगे की पढ़ाई करने। फिर मैं 12th के बाद वापस आई, घर के कुछ मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थे तो फिर मैं वापस आई। फिर मैंने कॉलेज यहीं से किया है, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया।
4: तो जैसा कि मैं जान रही हूँ आपके बारे में, आप अभी कुछ शूटिंग करती हैं, प्रमोशनल शूटिंग आप कर रहे हैं, तो क्या आपने पढ़ाई भी उसी चीज की थी या फिर अलग चीज की पढ़ाई की थी?
5: नहीं, स्कूल में मेरा सब्जेक्ट था 12th तक मैथ्स, फिर मैंने मैथ्स को छोड़ दिया। फिर मैं बीए करने लगी, बीए इंग्लिश लिटरेचर में मैंने ग्रेजुएशन किया है। फिर ग्रेजुएशन करते करते ही मेरे को मतलब ऐसा लगा कि मेरे को इसमें स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने फिर इस फील्ड में अपना मतलब कोशिश की है, तो चल रहा है बस।
4: तो जैसे हम कभी भी किसी भी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं तो हमारा कोई ना कोई एक आइडियल होता है, कोई आदर्श होता है। तो क्या आपका भी कोई आदर्श था जिसको आपने देखकर सोचा कि मुझे भी सोशल मीडिया के क्षेत्र में या कहें प्रमोशनल शूटिंग वगैरह करनी चाहिए?
5: नहीं, ऐसा आइडियल इन द सेंस उसमें नहीं है, मतलब इन सोशल मीडिया वो नहीं है। मेरा आइडियल है मेरी मम्मी, मैं उनको देख के मतलब मैं जो करती हूँ मैं उन्हीं के लिए करती हूँ, क्योंकि वो सिंगल मॉम है तो उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस की है हम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए। तो मैं मेरा बस ये रहता है कि मैं जो भी करूँ इतना करूं कि वो प्राउड हो मेरे ऊपर। और आज मैं सोशल मीडिया में वीडियोस बनाती हूँ तो मेरी मम्मी जॉब करती हैं तो उनके ऑफिस वाले मेरे वीडियोस दिखा के उनको बताते कि आपकी बेटी का हमने वीडियो देखा, ग्रुप में भेजते हैं, तो वो दैट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर मी उस टाइम पे। तो जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिल गया है।
4: हमारे जो युवा हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि उससे अर्न कैसे करना चाहिए, हमें आर्थिक लाभ कैसे हो सकता है। तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकती है कि किस किस तरह से आप सोशल मीडिया से कमाई कर सकते हैं?
5: इनफैक्ट अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, मतलब पहले इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था सोशल मीडिया में, लेकिन अभी आप कंटेंट इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, फूड ब्लॉगर बन सकते हैं, जैसे मैं प्रमोशनल शूट करती हूँ वो कर सकते हैं, या आप अपना कोई भी कंटेंट, जैसे यहाँ पे भी जगदलपुर में भी बहुत सारे हैं जो अपने कॉन्टेंट क्रिएशन है, मेरे अलावा भी बहुत हैं, तो

0: अगर आप निकलोगे, आप चाहोगे कि आपको कुछ करना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सोशल मीडिया में भी आप रोज जाते हो शाम को, बाहर खाते हो शाम को, तो आप उस चीज को रिकॉर्ड करके डालो। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, ऑडियंस इतने जल्दी नहीं आती है, लेकिन अगर आप वही चीज कंटिन्यू डालोगे तो फिर एट अ टाइम आप उस चीज से अर्न करने लग जाओगे
1: धीरे धीरे।
0: धीरे धीरे। स्टार्टिंग बहुत, मैं आपको मतलब ये जो है जिस फील्ड में मैं हूँ इसमें ज्यादा पैसे स्टार्ट में नहीं है, मतलब आपको बहुत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक ऐसा मतलब सबसे पहले तो इस चीज में है कि आपका फेस होना चाहिए, आपके फेस को लोग पहचानेंगे तो फिर आपको काम आएगा, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, स्लो
1: कितना समय
0: प्रोसेस
1: लग
0: है।
1: जाता है? जैसे आप, अब अगर हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहें तो आप अपने बारे में बताइए कि आपको कितना समय लगा, कब आप लोगों ने अर्निंग स्टार्ट किया?
0: मेरा तो था, मैं स्टार्टिंग में फ्री करती थी, मतलब मैं जो स्टार्टिंग के प्रमोशनल शूट की हूँ वो मेरे फ्रेंड का या किसी का, तो मैंने फ्री में किया है। फिर उससे फिर मेरा जो था वो बढ़ा 250 रुपये, उसके बाद हुआ वो 500 रुपये, फिर अभी मेरे को मिलता है, मतलब शूट के ऊपर है, अब मैं कभी 2,000 कभी 3,000 ऐसे मिलता है मेरे को। तो वही है, मतलब आप जितने बड़े बड़े चीजों के साथ में कोलाब करेंगे धीरे, पहले तो मेरे पास था नहीं, मैं ऐसे नॉर्मल जो शॉप था उनके साथ से करती थी, फिर मेरे को अभी रिसेंटली ऐसे कुछ कुछ बड़े शॉप्स का आया ऑफर तो उनके साथ मैंने किया, तो मेरे को ऐसा है कि अब उससे वो चीज हो रही है, तो मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल तो हो लग गया,
1: 1 साल
0: ऑलमोस्ट।
1: जी। आपने बताया कि आपकी पूरी टीम है, क्या उसके बारे में हम जान सकते हैं कि
0: हाँ,
1: आपकी जो टीम है उसके क्या क्या रोल्स हैं, कितने मेंबर्स हैं?
0: मेरे टीम में बेसिकली 3 मेंबर है, एक मेरा भाई है, मतलब दोस्त है, बट ही इज माई ब्रदर, लाइक माई ब्रदर ओनली, अयास, और एक और मेरी फ्रेंड है संस्कृति, तो हम तीन बेसिकली फ्रेंड ही थे। तो एक मेरा जो अयाज है उसका एक शॉप है, उसी के लिए मैं शूट करती थी पहले, प्रमोशनल शूट करती थी, तो वहां से हमको आइडिया आया कि फ्री क्यों ही बैठना है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम बाकी लोगों के लिए भी करते हैं, तो हमने फिर एक रील शूट की, उसको हमने सोशल मीडिया पे डाला कि जिसको प्रमोशनल शूट करवाना है, तो उससे भी हमको बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारा ऑफर आया है। तो बेसिकली 3 मेंबर है मेरी टीम में, और वो अयाज जो है वो डायरेक्टर है, एडिटर है, और शूट वो करता है, और मैं और संस्कृति जो है प्रमोशन करते हैं, बस बोलते ऑन कैमरा का काम है हमारा।
1: ऑन कैमरा आपका और बिहाइंड कैमरा या फिर प्रोडक्शन का काम जो
0: हाँ,
1: है
0: वो अयाज का है।
1: वो जी। तो आप ये बताएं, जैसे आगे के भी हम गोल्स डिसाइड करके रखते हैं कि हमें आगे क्या करना है, तो क्या आप तीनों ने कुछ आगे का सोचा है कि आगे कि आप सिर्फ प्रमोशन शूट पे रहेंगे या उसका दायरा और भी बढ़ा सकते हैं? जैसे अन्य सोशल मीडियाज भी हैं जिसके माध्यम से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, उस दिशा में भी आपने जाने का कुछ सोचा है?
0: अभी हमारा पेज स्टार्ट किए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, हमारा जो इंफ्यूजा पेज है वो अभी अभी में बना है, मैं प्रमोशन पहले से करती हूँ लेकिन पेज अभी अभी बना है, तो उस चीज को उस लेवल में, यूट्यूब जो है उसमें इतने जल्दी सब्सक्राइबर नहीं आते, उसमें बहुत टाइम लगता है, वो इंस्टाग्राम से भी ज्यादा टाइम टेकिंग चीज है, तो उसके लिए मतलब हम लोगों ने अभी वो चीज सोची है लेकिन उसको होल्ड पे रखा है। हमारे पास में बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे हम चीजों को, हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाना बनाना चाह रहे हैं, हमारे पास स्क्रिप्ट भी है, लेकिन हम उस चीज को थोड़ा होल्ड पे रखें कि ऑडियंस एक आ जाए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस हो जाएंगी, जो ऐसा पता है कि जो देखेंगी, तो फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे।
1: जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ शुरू करना चाहता है, सोशल मीडिया में अपना फैन पेज बनाना हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से अगर उसे कुछ करना हो, तो शुरुआत में उसे किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है? आपके नीश क्या होंगे या फिर किस तरह का सोशल रिसर्च आपको करना पड़ता है? आपने भी क्या कुछ किया था?
0: मैंने सबसे पहली चीज है, आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, मतलब आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया फूड ब्लॉगर हो गया या कंटेंट क्रिएशन हो गया, आप उस चीज को लेके बहुत क्लियर रहो, आप जो चीज स्टार्ट किए हो उसको लेके कंटिन्यू चलो, उसके बाद लग रहा है कि आपको रीच मिल गई है तो उसके बाद आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट जो जो ऑडियंस रहती है ना वो बन जाती है, उनको वही देखना पसंद आता है, लेकिन फिर वो अचानक स्विच करते हैं ना, तो फिर हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमने कुछ और ट्राई किया है तो लोगों को वो उतना पसंद आया नहीं है, हमारा एक वीडियो था पहले ऐसा, तो इस कारण से हम अब समझ आ गया कि सोशल मीडिया कैसा है। यहाँ सोशल मीडिया सबसे पहली बात, यहाँ जिस जहां पे आप हो वहां के लोगों के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो लोग कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप अगर उसे वैसा कंटेंट बना रहे हैं तो आपको रीच मिलेगी, फिर वही है।
1: तो जैसे हम बस्तर की बात करें या फिर सिर्फ जगदलपुर की भी बात करें, तो आपने रिसर्च में क्या पाया कि जगदलपुर के लोगों को किस तरह का कंटेंट पसंद आता है?
0: जगदलपुर और बस्तर ना बहुत ही वाइड है और लोगों को

0: लगता नहीं है उसके बारे में। तो हम जो प्रमोशन शूट करते हैं वो बहुत सारे लोग दुकान के बारे में जानते ही नहीं है, या जानते भी हैं तो उनको ये नहीं पता कि दुकान में। और आजकल जाना, घर से निकल के वहां जाना, वहां पे पता करना लोग चाहते नहीं है। तो हमारा मोटिव वही था कि जो दुकान है, जो ओनर्स हैं, उनको वो चीज, मतलब वो अपने कस्टमर तक वो चीज पहुंचा सके। तो हमारा मोटिव वही था, तो हमने वही किया। और जगदलपुर जो बस्तर है वो इतना वाइड है, अभी बस्तर के ब्लॉगर्स जो हैं, कुछ कुछ जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो नए नए जगह डिस्कवर कर रहे हैं, जैसे झारा लावा हो गया या कुछ हो गया। तो उसमें भी यहाँ के लोगों को वो चीज बहुत पसंद है कि नई नई जगह उनको देखने को मिल रही है, नया नया चीज पता चल रहा है कि कहाँ क्या है। तो बस यही है। तो यहाँ के लोग वही देखना चाहते हैं जो उनको नहीं पता है, और हम उनको वही दिखाना चाहते हैं कि जो हमको, मतलब हम जानते हैं। जैसे वही बताया मैंने, एक्सप्लोरर जो हैं तो वो नए नए जगह ढूंढ कर ला रहे हैं कि बस्तर में घूमने की ये जगह है। कि अभी आपको हाल ही में बहुत सारी जगह पता भी चल रही होंगी कि झारा लावा हो गया या कुछ हो गया। तो ये उनके कारण हमको आइडिया आता है कि ऐसे जगह है बस्तर में, नहीं तो पहले बहुत वो था, लिमिटेड था, चित्रकूट, तीरथगढ़, या तो तीरिया वीरिया भी अभी पता चला है, बस चित्रकूट और तीरथगढ़। तो बस यही है।
1: तो यहाँ के लोगों को नई नई चीजें देखना ढूंढना पसंद है।
0: हाँ, और जिनको पसंद है वो ट्राई कर रहे हैं कि वो दूसरों को भी बता सके। जिनको घूमना पसंद है लेकिन वो नहीं ढूंढ पा रहे, तो वो वीडियो देख के उस प्लेस में जा रहे हैं, तो वो उनका मतलब प्रॉफिट ही हुआ एक तरीके से, और वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं क्योंकि उनको आगे पता चले, नॉलेज मिले।
1: तो आपने तो बहुत सारी जानकारी दी है और हमें ये उम्मीद है कि आपका भविष्य जो है वो उज्जवल ही होगा।
0: थैंक यू।
1: लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे वो युवा साथी जो अभी आपको सुन रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल इसी का ही जमाना है, लोग टीवी को भूलते जा रहे हैं, सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं। तो लोग चाह रहे हैं, खासकर युवा जो है वो चाह रहे हैं कि हम भी सोशल मीडिया में आए और जिन्हें वो देख रहे हैं उनकी तरह कुछ करें। तो जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी, जो कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया के क्षेत्र में?
0: करना चाहते हैं तो करिए, निकलिए। मतलब घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, मैं सच बता रही हूँ। घर में बैठोगे आप, बस सोचोगे। मैं आज से 1 साल पहले तक मैं भी ऐसी थी कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है, लेकिन कुछ नहीं होगा। और है, घर वालों का भी था कि मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं इस चीज में, लेकिन किसी किसी के होते हैं कि उनको ये सारी चीज नहीं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो जब तक आपको हार्म नहीं हो रहा या आपके घर वाले को हार्म नहीं हो रहा उस चीज में, तो आपको उस चीज को परस्यू करना चाहिए
1: जी,
0: मेरे हिसाब से।
1: एक सवाल छूट गया था जो अभी मेरे मन में आया है, वो भी
0: हाँ
1: मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ। जब भी हम किसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोचते हैं तो हमेशा ये मन में डर रहता है कि पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा। तो जैसे आप एक प्रेजेंटर हैं, आप प्रमोशनल शूट्स करती हैं, तो क्या आप हमें बता सकती हैं प्रमोशनल शूट्स वगैरह करने में या फिर एडिटिंग वगैरह करने में लागत कितनी आ जाती है, इक्विपमेंट्स वगैरह?
0: ये मेरे से बेहतर जो डायरेक्टर है उनको पता है ये चीज, लेकिन वही है कि इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। मतलब आपके वीडियो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आप किस टाइप की क्वालिटी, आप इस सेम वीडियो को आप फोन से भी शूट कर सकते हैं और सेम वीडियो को आप एक DSLR कैमरे से भी शूट कर सकते हैं। बट वही है कि आपको सामने वाले को क्वालिटी कैसा चाहिए। तो अगर आपको कैमरा के, जो मेरी टीम है वो GoPro यूज करती है, तो वो अराउंड IS 40,000 समथिंग पड़ा था हम लोग को। तो वही है कि वो,
1: आप सभी ने फिर कांटेक्ट
0: नहीं,
1: करके
0: नहीं, वो
1: खरीदा
0: अयाज नहीं खरीदा है, वो खुद उसने ही खरीदा है। तो
1: था?
0: वो सारी चीजें संभाल लेता है, ये सारी चीजें। अयाज के कारण ही मोस्टली टीम जुड़ी हुई है वीकेंड से, क्योंकि वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, टाइम मैनेज करना शूट के लिए। मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, आई एग्री। वो मेरे को चिल्ला चिल्ला के वहां पे बुलाता है कि हो गया, चलो आओ शूट पे आओ। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करता है। और अयाज है, हाँ, चीजें थोड़ी थोड़ी मतलब इरिटेट करता है कभी कभी, बट अयाज नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि इन्फ्यूजा अभी होता। उसने इनकरेज किया है कि करते हैं, घर पे बैठने से क्या होगा। उसके ही बोलने पे मैंने ये चीज स्टार्ट की है, कि उसने ही मेरे को बहुत मोटिवेट किया है कि अगर तुमको कुछ करना है तो तुम निकलो और तुमको करना चाहिए वो चीज।
1: और अगर हम ऑफर्स की बात करें तो अभी कितने ऑफर्स आपको मिल रहे हैं प्रमोशनल शूट के?
0: अभी टचवुड है, अभी लाइन से है, मतलब 3-4 तो है ही लाइन में, तो और ये खत्म होता है तो फिर दूसरा। अभी हमारे ऐसा भी हो गया कि एक बंद गया है, कि मतलब ये शॉप वाले फिर से रिटर्न में शूट करवाते हैं हमसे, तो अभी है।
1: तो अरुणिता, आपसे तो हमने बहुत सारी बातें की और कोशिश की कि ज्यादा जानकारी हम ले सके, लेकिन अगर कोई बात रह गई हो और आप कहना चाहती हो तो कहें।
0: मैं यही बोलूंगी कि जो मन में आता है ना वो करना चाहिए, और मतलब

0: फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी, हाँ स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ था मेरी फैमिली को लेके. उन लोग को अभी भी नहीं लगता कि ये चीज वो है, स्टेबल है कि आप इस चीज में कर सकते हो. उनका अभी भी है कि तुम अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट करो, पढ़ाई कम्प्लीट करो, एज अ साइड अगर तुमको ये करना है तो तुम करो. लेकिन मम्मी और नानी, हम लोग स्टार्टिंग से नानी की फैमिली के साथ ही रहे हैं, तो वो लोग हैं कि अगर अच्छा है कर रहे हो तो करो. तो फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: जी, तो यहीं पे हम आज की बातचीत खत्म करते हैं. आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो.
0: थैंक यू,
1: धन्यवाद आपको.

0: अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं।
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: दोस्तों, आज के फनकार में हम आपको सुनवा रहे थे सुप्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक जी के गीत, और फिर साथ ही लघु नाटिका, और हमने सुनी भेंट वार्ता। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आज के गीत भी आप सभी को काफ़ी पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ कल शाम फिर होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक किसी नए संदेश और नए साथी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मुझे इंदु कश्यप को
6: और मुझे पायल दास को
5: नमस्कार।
6: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स

0: भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:10 होने को हैं। छत्तीसगढ़ी में समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हा आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ करीन। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला ले घलो आज ए योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ होइस। प्रदेश में सहायक प्राध्यापक के 700 खाली पद में जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाही उच्च शिक्षा मंत्री हा दिन निर्देश। औ राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के आयोजन करे जाही, मुख्यमंत्री हो ही शामिल। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा कहिन है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करे, ग्रामीण आजीविका ला मजबूत करे और गांव के विकास में तेजी लाए के दिशा में एक जरूरी कदम हरे। श्री चौहान हा आज तिरुपति जिला के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ करिन। कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए श्री चौहान हा कहिन कि ए योजना के उद्देश्य ए सुनिश्चित करना है कि कोनो भी गरीब मजदूर बेरोजगार ना रहे और सबोला रोजगार मिले। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत ले आज विकसित भारत जी राम जी योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ होइस। आंध्र प्रदेश के तिरुपति ले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा एक कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल होइन। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होइन। ए बेरा मां श्री शर्मा हा कहिन कि ए केवल रोजगार उपलब्ध कराए के योजना नहीं है बल्कि विकसित गांव ले विकसित भारत के निर्माण के अभियान है। उमन कहिन कि केंद्र सरकार हा छत्तीसगढ़ बर 3,300 करोड़ रुपयों के प्रावधान करे है। श्री शर्मा हा बतायन कि योजना के तहत 318 प्रकार के काम शामिल करे गए है। एमा जन संरक्षण ले जुड़े 107, ग्रामीण अधोसंरचना के 90, आजीविका संवर्धन के 86 और आपदा प्रबंधन ले संबंधित 35 काम शामिल है। उमन कहिन कि अब जॉब कार्ड के जगह मा जीआरजी कार्ड जारी करे जाही। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री हा गंडई खुर्द के प्रदेश के पहली विकास काम के रूप में शेड निर्माण प्रस्ताव ला स्वीकृति दीन। प्रदेश में सहायक प्राध्यापक के 700 खाली पद में जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाही। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्देश देगीस। संगे संग ओमन नहा 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेज में प्राचार्य के पदोन्नति के प्रक्रिया पूरा करे बर कहिन। बैठक में बताएगी कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थी मन बर महाविद्यालय में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम घलो शुरू करे जाही। उन्हें सरकार हा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला स्नातकोत्तर स्तर में लागू करे के तैयारी शुरू कर दे है। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के आयोजन करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होही। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक डहल्ले आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश भर ले किसान सहकारी संस्था के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होही। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होवैया ए 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत बनाए ऊपर चर्चा करे जाही। कार्यक्रम के उद्देश्य सहकारिता आंदोलन ला बढ़ावा देना और सहकार ले समृद्धि के संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उन्हें काली 3 जुलाई के बिहनिया 6 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करे जाही। सहकारिता के भावना के साथ एक कदम समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर थीम में आधारित दौड़ में युवा विद्यार्थी किसान सहकारी संस्था के सदस्य और आने वर्ग के लोगन शामिल होही। दौड़ में पुरुष और माई लोगिन वर्ग के प्रतिभागी मन भर पहली दूसरैया और तीसरैया जगह के विजेता मल्ला आकर्षक पुरस्कार दे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिला के बम्हनीडी नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद मन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होइन। एबेरा मां चांपा एसडीएम पवन कोसमा हा अध्यक्ष रमेश

0: डटसेना डटसेना अउ पार्षद मन ला पद अउ गोपनीयता के शपथ दिलाइन। समारोह मा मुख्यमंत्री हा बम्भनी डी दहिदा तक हसदेव नदी मा पुल बनाए, बम्भनी डी मा विद्युत मंडल के सब डिवीजन ऑफिस खोले अउ मंगल भवन निर्माण के घोषणा करीन। छत्तीसगढ़ भवन अउ अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल हा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के लइका मन बर ऑनलाइन आवेदन के आखिरी तिथि 3 जुलाई ले बढ़ा के 12 जुलाई कर दे हे। इच्छुक आवेदक श्रम विभाग के पोर्टल मा अपन आवेदन कर सकत हे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता अउ खबर के विश्वसनीयता ले है हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल मा घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़बो बांचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा आज नई दिल्ली मा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ले मुलाकात करीन। ए दौरान दोनों मंत्री मन के बीच महिला और बाल विकास विकास ले जुड़े आने आने विषय में चर्चा हुई। श्रीमती राजवाड़े हा केंद्रीय मंत्री ला बस्तर के दूर और जनजाति अंचल मा संचालित योजना के प्रगति चुनौती और संभावना के जानकारी देन। राज्य सरकार हा आज बस्तर दुर्ग और बिलासपुर संभाग ले संबंधित नगरी निकाय बर 402 एल्डरमैन के नियुक्ति करे हे। बिलासपुर नगर निगम मा 197, दुर्ग नगर निगम मा 142 और जगदलपुर नगर निगम मा 63 एल्डरमैन मन के नियुक्ति करे गए हे। एकर पहली रायपुर संभाग के कतको नगरी निकाय बर घलो एल्डरमैन के नियुक्ति करे गे रहिस। राज्य सरकार हा प्रदेश के शासकीय कर्मचारी मन बर अल्पावधि ऋण के सुविधा शुरू करे हे। ये सुविधा राज्य शासन के ई क्रोस कोष प्रणाली ले एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिया ले संचालित करे जाही। नवा व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपन पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण बर आवेदन कर सकी। आवेदन के बाद EKYC डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति के प्रक्रिया पूरा होए मा ऋण स्वीकृति और वितरण

0: मानसून कमजोर रही। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IMM मा अवैया 4 अउ 5 जुलाई के चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। 2 दिवसीय ए शिविर मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संघी राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होही। ए शिविर के उद्देश्य बदलत तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन ला अउ प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार के अब तक की उपलब्धि, चुनौती और भविष्य के प्राथमिकता के समीक्षा करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहे है कि लगातार तीसरैया बछर आयोजित होवत ए चिंतन शिविर सुशासन ला ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाए के दिशा में जरूरी पहल है। युवा, माइलोगिन, किसान और नवा उद्यमी मन ला स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करे बर प्रोत्साहित करैया जिला व्यापार और उद्योग केंद्र डहर ले काली 3 जुलाई के सुकमा के शबरी ऑडिटोरियम मा तेजस कार्यशाला के आयोजन करे जाही। कार्यशाला मा विशेषज्ञ प्रतिभागी मन ला स्टार्टअप पंजीकरण, आने आने शासकीय योजना, बैंक ऋण, वित्तीय सहायता, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और व्यवसाय शुरू करे और ओला आगू बढ़ाए के बारे में जानकारी दी। संगे संग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करे के संभावना ऊपर घलो चर्चा करे जाही। दुर्ग पुलिस हा लगभग 1149 खाता के पहचान करके 39 लोगन मन ऊपर FIR दर्ज करे है। ए मामला मा अब तक 165 लोगन मन ऊपर कार्यवाही करे जा चुके है। जांच मा एक खुलासा होए है कि आम लोगन के बैंक खाता ला म्यूल अकाउंट यानी किराया खाता बना के करोड़ों रुपया के साइबर ठगी करे गए है। शुरुआती जांच मा ए आगू आए है कि बैंक खाता के प्रयोग साइबर अपराध ले अवैया पैसा ला छिपाए और आने आने खाता मा ट्रांसफर करे बर करे जात रहीस। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हा आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ करीन। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला ले घलो आज ए योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ होइस। प्रदेश मा सहायक प्राध्यापक के 700 खाली पद मा जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाही। उच्च शिक्षा मंत्री हा दीन निर्देश। औ राजधानी रायपुर मा 3 अउ 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के आयोजन करे जाही। मुख्यमंत्री हो ही शामिल। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इही सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली के
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:20 होने को है। संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
3: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखरस्तरीयां मंत्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, औषध, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके सन्धयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मू कश्मीरस्य भगवती नगर आधार शिविरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा। दक्षिण पश्चिम प्रावृत्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं संप्राप्तः तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन 2000-2000 परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा, औषध रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमन्त्रिणा सानेता काइची इत्यनया सह वार्षिक शिखरस्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते। सहैव भारत

0: जापान संबंधेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सोत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव सङ्कल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसिशन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं सञ्जातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा गत सायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री रूपेण ताकायची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति, तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विकपटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं सङ्कल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, स्वास्थ्यक्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखाङ्कितं यत् वर्तमानसमये समग्रं विश्वम् आपूर्तिशृङ्खलावरोधैः, व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रान्तरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां, सुशासने, व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधान विषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदा स्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनं कृतम्।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयम्

0: कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीतेः नवम समीक्षायां या च चत्वारिंशदधिकैकशतं मतैः अङ्गीकृता, तत्र सदस्य देशाः आदिष्टाः यत् ते विगत त्रिदशकेभ्यः भारतेन प्रस्तावितस्य अस्य अभिसमयस्य कृते अन्तिमरूपं प्रदातुं पूर्णप्रयत्नान् विदद्युः। वार्षिकस्याः श्री अमरनाथ जी यात्रायाः कृते द्वाविंशत्यधिक अष्टशतोत्तर चतुस्सहस्र तीर्थयात्रिणां प्रथम समूहं जम्मू नगरस्य भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविरात् विस्तृत सुरक्षा व्यवस्थायां हरितध्वजं प्रदर्श्य उपराज्यपालेन मनोज सिंहावर्येण अद्य प्रेषितम्। देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः तीर्थयात्रिणः पवित्र यात्रायां भागग्रहणाय जम्मू नगरम् आगच्छन्तः सन्ति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् विकसित भारत रोजगार इत्यस्य तथा आजीविका मिशन इत्यस्य प्रत्याभूतिः वीबीजी रामजी अधिनियमः 20-25 आजीविका सुनिश्चिततायाः ग्रामीणाजीविकायाः सुदृढीकरणस्य तथा च देशस्य ग्रामाणां विकासस्य गतिं वर्धयितुं प्रमुखं पदक्षेपः अस्ति। अद्य नैऋत्य प्रावृट्कालः सम्पूर्णे दिल्ली नगरे गुजरातस्य केषुचित् भागेषु उत्तरप्रदेशस्य शेषभागेषु मध्यप्रदेशस्य अधिकांशभागेषु हरियाणा पंजाब प्रदेशयोः राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रे प्रवर्धितः। राष्ट्रिय राजधान्यां निम्नवृष्ट्या उष्ण आर्द्रस्थित्यां न्यूनता आगता। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिका देशः 2,000 वर्षानन्तरं प्रथमवारं नॉकआउट चरणे विजयं पञ्जीकृतवान्। बोस्निया हर्जेगोविना देशौ 2-0 पराजितवान्। बेल्जियम देशः अपि सेनेगल देशस्य उपरि अतिरिक्त समयस्य विजयेन राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: मिडिवेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। मीडियम वेव पर लीजिए सुनिए, इंग्लैंड के दियोवल लंदन में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के मध्य खेले जा रहे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 सेमीफाइनल का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर लीजिए सुनिए ये सूचना।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता

0: हो सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
6: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
6: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
6: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
6: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
6: तो पैसे गवाओगे।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहाँ कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
11: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:35 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए सुदनी और साथियों का गाया ये हल्बी लोकगीत।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
8: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वीबी जी रामजी योजना का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तिरुपति से किया औपचारिक शुभारंभ। कबीरधाम जिले के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने आज बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से संबंधित नगरीय निकायों के लिए 407 एल्डरमैन की नियुक्ति की। और रायपुर में कल से 2 दिवसीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कल सुबह राजधानी के मरीन ड्राइव में होगी सहकार संकल्प दौड़। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम

0: देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव से विकसित भारत जीरामजी अधिनियम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जीरामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: योजना के शुभारंभ अवसर पर आज छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि ये केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं बल्कि विकसित गांव से विकसित भारत के निर्माण का अभियान है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 3,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री शर्मा ने बताया कि योजना के तहत 318 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजों में प्राचार्यों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। वहीं सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातकोत्तर स्तर पर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आज बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से संबंधित नगरीय निकायों के लिए 407 एल्डरमैन की नियुक्ति की है। बिलासपुर नगर निगम में 197, दुर्ग नगर निगम में 147 और जगदलपुर नगर निगम में 63 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है। इससे पहले रायपुर संभाग के कई नगरीय निकायों के लिए भी एल्डरमैन की नियुक्ति की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के किसानों से मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खेती बाड़ी की समुचित योजना बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है।
2: किसानों के साथ सरकार है और मौसम विभाग पहले से ही अवगत कराए है कि साल अल नीनो के कारण मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा, और हम लोग भी कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को अवगत करा रहे हैं। उस हिसाब से किसान मतलब अपना खेती बाड़ी का पूरा योजना बनाए।
0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह नगर पंचायत के नव निर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर चांपा एसडीएम पवन कोसमा ने अध्यक्ष रमेश डटसेना और पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री ने बमनीडीह दहिदा तक हसदेव नदी में पुल बनाने, बमनीडीह में विद्युत मंडल का सब डिवीजन ऑफिस खोलने और मंगल भवन निर्माण की घोषणा की। राज्य सरकार ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा राज्य शासन की ई कोष प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद ई केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण तथा सहमति की प्रक्रिया पूरी होने पर ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आगामी 4 और 5 जुलाई को चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि लगातार 3rd वर्ष आयोजित हो रहा ये चिंतन शिविर सुशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
2: 4 और 5 तारीख को IIM रायपुर में सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है। ये 3rd साल होगा, इससे काफी सहयोग होता है सरकार चलाने में। गुड गवर्नेंस के लिए काफी जानकारी, इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं, और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।

0: राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकार से समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। वहीं कल 3 जुलाई को सुबह 6 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच महिला और बाल विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। श्रीमती राजवाड़े ने केंद्रीय मंत्री को बस्तर के दूरस्थ और जनजातीय अंचलों में संचालित योजनाओं की प्रगति, चुनौतियों तथा संभावनाओं की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई से बढ़ाकर 12 जुलाई कर दी है। इच्छुक आवेदक श्रम विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र और श्रमेव जयते ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के कंसबहाल और धारवाडीह सेक्शन के बीच मरम्मत कार्य के कारण 3 जुलाई से 17 नवंबर तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। ये मेगा ब्लॉक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को अप और डाउन लाइन पर लिया जाएगा। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ यात्री गाड़ियां रद्द रहेंगी। इनमें हैदराबाद रक्सौल हैदराबाद, इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस और बिलासपुर टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन में समाप्त होगी तथा राउरकेला दुर्ग के बीच रद्द रहेगी। युवाओं, महिलाओं, किसानों और नए उद्यमियों को स्वरोजगार तथा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा कल 3 जुलाई को सुकमा के शबरी ऑडिटोरियम में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में विशेषज्ञ प्रतिभागियों को स्टार्टअप पंजीकरण, विभिन्न शासकीय योजना, बैंक ऋण, वित्तीय सहायता, मार्केटिंग, ब्रांडिंग तथा व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने लगभग 1149 खातों की पहचान कर 39 लोगों पर FIR दर्ज की है। इस मामले में अब तक 165 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि आम लोगों के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट यानी किराए का खाता बनाकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की गई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध से अर्जित धनराशि को छिपाने और विभिन्न खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। वरिष्ठ IPS अधिकारी बद्री नारायण मीणा ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने सुंदर राजपी का स्थान लिया है, जिन्हें केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर NIA में पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। संस्कृति और राजभाषा संचालनालय ने वर्ष 2026-27 के सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों और सांस्कृतिक दलों से 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दुर्ग जिले में सिंचाई विभाग के कर्मचारी को GPF में जमा राशि निकालने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। VBGRAMJI योजना का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तिरुपति से किया औपचारिक शुभारंभ। कबीरधाम जिले के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने आज बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से संबंधित नगरीय निकायों के लिए 407 एल्डरमैन की नियुक्ति की। और रायपुर में कल से 2 दिवसीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कल सुबह राजधानी के मरीन ड्राइव में होगी सहकार संकल्प दौड़। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सराय
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम ना भादु, राम राम
1: राम राम मंगलू, राम राम हमर लिसना
0: होय ना हमर ले
1: खूब दिन ले भेट गाठ होलु ना
0: होय ना आले जुआर भेट होलु ने गांव कर दीदी मन बोल भेट हो ने एची संगे बस्तर केश्वर कार्यक्रम सुनतो जम सब पाए गांव करी दादा दीदी सियान सजन और संग जोरिया संगवारी मन के मैं मंगलू
1: और मैं बादु
0: हमें दिनों करू से
1: राम राम और दाक मंगलू हमी तो गांव कारी दादा दीदी मन संग जुआर भेट कर लू ने अंतर पिला मन के बोल नी बोल को ना ने तो सब आए नानी नानी पिला मन के हमी दोनों चबाट ले कुबे कुबे मैं तो मंगलू
0: हाँ ना भादा
1: ना आजकल द पानी तो मारे से ही ने
0: पानी तो मारे से मानता रे समय आने जैसे बोले खेती बाड़ी समय चालू होली से
1: चालू होली से और आजकल नहीं खेती बाड़ी संगे संगे पिला मन चे स्कूल जाता बोले मुरोली ने और द कसन स्कूल बेरा नहीं हम के सब पाए पिला उनके स्कूल मन ने भर्ती करा दिया तो राय ने और उनमें नाचा ले पढ़ा लिखा कर उन बाती फिर उन मन पे रहे तो समय ने जसन की गांव के आए नाले पे पारा के आए घर के आए सब आए के चलावत ने
0: अच्छा पढ़न लिखन डले हो मन ओके पढ़ रहे कोनी बिजनेस बल कर सकत ना ने कुकी कुकी आप लहन चो हुनर हिसाब ने जसन कोनी डॉक्टर बल बन सको कोनी कोनी इंजीनियर बल बन सको ने होनी हिसाब ने काहे की कोनी कोनी जसन यूट्यूबर होए से हर कोई की तो नौकरी मिलो बोलते भी तो नु है ने उनका आप लहन चो हुनर हिसाब ने यूट्यूबर होए से ब्रॉडकास्ट होए से ये चीज बन मन ने आप लहन चो हुनर हिसाब ने आप लोग जीवन ने नगद
1: चला क्या करूँ खाओ ने और दक मंगलू आज आज ही चो पीला मन लेका लेके उन नहीं जैसा नॉन मन के अच्छा ज्ञान दिया मतलब शिक्षा मिर ली बोल लेने ये बेचो लेका लेके उन जैसन की बड़े बड़े बिजनेस ने कमानी कर तू आठ मन बोल सोच विचार करे सोत और संगे संगे आज ही चो पीला उन तू इपनाए बोल दिस की ये गाँव गाँव चो पीला उन बोल नहीं आज चो डेट ने कोनी कोनी एबे आमी बोल काके बोल पूछू हम नहीं तू आगे काय करू आस बोल एबे पिलावन सांगुन दे असन मके डॉक्टर बनता ने असन सोच आसे एबे पिलावन के और उन सोच के नहीं एबे पिलावन आगे असनी सोचे सो तू सन फोका नो आए मन मतलब उन डॉक्टर बनत रहे मन बनत रहे असन उन मन ने संगाला से ने और दक ये बेचो पिलावन नहीं पढ़ा लिखा उन कौन तो डॉक्टर बने से नल पर इंजीनियरिंग बने से नले फिर बिजनेसमैन बोल बने सतने और असनी पढ़ा लिखा उन आज चो डेट ने दक खेती बाड़ी ने बोल नहीं कोनी को ना अच्छा खेती बाड़ी करें दे बोलो नून बोल चो विचार संगाला से मन ने और उनके साकार बोल करते जाए सत और करे सत बोल ने दक मंगलू ये तो रे गोट ने असनी हम चले गए और गोट गोट मना सत ना ले गोट मन को ले हमरा उन्हें
0: आज हमरा
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर

0: 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपर एवर एक समान 18% कर लागे दे, आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपर एवर एक समान 18% कर होली से। ये काम ले कल पुर्जा बना तो कंपनी अरु घेन तो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे। एच ही संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे, ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी, दुई चक्का बीती गाड़ी और 3 चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम GST दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनु रह दे।
4: GST काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना की तोड़। बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता। HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़। इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे। इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकिन 8% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो। कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूड चक्का ना गाड़ी 8% GST मौला देने दोरकिता अदेन के अवसर कम टैक्स तक गाड़ी बने मास मंता।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: দেখে গোট মানকে তো আমি আমরা লো নে আমি বনাই গোটিয়াতে রহ কি এ বছর লেখা লিখি মন যশন পড়া লিখা অন বাতি আপলো দেশ পাড়া কে আগে বড়া তো আসনি দা কে বেচো লেখা লিখি পড়া লিখা অন ঘর চো পরিবার কে নে নালে পের সমাজ কে একে আগে কসন নে তোরা এ সাপা এ বেচো লেখা লিখি অন চো দি मतलब सोच विचार नहीं आसे और संगे संगे एबे दकनी गुलाय बट रान बोले सरते जाए से और उन जसन की एम्बुलेंस उन पर्यावरण ने पर्यावरण चो बारे ने बोले एबे चो लेखा लिखी मन को बे जागरूक बोले होला से ने और एक हम के कसन बचा तो राय बोले ने बे गांव गांव ने बोले सब पा लेखा लिखी मन जानत और समझ सत बोले ने दकना मंगलू आमचो लगसनी गोटक वार्ता से आले ए वार्ता के आमचो गांवकारी दादा दीदी मन लगे हमरा हूँ और एक हमरा सो हेमंत कश्यप आले सुनो
6: आले सुनो।
7: नमस्कार। जिस परिवेश में हम रहते हैं यदि वह दूषित हो जाए तो मन को भी शांति नहीं मिलती। तितली स्वच्छता की सबसे बड़ी परिचायक है क्योंकि वह साफ सुथरे स्थान पर बैठती है और हमें भी साफ सुथरे स्थान पर रहने बैठने की शिक्षा देती हैं। छत्तीसगढ़ का राजगीत जिसमें कहा गया है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती है पखारे तोर पहिया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। हमारा राष्ट्रगान हो या छत्तीसगढ़ का राजगीत इनमें नदी पहाड़ों का सुंदर उल्लेख किया गया है क्योंकि यह सभी हमारे लिए देवतुल्य हैं। नदियों के किनारे ही सभ्यता पनपी हैं। नदियाँ मानव समाज की पोषक हैं इसलिए नदियों को माँ की संज्ञा दी गई है। हम यह गीत भी तो गुनगुनाते हैं। धरती मेरी माता पिता आसमान मुझको

आधुनिकता के दौर में हम अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति लापरवाह हो गए हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मानव जीवन रोबोट की तरह हो गया है। जितना काम दिया गया है उतना करो, बाकी छोड़ो। हम जीवन के अन्य आवश्यक पहलुओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आदमी अपनी सेहत के लिए सुबह शाम हरे भरे बाग बगीचों में तो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति पौधरोपण के प्रति उदासीन है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जहां उत्सव के साथ पेड़ पौधे रोपे जाते हैं, वहां भी रोपित पौधों को बचाने गंभीरता से प्रयास नहीं होते, इसलिए हजारों में कुछ पौधे ही बच पाते हैं। पौधरोपण तभी सफल माना जाएगा जब रोपे गए पौधे के प्रति हमारी भावना आंगन में रोपे गए तुलसी की तरह पवित्र होगी। बचपन

0: सिन होते चले गए हैं। आज भी पार्क जाकर हम पेड़ पौधों की हरियाली और पक्षियों का कलरव सुनना पसंद करते हैं, किंतु अपने घर के आसपास की सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते। कचरा उठाने वाली गाड़ी एक दिन नहीं आई तो घर का कूड़ा करकट उठाकर नुक्कड़ पर फेंक आते हैं। पर्यावरण के प्रति हमारी उदासीनता ही स्वच्छ समाज और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा है। पर्यावरण सुधार की दिशा में सड़कों के किनारे पौधरोपण किया जाता है, लेकिन हम अपनी व्यस्तता का हवाला दे कुछ पौधों की सुरक्षा का भागीदार भी नहीं बनना चाहते। पौधों को लगाना सहज है, पर रोप कर छोड़ देना मानवीय अपराध जैसा है। लगभग यही बात भगवान महावीर ने भी कही थी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जब पेड़ पौधों में जीवन प्रमाणित हो चुका है तो जीवन रक्षक पेड़ों को बचाने में इतनी लापरवाही क्यों? महापुरुषों के सम्मान में विभिन्न मार्गों का नामकरण किया गया है। हम चाहें तो विभिन्न सड़कों के किनारे अलग अलग प्रजाति के फलदार औषधीय पौधों को रोपकर हम इन मार्गों को भी आम मार्ग, नीम मार्ग, अर्जुन मार्ग, जामुन मार्ग, साल मार्ग या महुआ मार्ग आदि नाम दे कर अपना पर्यावरण स्वच्छ कर सकते हैं। हम सब के लिए यह बात विचारणीय है कि सरकारी राशन दुकानों में हमें मुफ्त में चावल, सस्ते में गुड़, चना, शक्कर मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ कापी किताब, भोजन, साइकिल दिया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में बेहतर इलाज के साथ माताओं को विभिन्न सुविधाएं मिल रही है। एक फ़ोन करते ही 108 एम्बुलेंस या महतारी एक्सप्रेस जैसी सुविधाएं घर पहुंच रही हैं। प्रश्न यह उठता है कि हम बदले में समाज को क्या दे रहे हैं? हर राशन कार्ड में औसतन परिवार के 3-4 सदस्यों का नाम होता है। यदि हम पूरी ईमानदारी से इन सदस्यों के नाम पर ही अपने आंगन में, घर के सामने, बाड़ी या खेतों की मेड़ पर अपनी पसंद का पौधा रोपते हैं तो भविष्य में हमारी आय बढ़ेगी, पर्यावरण संवरेगा, वहीं जंगल से हमारी निर्भरता भी कम होती जाएगी। इस दिशा में बहुत सी समाजसेवी पर्यावरणीय संस्थाएं हमारी मदद करने तैयार हैं। जरूरत है तो बस अपने पर्यावरण को स्वच्छ और बेहतर रखने के लिए हमें सहज होने की। आइए बस्तर को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई यह अपनों की दुनिया। बस्तर में आ कर लो प्रकृति का दर्शन, यह देवों की दुनिया संस्कृति का दर्पण। जय हिंद।
1: हाँ तो मंगलू,
2: हाँ भाजी,
1: दखनाई वार्ता के तो हम जो गांव कारी दादा थी दिमन लगे हमरा लुने
2: हाँ।
1: और इतना तो मैं बोले वार्ता ने उल्ट को भी ज्ञान दिया गोट रही है।

0: हाँ तो मंगलू
1: हाँ मतलब
0: दखना ये गीत के तो हम ही सुना लो ने।
1: हाँ
0: और ये गीत के गाउन रो बुद्धराम कश्यप और ये मंचो संगवारी मन ने।
1: हाँ तो
0: तो मंगलू दख के दाय हम चो जातो समय बोले ऐसे ने
1: हाँ
0: आले
1: अल्ले
0: मोटरा गढ़ रावण के सकलू और
1: तो
0: भी दादारू ने
1: हाँ
0: बस्तर के सौर कार्यक्रम सुन तो सब आए गाँव कारी दादा दीदी सियान सजान और संगजोरिया संगवारी मन के मह बादू
1: मैं मंगलू
0: आमी दोनों करूँ से
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी।

0: Juhar na Padu Juhar.
1: Juhar Manglu Juhar.
0: Hamarlis na.
1: Hamarle na.
0: तो अले ये चीज संगे किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सब पाए खेतियार दादा दीदी और सियान सजन मन के मैं मंगलू
1: और मैं बादू
0: अमित दिनों करू से
1: जुहार। तो हो मंगलू
0: हाँ बादू
1: धकना आजकल तो पानी मारे से हाँ। बुनुक सार लिस का कसन है
0: हाँ मरान टिकरा मन के चले से पुनस बले हाँ। अब इबे धार बेड़ा मन के रोप तो बतर बोली सटार मन बन के
1: यो का हाँ। और आजकल पर द कौन कौन बट पानी तो अच्छा ही मारे हाँ। से हाँ। ने बियाने बोले आउंचो गांव तो बियाने मारे ना हाँ। हाँ। आई नागर ओगरा को निकुन तो नी ने होत बोलू सन मार ली
0: हाँ।
1: और द के समय आए मंगलो ने हाँ। और पानी मार लेते वे तो आउंचो किसान दादा दीदी उन के बोला चला गुआ ने और पानी कहाँ दान बुंदलो दान बोले अच्छा नहीं हो यार रोपा भी के तो खूबे पानी लागे से ने
0: ये सब मन बोले चले से नदी अटार पिटा भी तमन के का है से पानी साधन बल मिले से नहीं ने रोप सोत बोले कहीं कहीं बाटे रोप सोत कौन कौन बाटे बोले एबे बियासी पत्र बोले
1: होली से अंतर बियासी बोले ना जसन की आमी धान है मोरान ना बेड़ा ने लगाओ से रोप से ने उता तो लाटा बूटा हो से ही और लाटा बूटा की गुसान वाती किंडिक बुन बुन ले लें पेर किंडिक उन आम चो फसल मन बोले अच्छा उपजन है सतने और लाटा बूटा रहे उन धान जितलो बल कमाओ सब पाए के उन
0: लाटा तो हरी हो से
1: हरी हो से होता है
0: हम चो ये फसल के किंडिक मात्रा ने हमके मिरुक नहीं सके
1: मिरुक नहीं सके मतलब
0: जन खाद ही बोल दियो से ने गोबर खाद बोल दियो से डीएपी हो पोटास हो जन बोल दियो से उन मन मन के का है कि ये लाटा के ज्यादा मिरे से मान लो ने फसल के कम मिरे से
1: कम मिरे से
0: ये चीज मन के का है कि सबले पहले सकल तो राय ने
1: सकल तो राय जसन की
0: जसन नांगर नांगर लगावा बे जसन धूप घाम छेक तो बेरा होय हुन समय ने काय होय से जोतई उतई करन बाती काय में जा उनके सकलुन बाती संगत रे नाले पर ये समय पर जान सिस न भादु ये बे फिर कृषि केंद्र मन ने बल ने कई
1: किसम किसम किसम तो
0: दवाई मन बल इली से जसन मन के धरन बाती अन बाती काय करस
1: मरण
0: छिचुन बल दिले काय होय से लाटा मरण बल
1: मरण बल जाय से
0: एबे मन जन काय की हम च फसल बल काय नगत होय से
1: नगत होय से और जितले बोले एबे कोच राय मंडी आए

0: नयने मरण लिति तो उता बुनो जाले उन लाटा लाटी के बढ़िया पापड़ उन बाती पर उता बुनाई करता रहने
1: ते संगत रहे हो
0: ते बे आम चो दान आए नाल को सराय मंडी आए जोन बोले बुनो से उन अच्छा ओए दिन धकना मंगलो आम चो लगे असनी और बोल गोट मन नासत ने आले गोट मन के बोले हम राम
1: आले लम राम।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: खाद्यान्न संकट के गहराने की आशंका ने दुनिया भर के देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी का बोझ, निरंतर बदलते मौसम और खेती किसानी में बढ़ती लागत के बीच फायदे की खेती के विकल्प पर मिलेट की खेती अपनी जगह बना रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती कोई नई नहीं है। आजादी के एक दशक बाद तक देश की बड़ी आबादी मिलेट खाद्यान्न पर ही निर्भर थी, लेकिन हरित क्रांति की आंधी से गेहूं और चावल के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन मिलेट का रकबा धीरे धीरे कम होता चला गया। बीते एक दशक से एक बार फिर मिलेट ने खेतों को हरा भरा किया है।
5: हम पहले क्या है, देसी बाजरे की खेती करते थे, उसमें हमारे को 100 से 110 दिन का फसल में तैयार होने में टाइम लगता था। फिर हमने अभी 6-7 साल से हाइब्रिड बाजरे की खेती करना शुरू किया, उसमें क्या है हमारे को 75 से 80 दिन का समय लगता है और अच्छी उपज तैयार होती है और इसकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़िया मिलती है, इसलिए हमने इसका खेती का रकबा ज़्यादा बढ़ा दिया।
4: कम मेहनत और लंबे समय तक खराब न होने की खासियत श्री अन्न की फसलों के दायरे को अब और बढ़ा रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक बड़ी आबादी के खान पान की शैली में भी बदलाव आया है और मिलेट ने थाली में अपनी ज्यादा जगह बनाई है, जिसकी एक बड़ी वजह मिलेट की पोषक गुणवत्ता को भी माना जा रहा है। मिलेट की मांग बढ़ाने के लिए अब माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का फैसला किया है। पूरी दुनिया में मिलेट को भारत और अफ्रीका की फसल कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही जगहों में प्राचीन काल से ही मिलेट की खेती हो रही है। अकेले भारत में 10 तरह के श्री अन्न का उत्पादन होता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी यानी मंडुआ, रामदाना, कुट्टू, कंगनी, कोदो, सावा, कुटकी, चीना यानी प्रोसो आदि शामिल हैं। चावल, गेहूं और मक्के के बाद मिलेट में बाजरा और ज्वार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसलों में शामिल हैं। यही वजह है कि भारत मिलेट का एक प्रमुख उत्पादक है। खास बात यह है कि भारत की हिस्सेदारी एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% की है। फिलहाल भारत में मिलेट की औसत उपज 1268 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत उपज 1211 किलो प्रति हेक्टेयर से अधिक है।
6: मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोड़ो, जोंगोरा, बारी, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है।
4: हमारे देश में उगाई जाने वाली प्रमुख श्री अन्न फसलें और उनके उत्पादन की हिस्सेदारी प्रतिशत को देखें तो पर्ल मिलेट यानी बाजरे की हिस्सेदारी 61% है, ज्वार की हिस्सेदारी 27% और फिंगर मिलेट यानी रागी की हिस्सेदारी 10% है। भारत का राजस्थान प्रदेश मिलेट उत्पादन में सबसे आगे है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। बाजरा के उत्पादन में भी राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है, वहीं ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। देश के कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में

0: फिंगर मिलेट यानी रागी का उत्पादन होता है। स्मॉल मिलेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नंबर आता है। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किए जाने के बाद मिलेट्स को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है, ताकि मिलेट्स का न सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि वैश्विक खपत और निर्यात में भी बढ़ोतरी हो। मिलेट के उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है और रणनीति पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 500 से अधिक स्टार्टअप बाजार मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ने 250 स्टार्टअप्स को साथ लिया है। यही नहीं, 66 से अधिक स्टार्टअप्स को 6.2 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं, जबकि लगभग 25 स्टार्टअप्स को आगे फाइनेंस के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।
1: Initially incubated at IIMR had taken great technology from them, and then we started selling millet chickies initially in the schools and then in the kirana stores. So we right now sell about roughly 20 lakh millet chickies per day.
0: श्री अन्न के प्रति सरकार और लोगों के बीच ये जागरूकता एक लंबा सफर तय करने वाली है। जाहिर है, आने वाले वक्त में हरित क्रांति की तरह ही इस देश और दुनिया में मिलेट क्रांति का आगाज तय है।
2: हाँ तो मंगलू गोटमन के तो हमरा लुने आज हम जो किसान दादा दीदी उनका जे भेट वार्ता आनलु से ने ये भीतरी आसो डॉक्टर इतेश कुमार मिश्रा और ये मन संग गोट बाट करे तो करे सो गायत्री आचार्य आले ये भेट वार्ता की हम जो किसान दादा दीदी मन लगे हमरा
3: श्रोताओं, पशुपालन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुओं का स्वास्थ्य, उनका संतुलित आहार और समय पर उपचार पशुपालन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर हितेश मिश्रा। हम आपसे आज जानना चाहेंगे इसी विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद मैम।
3: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका परिचय और आप किस विभाग से संबद्ध हैं और इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहां से मिली।
4: मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर हितेश मिश्रा, मैं कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव में विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में सन 2020 से कार्यरत हूं। मेरा स्पेशलाइजेशन ही पशुओं का प्रबंधन पे हुआ है और मैं विगत 13 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहा हूं मैं। और मैं चूंकि यहीं बस्तर में जन्मा हुआ हूं, तो मुझे यहां की आवश्यकताओं, कमी और जो संभावनाओं के बारे में जी कुछ अच्छा ही मुझको मेरा एक व्यू रहता है। आप
3: जी, जैसा कि आपने बताया कि इस पशु पक्षियों को लेकर आपकी जो रुचि है, आपकी जो चिंता है, निश्चित ही विभागीय जो भी कार्य होते हैं उसमें आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानना चाहेंगे कि पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल में आपकी भूमिका किस तरह की होती है।
4: हम किसानों को तकनीकी रूप से मजबूत करते हैं, क्योंकि किसान भाई बड़ा मतलब कौतूहल भी रहता है पहला, और दूसरा आर्थिकी रूप से वो कमजोर रहते हैं। जो भी वो पशु पालते हैं वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा कमाने के लिए ही पालते हैं, तो किसानों को उनके रखरखाव के बारे में और खिलाने पिलाने के बारे में और रोगों के बारे में जानकारी का अभाव रहता है। तो हम उनसे जुड़कर उनको जो एक वैज्ञानिक पद्धति से पशुओं का प्रबंधन कैसे किया जाए उसकी जानकारी हम देते हैं उन्हें।
3: जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाते हैं और हमारे किसानों के लिए आपका जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा पशु या पक्षी है जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है।
4: मैं जैसे कि बस्तर रीजन में हमारे यहाँ के क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ, किसान भाई लोग जब भी कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, चाहे वह मुर्गी पालन हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे सुकर पालन हो, वो बाहर से उन्नत किस्म के पशु या पक्षी लाते हैं। चूंकि हमारे किसान भाइयों को तकनीकी जानकारी की अभाव रहती है, तो वो यहाँ के परिवेश में आकर बीमार पड़ जाते हैं, तो किसान भाइयों को आर्थिक क्षति बहुत होती है और वो हतोत्साहित होते हैं। जो हमारे भाई आगे बढ़

0: करने वाले थे और इस क्षेत्र में अपना मतलब एक व्यवसाय के रूप में इसको ग्रहण करने वाले थे, वो फिर पीछे हट जाते हैं।
1: जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि जो किसान होते हैं वो जब व्यवसाय शुरू करते हैं, तो कौन सा ऐसा व्यवसाय है जिन्हें हमारे किसानों को शुरू करना चाहिए जिसमें कम लागत में वो ज्यादा मुनाफा कमा सकें?
0: जी, मैं बताना चाहूंगा भी, जैसे कि बहुत ही कम लागत पे मैं किसानों के लिए सुझाव दूंगा कि जो बतख पालन है
1: जी,
0: वो हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये कम निवेश का एक व्यवसाय होता है और कम इसमें जो रिस्क लेने का रिस्क वाला कोई बात ही नहीं होता है।
1: जी, तो बतख जो है वो उसका व्यवहार कैसा होता है, वो किस तरह से बतख पालन में अपनी जो योगदान है यानी जो अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, इस बारे में हमें बताएं।
0: मैं पहले बतख के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो बतख होते हैं वो पक्षी समूह में रहना पसंद करते हैं।
1: जी,
0: एक जो भी रहेंगे ग्रुप में रहते, अकेले नहीं रहते, अकेले रहेंगे तो तनाव में आ जाएंगे, तो हमेशा अपने को 10-20 ही पालना चाहिए।
1: जी,
0: और इनके पालन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब पानी की आवश्यकता होती है, इसका मतलब ये नहीं कि किसान भाई को तालाब खोदना पड़ेगा, मतलब बतख को अपना जो सिर डुबा सके रोज उतना पानी आप बड़ा धमेला में मिट्टी में गाड़ दीजिए, टब वब से गाड़ सकते हैं, या झिल्ली को जैसे हम अजूला उगाते हैं झिल्ली में 3x5 फीट का ऐसा गड्ढा करके डाल सकते हैं जिससे बतख उसमें अपना रोज सिर डुबा सके, ऐसा करके भी पाला जा सकता है। और बतख में रोग, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है वो ज्यादा होती है। इनमें चराई करने की आदत होती है, फॉरेजिंग, मतलब ये चर कर अपना पेट भर सकते।
1: जैसा कि आपने बताया कि जो बतख है वो किसानों के लिए ज्यादा लाभप्रद है, वो कम लागत में इसे इनकी देखभाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें बताइए कि अगर कोई किसान इस तरह का व्यवसाय करना चाहे बतख पालन, तो सबसे पहले क्या करे, कहां से खरीदे और कितना खरीदे, किस तरह से उन्हें उनकी देखभाल करें, इस बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए।
0: किसान भाई समीप के कृषि विज्ञान केंद्रों में संपर्क कर सकते हैं, विभागों से भी पक्षियों का जो वितरण होता है उसमें भी कभी कभी बतख का वितरण होता है, और हमारे पास में ही भुवनेश्वर है, वहाँ इसका बहुत ही बड़ा रिसर्च स्टेशन है, तो जो

0: कोई भी किसान अपने घर के आंगन में इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो इसके लिए एक विशेष तैयारी किसान को करनी पड़ेगी।
0: जी, किस तरह की?
1: जैसे कि जो भी हम उनके आवास का जो जगह चुने वो ऊंची जगह पे हो
0: जी,
1: और उसको पूरा ऐसा बनाया जाए चारों तरफ से उसकी दीवार, दीवार में हम चैनलिंग फेंसिंग लगा दे 2 फीट का दीवार नीचे से उठाकर, ताकि जो हवा का वहां जो वेंटिलेशन है, आवागमन है हवा का, वो साफ सुथरा रहे और बाहर के जीव जंतु वहां पर आक्रमण न कर सके। ये रात्रिकालीन इनके लिए रहेगा। और साथ ही वहां पर जो हम पुआल बिछाए सूखी, जस्ट जो किसान के पास अवेलेबल है, धान का पुआल है तो धान बिछा दे, पैरा बिछा दे, जहां पर मूंगफली होती है तो मूंगफली का

0: व्हाइट पैकिंग नस्ल की जो बतख है, ये जैसे हम बॉयलर पालते हैं तो ऐसे ही यह बतख की नस्लें बहुत तेजी से, मतलब 8 सप्ताह में 2 से 2.5 किलो की हो जाती है। तो जो भी किसान भाई का मकसद है कि मुझे मांस के रूप में बतख को बेचना है, तो वो निश्चित रूप से व्हाइट पैकिंग बतख को पाले। और यदि किसान भाई चाहता है कि मुझे बतख का मांस और अंडा दोनों चाहिए, तो उसमें खाकी कैम्बेल बतख रहती है, तो इसे का पालन किया जा सकता है। तो एक जो खाकी कैम्बेल जो बतख है, ये 240 से 300 अंडे प्रतिवर्ष देती है, और अंडे देने के बाद हम इनको मांस के रूप में भी बेच सकते हैं। तो यदि फायदे के रूप में देखा जाए लॉन्ग टर्म में, तो खाकी कैम्बेल की जो नस्ल है ये ज्यादा फायदेमंद देगी। लेकिन किसान भाई यदि कोई सोचता है मुझे फटाफट बिजनेस करना है, पैसा आए हर 2 महीने में मेरे जेब में पैसा आए, तो उसको हमको व्हाइट पैकिंग में जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ में इंडियन रनर है, इंडियन रनर ये भी थोड़ा अच्छा रहता है हमारे परिस्थिति, बस्तर की परिस्थिति में।
1: क्या ये नस्लें बस्तर में जी उपलब्ध हैं?
0: उपलब्ध बस्तर में एक कृषि विज्ञान केंद्र में हमारा इसका उत्पादन हो रहा है, और बाकी अपने को बाहर से यहाँ आंध्र प्रदेश से बेचने में स्थानीय रूप में आते हैं निरंतर, और प्राइवेट रूप में भी यहाँ पर चूंकि रेल मार्ग के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ देसी नस्ल जो भारत में पाई जाती है, उसमें पति असम में है, और नागेश्वरी है, और चेम्बोली है, मैथिली है, मिथई है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये भारत के स्थानीय नस्ल के बतख है जो 60 से लेके 150 अंडे तक प्रतिवर्ष देते हैं।
1: जी, तो बात हम बतख की कर रहे हैं, तो हमारे किसानों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इनका आहार क्या होना चाहिए।
0: देखिए, मैं दो तरह की इसमें बात मैं बताऊंगा। एक तो किसान भाई जो 10-20 बतख पालना चाह रहे हैं, उनको तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसान भाई के पास छोटा तालाब भी है, तो बतख में आपको 1 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना आहार स्वयं, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले ही कि बतख चराई करती है, तो वो कीड़े मकोड़े घास स्वयं वो अपना भोजन घोंगे ऐसा वो स्वयं ढूंढ के खा लेती है, जिसमें किसान भाई को
1: एक्स्ट्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसानों को।
0: जी, चूंकि आप छोटे पैमाने पे भी पालते हैं, तो किसान को बिल्कुल खर्च करने की अपनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम यदि कमर्शियल फार्मिंग में जाते हैं कि जैसे आपको 100, 200, 300 बतख पालने हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ हरे चारे का, मक्का का, खली मतलब जो भी अपना तेल हम स्थानीय रूप से करते हैं, चाहे सरसों का हो, चाहे मूंगफली का हो, चाहे सूरजमुखी का हो, हमें खली का प्रबंधन करना चाहिए। और साथ ही जो हम राइस ब्रांड, जिसको हम चावल का पॉलिश बोलते हैं, चावल का पॉलिश, ये भी सब मिला के खिलाया जा सकता है। इसमें 3% मिनरल मिक्सचर मिला के यदि हम देते हैं, तो इनकी बढ़वार बहुत ही अच्छी होगी।
1: जी, तो उनके आहार की उपलब्धता कहाँ पर होगी?
0: ये तो स्थानीय, जो जितने मैंने बातें करी ये सब हमारे बस्तर क्षेत्र में स्थानीय रूप से सहज उपलब्धता है।
1: जी हितेश जी, अब हम जानना चाहेंगे कि अभी बरसात का मौसम है, और वर्तमान समय में पशु पक्षियों में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनसे बचाव करना चाहिए उनका पहले से ही?
0: ये जनरल आप पूछे, मतलब एक सामान्य जानकारी की बतख के लिए,
1: पशु
0: भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो बरसात का सीजन आ गया है, बड़ा ही हमारे किसान भाइयों को सचेत रहने की आवश्यकता है। जैसे कि हम बात करें गौवंश की बात करें, तो अभी जो मुंहपका खुरपका, जिसको हम FMD बोलते हैं, ये तो बड़े विकराल रूप धारण कर लेता है, और HS
1: ये बीमारी है।
0: जी बीमारी है ये जो पैर के बीच में बड़ा घाव होता है और मुंह में छाले आ जाते हैं, तो पशु चलने में असमर्थ रहता है और मुंह से लगातार लार बहता है, खाता नहीं है, तो पशु पूरा टूट जाता है, दूध वाली गाय का दूध पूरा खत्म हो जाता है, और जानवरों की मृत्यु भी इसमें संभव है। तो इसके लिए,
1: इस बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय?
0: बचने के लिए अभी इसका टीकाकरण 15 जून के आसपास में, 1 जून से 15 जून चला था। यदि किसान भाई कोई पिछड़ भी गया है, तो उसका तत्काल वो टीकाकरण करा ले। साथ में गलघोटू बीमारी है, जो हमारे क्षेत्र में प्रायः देखी जाती है, चाहे वो देसी जानवर हो चाहे विदेशी जानवर हो, तो गलघोटू के जो बीमारी है, अचानक उसके गले में सूजन आ जाती है, और जानवर साए साए साए आवाज करता है बहुत।

आवाज करता है, शाम को चालू होगा सुबह तक मृत्यु हो जाती है। तो ये सब बीमारी का इलाज यदि चाहिए तो किसान भाइयों को वैक्सीनेशन टीकाकरण के लिए बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा। ये तो बात हुई गायवंश की बात हुई। यदि बकरियों की बात करूं तो जो पीपीआर का टीका होता है, प्लेग का टीका होता है, वो लगाना चाहिए कि मुंह भर में पूरे छाले आ जाते हैं। हमारे किसान भाइयों अक्सर मतलब इन परिस्थितियों से गुजरते हैं और फैलने वाली चूंकि बीमारी है तो पूरे उनके जो समूह है, समूह में ये बीमारी फैल जाती है। तो किसानों को बहुत आर्थिक हानि की, एक एक बकरी 20 से 25 हजार रूपये की होती है। तो किसानों का एटीएम है, हम तो जानते हैं भाई, बस्तर क्षेत्र में हम रहते हैं, हमारे बस्तर भाइयों के लिए बकरियां एटीएम है, तो इसमें बहुत लॉस होता है। अब मैं यदि बात करूं मुर्गियों की, मुर्गी चूंकि हम बस्तरिया जो है तो हमारे यहाँ 2 से 5 मुर्गी लगभग लगभग हर घर में रहती है, लेकिन टीकाकरण हम नहीं कराते। होता क्या है कि जब वो वयस्क होती है, वयस्क होते होते यदि हम सोचे कि उसको बेचना है और आप देखते हैं कि वो अचानक

0: के लिए उसे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए?
1: सबसे देखिए, बीमार है तो अस्पताल ही एक उपाय है, निकटतम अस्पताल जाना चाहिए। और साथ ही मैं यदि बोलूं कि अस्पताल यदि रात को बीमार हो रहा है कुछ है, तो अपने जो भी पशु चिकित्सक का किसान भाइयों को जरूर अपने घर की दीवार पे नंबर लिख के रखना चाहिए, ताकि घर में हमारे पीछे माता बहने उसमें कॉल करके उसका चिकित्सा और त्वरित उपाय जो घर पे हम कर सके, चाहे वो इथनो मेडिसिन मतलब जो हम लोकल जो वनस्पतियों के माध्यम से हम जो हमारे बाप दादाओं का जो ज्ञान है उसका उपयोग करते हुए हम इलाज कर ले, तो वो काफी अच्छा है कि पशु चिकित्सक के आने के पहले जानवर को कुछ राहत मिल जाए।
0: जी, अभी हमने इससे पहले बात की बतख की, तो ये जो बतख हैं किसानों के लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही कम लागत में ये इसको पाल सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो इनका जो प्रजनन है, इस बारे में किसान कैसे करे, क्या करें, आप थोड़ी सी विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे किसानों को दीजिए।
1: मैं सबसे पहले तो जब प्रजनन की बात है तो मैं सबसे पहले किसान को बताना चाहूंगा कि नर और मादा की पहचान कैसे करें। तो जो नर होता है, नर के जो पूंछ है वो पीछे मुड़ी हुई होती है, और जब वो वयस्कता की ओर आगे जाता है तो उसके गले में जो गहरे रंग की पट्टी उभर आती है, तब तो आसानी से पहचान आ जाता है। लेकिन 3 महीने के आसपास में मुड़े हुए पूंछ से वो नर को पहचान सकते हैं। तो किसी भी अपने घर पे नर और मादा, लगभग 6 मादा के पीछे एक नर का होना आवश्यक है। और लगभग जो बतख है वो 18 सप्ताह के बाद से अंडे देना प्रारंभ कर देती है, जो मादा 28 दिन में बच्चों को अंडे से बाहर निकालती है। और इनका जो अंडा उत्पादन है, जैसे 18 मैंने कहा कि 18 सप्ताह से प्रारंभ होता है और पूरा वो लगातार होते हुए जो अच्छे अंडे देने में 250 से 300 अंडे लगातार देती है। यदि किसान भाई अंडे से बच्चा निकालना चाहते हैं मशीनों के माध्यम से, तो ठंडे के दिनों में लगभग 7 दिन और गर्मी में 3 दिन के अंदर उनका उपयोग मशीन में रखने के लिए कर ले, तब उनको बहुत अच्छे से चूजे बाहर आए।
0: जी, और प्रजनन के बाद जो नवजात बच्चे होते हैं उनके, तो उनकी देखभाल कैसे करें वो?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सफलता का जो मुख्य जो सार है वो यही है कि यदि हमारे बच्चे आ रहे हैं तो वो जिंदा कैसे बचे। मैं इसमें 2 तरीके की बात बताऊंगा कि जैसे किसान भाई अपने घर पे ही उनका बच्चा हुआ और वो अलग से जब ज्यादा पैमाने पे बच्चे आए हैं तो उनको ब्रूडिंग करना पड़ता है। ब्रूडिंग मतलब उनको एक घेरा बना के बिछावन डाल के ऊपर लाइट लगा के उनको गर्मी देनी है और उनका ब्रूडिंग किया जाता है। ये 2 सप्ताह के लिए हमें करना पड़ता है। 2 सप्ताह तक ऐसे करने के पश्चात में उनको फिर अलग बाहर छोड़ा जाता है, लेकिन डायरेक्ट पानी में लगभग 1 से 1.5 माह के बाद ही उनको छोड़ना है हमें, क्योंकि इनके जो शरीर पे ऑयल ग्रंथि सक्रिय नहीं होती है, मतलब ये भीगेंगे बच्चे को। एक चीज ध्यान रखेंगे किसान भाई कि ये भीगेंगे तो ये मर जाएंगे। तो जो भी पीने का पानी दे रहे हैं तो उसमें गोटी पत्थर डाल के उसके पानी में डाल दे, ताकि इनको चोच डालने का ही जगह इनको बचे, अन्यथा ये इनकी आदत रहती है पानी क्यों खेलने लग जाते हैं, भीगते हैं और मर जाएंगे। तो किसी ये सूखे रहने चाहिए किसी भी स्थिति में। और अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप तो बोल रहे हैं भीगेंगे तो मरेंगे, तो जंगल में ये कैसे जिंदा रहते हैं? ये तो मैं बताना चाहूंगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं अंडे से बाहर आती है तो माँ जो अपने शरीर का जो उसका तेल रहता है वो बच्चे के ऊपर में डालती है, तब उसका बच्चा 1-2 दिन का भी रहने वो तैर पाता है। अन्यथा जैसे कि ये जो हम कमर्शियली उत्पादन करते हैं,
0: नवजात बच्चे की देखभाल माँ ही खुद कर लेती है।
1: माँ खुद कर लेती है, ये कुदरत का वो है, वो संभाल लेती है, उसको क्या चीज चाहिए। लेकिन जब हम कमर्शियली उत्पादन कर रहे हैं तो हमको बिल्कुल ही इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि बच्चा भीगे मत।
0: तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बच्चों को भीगने से बचाएं और हमारे किसानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप पशुपालन से जुड़े हैं हितेश जी, और किसानों के हित में आप लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि पशुपालन से जो भी कार्य है, तो तो इसमें किसान अपनी आय

0: कैसे बढ़ाएं?
1: मैं बस्तर की परिस्थितियों को देखकर किसान को बोलना चाहूंगा कि जो हमारा खान पान है के जानवरों के लिए वो बहुत ही निम्न स्तर का है। तो यदि हमको पैसा कमाना है तो किसानों को इनका आहार प्रबंधन करना पड़ेगा। खासकर यदि हम चारा उत्पादन की मैं बात करता हूँ तो जो वर्षा आधारित जंगल है, खेत खलिहान है, यहाँ के जो घास जब तक होते हैं तब तक जानवर खाते हैं, उसके बाद जानवरों को हरा चारा नहीं मिलता। ये जो हमारे लिए मुख्य जो पिछड़ने का कारण है, इसलिए जो भी उत्पादन क्षमता हो, दूध उत्पादन क्षमता हो, चाहे मांस उत्पादन क्षमता हो, इसमें हम पिछड़ जाते हैं। और मैंने बताया आपको टीकाकरण और तीसरा कृमि का दवाई, यदि किसान इस तीन बातों को एक गांठ बांध के रख ले तो हम भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे,
0: आगे बढ़ेंगे। जी
1: हाँ,
0: जी,
1: किसानों की स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी।
0: जी, तो यानी पशुओं को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस तरह हम अपना ध्यान रखते हैं।
1: मैं आपको बता दूं, जो हरियाणा पंजाब में किसान के पास कितनी भी जमीन हो, एक एकड़ जमीन के आसपास पशुओं के चारा के लिए रख ही देते हैं, छोड़ देते हैं, उसका और भी कोई उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमको विकसित बनना है, विकसित बनना है तो हमको भी अपनी सोच ऐसी रखनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल। और गर्मी के मौसम के बाद जब बारिश होती है तो ऐसे में पशुओं के लिए जो शेड की व्यवस्था होती है, इस तरह से पहले से किसान इस पर ध्यान दें?
1: किसान भाइयों को जैसे जैसे अब मानसून का आगमन बस्तर में हो रहा है, सबसे पहले भाई जो पशुशाला की जो छत को ठीक कर ले। किसी भी स्थिति में पशुशाला में नमी नहीं होनी चाहिए, और नमी बन रही है तो जो पेशाब है और उनका गोबर है, उनकी निकासी का उचित मार्ग होना चाहिए। क्योंकि जो पेशाब है, पेशाब से अमोनिया बनता है। अमोनिया मतलब आपको वहां जाने में, सांस लेने में बड़ी तकलीफ होगी, और उससे जो भी जानवर है वो लगातार सांस के माध्यम से यदि वो लेंगे, वो गंदा हवा अपने सांस में लेते हैं, तो वो बीमार होंगे, उनकी बढ़वार नहीं होगी, दुबले पतले रहेंगे, तनाव में रहेंगे। तो हवा आने जाने का रास्ता जो होना चाहिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसके लिए तो मैं सबसे पहले बोलूंगा, जो बड़े जानवर है जैसे बकरी हो गई और गाय हो गई, इनका जो पशुशाला होता है वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में बना होना चाहिए। और जो मुर्गियां हैं, जितने भी प्रकार की मुर्गियां हैं, यदि हम उनका घर बना रहे हैं तो उनका पूर्व पश्चिम की दिशा में उनका घर बनना चाहिए। तो ये सब समस्याओं का समाधान यदि हम अच्छे वेंटिलेशन रखते हैं तो स्वतः ही हो जाएगा।
0: स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान देना
1: होगा बरसात में, बिल्कुल। हाँ, इसमें फिर मुर्गियों में ई कोलाई का इन्फेक्शन जो आ जाता है, दस्त चालू हो जाता है, तो इन बातों का हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है।
0: बरसात में कुछ ज्यादा ही किसान अपने पशुओं को ध्यान दें, है ना? ऐसा हम आपके द्वारा जो जानकारी मिल रही है उससे बता रहे हैं। हितेश जी, जैसा कि पशुओं और पशुओं से जो मनुष्यों में जो बीमारियां फैलती हैं वो कौन सी होती हैं, और इसके बचाव के क्या उपाय हैं, किस तरह से की सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, इसमें तो मैं एक रोग का बहुत ही प्रमुखता से बताऊंगा, जो रेबीज है। रेबीज चूंकि डॉग से फैलता है, अब डॉग से फैलता है तो उससे हमको क्या, हम डॉग का पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो कुत्ते हैं, कुत्ते हमारे गाय को काट देते हैं, बकरी को काट देते हैं, मुर्गियों को काट देते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि गायें, क्योंकि लक्षण आने में तीसरे दिन में लक्षण दिखता है, तब तक कई लोग हम उस गाय का दूध पी रहे हैं, हम उस गाय को छू रहे हैं, उसको चारा दे, पता ही नहीं चलता है। तो बहुत ही खतरनाक बात है। तो बराबर हम अपने गायों का सतर्कता से उनको देखें, और अब तो कोई भी जानवर को हमको गांव में खुले रूप से नहीं छोड़ना चाहिए। जो जितने भी संक्रामक बीमारी है, यदि एक घर में होता है तो वो पूरे गांव में फैल जाएगा। अक्सर हम देख रहे हैं बस्तर के क्षेत्र में, किसान भाई जानते हैं इस चीज को, कि जो सुअर है वो अचानक अचानक मरने लग जाते हैं, ये भी एक वायरल बीमारी है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो चाहे सुअर हो चाहे कोई भी जानवर हो, उसको चैन लिंक फेंसिंग बना के अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी बड़ा बाड़ा हो उस बाड़े में उन्हें बंद करके रखे और वहीं खाना पीना दे।
0: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह की कोई अगर घटना घटती है तो किसानों को बाद में पता चलता है, और तब तक देर हो चुकी होती है।

0: कि आप लोग जैसे भी पशुपालन में जो भी व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, तो कम से कम 1 से 2 साल आप स्थानीय पशु के माध्यम से व्यवसाय करिए, और उसमें निपुणता हासिल करने के बाद अच्छे से आप जान जाइए कैसी बीमारी, क्या खिलाना, आवास व्यवस्था। आप जब स्वयं करेंगे तो आपको अपनी कमी का एहसास हो जाएगा, उसके बाद ही उन्नत नस्ल में आप जाइए। क्योंकि आज के किसान यूट्यूब से डायरेक्ट देखते हैं कि 1 साल में करोड़पति कैसे बने। किसान भाई, 1 साल में करोड़पति नहीं बना जाता है। आप लगातार प्रयास करिए, अच्छा करिए, आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा उज्जवल रहेगा। करोड़पति क्या, भगवान की दया से बहुत भी हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन निपुणता हासिल करने के बाद।
1: बिल्कुल हितेश जी, आज के इस चर्चा में आपने हमारे किसानों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। पशुओं का स्वास्थ्य, संतुलित आहार, स्वच्छता, समय पर टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही आपने ये भी समझाया कि पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को किस तरह अपनाना चाहिए और पशु चिकित्सकों की सलाह कितना आवश्यक है। बहुत ही सरल और उपयोगी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, और हम निश्चित ही हमारे जो श्रोता हैं, जो पशुपालक हैं, जो आम श्रोता हैं, उनके लिए ये जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हाँ भादु, ये काय सुंदर भेटवार्ता रही ने, आले और आम चले गए और गोटो गोटा से आले गोट के बोले सुनो।
3: आले
4: किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी, ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी।
5: सिंचाई में भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लगातार, उसमें सुधार हो रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया, ड्रीप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया।
4: सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30-70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9-60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10-69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि PDMC से पूर्व 8 वर्षों में कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद के

0: साल 2017-18 के केंद्रीय बजट में नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है।
1: हाँ तो मंगलू धक्के दयामचो जाता समय वैसे ने हाले विदाधर हुए ने किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सब पाए कि केतियार दादा दीदी वन के मैं बादू
2: मैं मंगलू
1: हमें दोनों करूँ से
2: जुहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बज चुके हैं। लोक गीतों के कार्यक्रम डांडामाली में लीजिए सुनिए मुरई और साथियों के गाए धुरवी लोकगीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: लोक गीतों के कार्यक्रम डांडा माली में आप सुन रहे हैं मुरई और साथियों के गाए धुरवी लोक गीत।

0: लोक गीतों के कार्यक्रम डांडा माली में अभी आप सुन रहे थे मुरई और साथियों के गाए ध्रुवी लोक गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम पीला मन का जी गोट। प्रस्तुति है गोपाल पोयाम की।

पिला मन चो गोठ कार्यक्रम सुनतो सप्पाय नानी बड़े पिला मन के मोचो वाटले खुबे खुबे माया। पिला मन जीवनाने आगे बढ़तो काजे तुमके असल लोग नाले महापुरुष मंचो जीवना के जानुक पड़े दे जोन आप लो जीवना के आगे बढ़ाऊन सफल होन रला। मानतर सफाए लोग जोन आप लो जीवना ने सफल होला सबू के खुब्बे संघर्ष लड़ाई त्याग करुक पड़ुन रहे। और ए भी बले कोनी बले क्षेत्र ने सफल हो तो काजे मेहनत मसागत बलों ने संघर्ष करुक पड़े से। असनिची रला सावित्री बाई फुले ये आप लो देश चो पहल शिक्षिका रला हुन मंचो ले पहल कोनी बले मेहरार बहन जी बनुन नी रला। कसन की हुन समयाचो समाज ने बायले मन के पड़तो अधिकार नी रली घर ले बाहर निकर तोर बले मना रली। मनुक मंची घर ले बाहर चो जुगे काम के करते रला। सावित्री बाई चो जन्म महाराष्ट्र चो सतारा जिला चो गोटो गाँव नवा गाँव ने होन रली। सन रहे 3 जनवरी 1831। हुन दलित परिवार ने जन्मन रला। हुदलदाएं भारत ने अंग्रेज मंच शासन रली और समाज ने बाहले मन संगे खूब्बे भेदभाव होते रहे। घर ले निकरुक बले नी देते रहो तो पढ़ुक लिखु कसन देता। मानतर यही मंजी सावित्री बाई पढ़ुन देश चो पहल शिक्षिका बन ली। सावित्री बाई चो बिया 9 साल चो उम्र ने ज्योतिबा राव फुले संगे होली। ज्योतिबा राव चो उम्र हुदलदाएं 13 साल रहे। बिया हो तो बेरा सावित्री बाई भले अनपढ़ रही। मानतर सावित्री बाई चो पढ़तो मन के दखुन ज्योतिबा फुले खुब्बे हरी होला और आप लो बायले के पढ़ा तो विचार करला। बिया बेरा ज्योतिबा फुले हुन मन भले 3री पढ़ते रहोत। मानतर खुबे सामाजिक कमजोरी के पार पाउन दोनों पढ़ाई करला। सावित्री बाई अहमदनगर और पुणे ने टीचर टेरलिंग करुन शिक्षिका बनला। पाछे दोनों पति पत्नी मिलुन पुणे ने सन 1848 के लेकी मंचो पहल स्कूल खोलला। ये भारत चो पहल स्कूल तो रली जौन थाने लेकी मन के पढ़ाई मूर होली। दोनों मिलुन देश ने 18 स्कूल खोलला। सावित्री बाई ये स्कूल चो प्रधान अध्यापिका बनली और स्कूल ने सबू जाति चो लेकी मन पढ़तो काजे बोलला। एके दखुन दलित कमजोर वर्ग चो लोग मन पहिल हार स्कूल ने आपलो बेटी मन के पढ़ाओ मुरियाला। लेकी मन के पढ़ाए से बोलून पुणे शहर चो बायले मन खूब्बे विरोध करुक मुरियाला। नुकसान अमरा तो काम के करुक मुरियाला। जेवे सावित्री बाई स्कूल पैदल जाए तो बाटे बायले मन पखनाने मारत और गोबर उपरे पखाओत बोलत ये लेकी मन के पढ़ाए से धर्म के नशाए से। सावित्री बाई 2 जोड़ी कपड़ा स्कूल नेते रहत और गोबर होलो कपड़ा के निकराउन नंगत कपड़ा पाछे फिनते रहत। लेकी मन स्कूल एवत और स्कूल के नी छाड़त असन विचार करुन हुन मन छात्रवृत्ति बले देउक मुरियाला। पाछे सावित्री बाई बोलने विधवा बायले मन काजे आश्रम बले मूर करला। संगे संगे बेसहारा बायले लेकी बाल विधवा और परिवार ले कई कारण ने खेदलो मेहरार लेकी मन के बले आश्रम ने संगाओक मुरियाला। ये मन के सावित्री बाई खुदे पढ़ोक बले मुरियाला। आपलो मनुख ज्योतिबा फुले संगे मिसुन सत्य शोधक समाज संगठन एमन बनाला जोन बिना पुजारी और दहेज ले बिया बले करुन देते रला। समाज ने नवा बाट दखाओक मुरियाला। सावित्री बाई आपलो समाज संगचो संघर्ष और सच्चाई के पूरे आंतो काजे कविता लेख बले लिखते रहोत। हुन मंचो 4 कविता संग्रह बले आसे। सावित्री बाई लोग मंचो सेवा ने केवई पाटकुती नी रला। गोटक समय पुणे ने प्लेग बीमारी फैल ली। प्लेग मरीज मन के यमन दिन रात सेवा जतन करते रला और यही सेवा जतन करते करते सावित्री बाई के बले प्लेग बीमारी होली। एचो ने सन 1897 ने ये मंचो मृत्यु होली। तो असन रहोत सावित्री बाई फुले जोन समाज का जे आपलो तन मन धन ले काम करला और बायले लेकी मन के पूरे एतो बाट के दखाला। आखिर ने जानू सावित्री बाई फुले चो विचार मन के जोन जीवना चो नुआ बाट के दखाए से। हुन मन बोलला शिक्षा स्वर्ग चो बाट आए। शिक्षा ले खुद के और खुद चो ताकत के जानू खोए से। हुन मन सांगला कि आपलो स्वाभिमान के जगह तो काजे जुगे ले जुगे पढ़ाई करा और पाठशाला चो मोल के जाना
जौन की सोना चांदी से बराबर है। अज्ञानता के जाना धरा और पेटून लड़ून आपलो जीवनाले खेदा। बेटी के बिया कर तो पहल नंगत पढ़ावा जेचो ने खुद जानुक सके दे काय सही है और काय गलत। बायले लेकी चुचाए घर चो काम काजे नहीं बनला से हुन मन मनुक पिलाले बले नंगत काम करुक सकोत। और उन मन से विचार रहे जितलो तुम्ही ज्ञान के पहा से उत्तरो मन ले डर मेटे दे। तो पिला मन ये तो रली सावित्रीबाई फुले चो जीवना चो गोठ मांतर एबे मैं तुमचे पूरे आनंद से गोटोक कायरसिया गीत।

ये तो रही तुमचे काजे गोटे गीत मानतर एबर मच जातबे राहुली आले मके विदा दी आसबे तो जातपुरे पिला मंच गोठ कार्यक्रम सुनतो सप्पाय नानी बड़े पिला मन के मोचो बाटले खुबे खुबे माया।

0: पीला मन कांचीकूट। इसमें सावित्री बाई फूले पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे गोपाल पोयाम। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या। अब हम आकाश।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज

0: लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही

0: वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग

0: ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defence and health that will make the partnership futuristic and limitless.
3: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important.

0: Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। ग्राम पंचायत के विकास गाथा कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए ये वार्ता। वार्ताकार हैं बलबीर सिंह कच्छ।

एचोका जे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 अधिसूचना जनवरी 1999 चो धारा 49 खंड 24 पठित धारा 97 उपधारा 1 ने आम के ताकत मिरली से ये अधिनियम चो धारा ने मिरलो ताकत हिसाब ने आमी आमचो ग्राम पंचायत हलका ने बायले मंचु मनुक मंचु पीला मंचु धेपाएं आरु अकलबूतचु बढ़ती काजे खेल भाटा क्लब व्यायामशाला पार्क पुस्तकालय वाट करुक सकूं। पंचायत ने रलो सरकारी भूई के आमी खेल भाटा व्यायामशाला पार्क पुस्तकालय असन वाट काजे काम ने आनुक सकूं। समिया ने काम ने अंत वाट आसे जाले उन भूई के दूसर काम ले बचाव सकूं। असन काम मन काजे कोनी पट्टा बीती भूई के देतो काजे तियार आसे जाले नहाले पलटा ने देतो काजे तियार आसे जाले उनके दान हिसाब ने लिखा पड़ी करुन धरुक सकूं। आमे ग्राम पंचायत ने पुस्तकालय नहाले वाचनालय बले बनाउक सकूं। मानतर असन उवाट करले एके खोलतो आरो बंद करतो समिया तय करुक लागे दे। वाचनालय ग्राम पंचायत ने खोले हुंता ने पढ़तो लोग के हुका ने पढ़तो काजे ओलुक देउक लागे दे। पुस्तकालय ग्राम पंचायत ने खोलो ने हुंता ने पढ़तो लोग के रोजी फीस नहाले महीना फीस धरतो नियम ग्राम पंचायत बनाउ सके। कोनी जूगे पैसा देउन पुस्तकालय चो जीवना भर काजे बले सदस्य बनतो उवाट आसे। असन सदस्य बनलो लोग एक हार ने गोटक किताब के 15 दिन काजे नेउक सके दे। 15 दिन ने उन किताब के बोहड़ा ले फिर दूसर किताब के नेउक सके दे। कोनी पुस्तकालय ले किताब नेउन 15 दिन ने नी बोहड़ा ले उनके ग्राम पंचायत अलग ले जुर्माना पैसा धरुक सके। आरु एक महीना ने बले नी बोहड़ा ले उनके किताब के

मांगुक सके। कोनी मनु पुस्तकालय ले किताब के नेउन हुनके चिरुन आनुन दे दे नहाले हजाय दे हुनके ग्राम पंचायत किताब चो मोल आरो उपरहा जुर्माना बले धरुक सके। कोनी पुस्तकालय चो सदस्य पुस्तकालय चो नियम के नी माने नहाले पुस्तकालय ने कचय संगे झगड़ा करे दे असन लोग के पुस्तकालय प्रभारी नहाले ग्राम पंचायत पुस्तकालय ने एतो काजे मना करुक सके।

पंचायत ने पुस्तकालय खोल तो होले ग्राम पंचायत 5-7 लोग चो कमेटी बनाए दे, ये सदस्य भीतरे कम से कम 2 झान पंच होतो रहे। पंचायत ने पुस्तकालय खोले बरक ने थरक सरपंच अध्यक्षता ने पुस्तकालय सम्मेलन बले बना तो हक ग्राम पंचायत के मेरली से, अरु ए सम्मेलन ने सचिव बरक कार चो हिसाब किताब के सांगे दे। ग्राम पंचायत चो पुस्तकालय समिति पुस्तकालय के नंगत चला तो काजे विभाग मन ले योजना मंच जानकारी पत्रिका और दूसर सहयोग काजे गुहार कर सके। असने ग्राम पंचायत आपलो हल्का ने पार्क बना ले उनके चला तो काजे बले नियम कानून बना सके। पार्क के खोल तो बंद कर तो समय बले ग्राम पंचायत तय कर सके। पार्क भीतरे सिकरा ने बांधुन कुकुर नहाले दूसर पशु के कोनी दंडिक आनुक सक दे, मंतर खुला रलो पशु के नी आन तो काजे पंचायत नियम बनाओ सके। पार्क ने यार जहार लो कोनी बले फूल पान के नी टूटा दे, पार्क के नुकसान नी कर दे, पार्क ने कचरा नी कर दे, पार्क ने बाखना गोट नी कर दे, असन नियम बना तो हक बले ग्राम पंचायत के ये नियम भीतरे मिरली से।

ग्राम पंचायत के सहमति निधरुन कोने वाले लोग पार्क भीतरे भीड़ के नहीं आन दे। पार्क भीतर चो झाड़ा खोली आरु नहाने खोली नेचे लोग झाड़ा बस दे नहाले नहा दे। दूसर ठान ने कोनी असन कर ले उनके जुर्माना धरतो आरु दूसर हार ले एतो काजे मना करतो हक वाले ग्राम पंचायत लगे रहे दे। खेल भाटा व्यायामशाला पुस्तकालय के काम ने आंतो नानी पीला मन के ग्राम पंचायत फोका ने सुविधा दे सके। मंतर ए मंचो दखारा का काजे पंचायत बड़े लोग के पैसा धरे दे। असन करुण ग्राम पंचायत आपलो हल्का ने खेल भाटा व्यायामशाला पार्क पुस्तकालय वाचनालय बनाउन आपलो पंचायत ने बाढ़ती करुक सके। लोग जो जीवना के उजर करुक सके।

असने चे आपलो पंचायत चो लोक चो नगद जीवना काजे ग्राम पंचायत के साफ सफाई संगातो हक बले पंचायती राज अधिनियम ने मेरले से पंचायत हल्का चो कोनी सरकारी भूई ने गांव के नुकसान करतो असन काई लाटा बुटा बाल्डी से हुनके छुक छुका कर रुक सके नहाले कचय पट्टा बीती भूई ने असन लाटा बुटा बाल्डी से जाले उनके भूई मालिक के छुक छुका कर तो काजे बल उक सके कोनी भूई मालिक चो भूई ने गांव चो लोग के नुकसान हो तो असन लाटा बुटा बाल्डी से उनके पंचायत गुचा तो काजे छुक छुका कर तो काजे बल लो पाछे बले हुन छुक छुका नहीं कर ले उनके ग्राम पंचायत छुक छुका कर उक सके आरु हुन थानो होलो खर्चा के भूई मालिक ले वसूल कर उक सके असन उवाट करून ग्राम पंचायत आपलो हल्का के छुक छुका सुंदर संगा तो काजे बले काम करू सके। संविधान चो 73वां संशोधन पाछे पंचायत के ग्राम सभा के इतरो हक मिलली से जेचो हिसाब लगा ले गोटोक गोटोक के सांगले मैना दिन ने बले नी सरे मंतर आमी ए जमाए हक के नी जान तो लागुन

ग्राम सभा पंचायत बैठक ने नी जातो लागुन आम के नफा देतो कितरो हक के एवे बले नी जानो। जसन ए खेल भाटा व्यायामशाला पार्क पुस्तकालय वाचनालय बनातो गांव के छुकछुका साफ सफाई सुंदर बनाउन संगातो काजे ग्राम पंचायत के हक आसे मांतर असन बनातो होले कसन कर तो राय कहाँ ले आम के पैसा मेरे दे नहले आम चो पंचायत ने रलो कौन पैसा के खर्चा कर सकूं इस जमाए नियम कानून के गुटक गुटक जानतो काजे आम के जनपद ले नाले हुन विभाग ने पूछ पचारा कर तो राय तेबे आमी आम के मिरलो हक के नगत काम ने आनुक सकवा आरु काम बनले हरिक ने नाचुन गाउन भलवा।

0: ग्राम पंचायत की विकास गाथा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ग्राम पंचायत खेल मैदान व्यायामशाला आदि का संधारण विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे बलबीर सिंह कंच।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए नाटक दूर की ढोल। लेखक हैं सुभाष पांडे, प्रस्तुति जी श्याम की।

0: देखो जी, कान खोलकर सुन लो, साफ साफ कह देती हूँ, अब तुम्हारी 7-8 हजार की तनख्वाह से मैं घर नहीं चला सकती।
1: फिर वही पुराना राग, अरे सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए।
0: कान पके या नाक, सुनना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अरे ये भी कोई जिंदगी है? अच्छा? न फ्रिज, न वॉशिंग मशीन, न कार, न गले में हीरों का हार।
1: यानी कि पूरी जिंदगी बेकार।
0: और नहीं तो क्या, मुझे देखो और एक अपनी पड़ोसन मिसेस शर्मा को देखो।
1: तुम्हारी इजाजत हो तो आइंदा मिसेस शर्मा को भी देख लिया करूंगा।
0: क्या कहा, जरा फिर से कहना।
1: अरे मेरा मतलब वो नहीं जो तुम समझ रही हो। वैसे क्या हुआ है मिसेस शर्मा को?
0: होगा क्या, कभी गौर किया है उसके शान और शौकत पे?
1: हाँ भाई, उनकी आमदनी भी वैसी ही होगी।
0: क्यों ना हो, आज अगर उसके पास सब कुछ है तो ये उसके तेज दिमाग का कमाल है।
1: काश की ऐसी खूबी तुम में भी होती।
0: तुम्हारा मतलब, मैं बुद्धू हूँ, अनाड़ी हूँ?
1: अरे मैंने ऐसा कब कहा है, कभी तुमने सुना?
0: हाँ, जैसे मैं तो जानती ही नहीं, दिल ही दिल में कहते हो।
1: मैं तो मैं

0: मिलता हूँ।
1: मैं तुमसे क्यों चलूंगा भला?
2: वो इसलिए कि पैसे कमाने की शानदार तरकीब मैं जो जानती हूँ वो तुम्हारे बस की बात नहीं।
1: लगता है तुम पर पैसे कमाने का भूत सवार हो गया है।
2: क्यों ना हो, आखिर घर तो मुझे चलाना पड़ता है, तुम्हें नहीं। 10 से 5 ऑफिस में काम क्या करते हो समझते हो? तीर मार लिया।
1: देखो देखो शालू, कह देता हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। एक तो दिन भर ऑफिस में चकचक, घर आओ तो तुम्हारी बकवास।
2: अच्छा, अब मेरी बातें तुम्हें बकवास लगती हैं? कल को कहोगे मैं तुम पर बोझ हूँ, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाती हूँ, तुम्हारा सुख चैन छीन लिया है ना?
1: अरे मैंने ऐसे कब कहा है?
2: दिल ही दिल में कहते हो क्या, मैं नहीं जानती।
1: लो भाई, ये भी कोई बात हुई? आखिर तुम मुझसे लड़ने पर उतारू क्यों हो?
2: हाँ हाँ, मैं तो तुम्हें झगड़ालू लगती हूँ ना, मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते ताकि सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए।
1: देखो शालू, फालतू तिल का ताड़ मत बनाओ।
2: पैसे कमाने की तरकीब बताना क्या तिल का ताड़ है?
1: अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारा।

0: मम्मी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
1: क्या कहना चाहती हो बेटा?
0: यही कि मैं अब आइंदा कॉलेज नहीं जाऊंगी।
1: कॉलेज नहीं जाओगी? मगर क्यों?
0: दरअसल मम्मी, मैं ब्यूटी कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाली हूँ।
1: सो तो ठीक है बेटा, मगर कॉलेज क्यों नहीं जाओगी?
0: तुम क्यों नहीं समझती मम्मी, मुझे कैटवॉक की प्रैक्टिस करनी है।
1: अरे तो करो ना, तुम्हें मना किसने किया है?
0: वाह, ये भी अच्छी रही, कॉलेज जाऊंगी तो कैटवॉक की प्रैक्टिस कब करूंगी?
1: मगर बेटा, कॉलेज की पढ़ाई से कैट्सवॉक का क्या ताल्लुक है?
0: है मम्मी है, सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रहेगा तो कैटवॉक कब करूंगी?
1: यानी कि बिल्ली की चाल चले बिना कोई ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीत ही नहीं सकता।
0: सो तो है मम्मी।
1: एक बात कहूँ बेटा?
0: और क्या कहना चाहती हो मम्मी?
1: देखो मोनिका, असल सुंदरता मन की होती है, तन की नहीं।
0: फिर वही तकिया नूसी।
1: मगर बेटे मेरी बात तो सुनो।
0: देखो मम्मी, आपने मुझे इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने से मना किया तो फिर समझ लेना।
1: मगर बेटे मेरी बात तो सुनो।
0: मुझे कुछ नहीं सुनना है।
1: हे भगवान, अब इस लड़की को कैसे समझाऊं?
0: मम्मी तुम मुझे क्या समझाओगी, मैं लड़की हूँ ना, इस घर में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। और एक जैकी है जिसकी हर इच्छा पूरी की जाती है। जैकी कहता है, मम्मी मुझे ये चाहिए तो हाजिर, मम्मी मुझे वो चाहिए तो वो भी हाजिर। उसे कोई डांटता नहीं, उससे कोई सवाल नहीं पूछता। जैकी जो भी करे वो सब ठीक है, और मैं जो कुछ करूँ सब गलत है।
1: अरे अरे मोनिका, तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें किसने भर दी बेटा? बेटा कुछ तो समझा करो।
0: मैं सब समझती हूँ मम्मी, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो।
1: हे भगवान, अब इस लड़की को कैसे समझाऊं?
0: देखो मम्मी, जो माता पिता अपने बच्चों की खुशी नहीं देख सकते, उनसे तो भगवान भी रूठ जाता है।
1: अच्छा बेटा, तुम जीती मैं हारी, ठीक है, लो ब्यूटी कॉम्पिटिशन में हिस्सा, लेकिन नाक मत कटाना।
0: कैसी बात करती हो मम्मी, तुम देखना इस कॉम्पिटिशन में मेरा ही पहला नंबर होगा।
1: अब जब तुम्हें इतना यकीन है तो जरूर रहेगा।
0: पर मम्मी, आपको मालूम है ब्यूटी कॉम्पिटिशन के लिए स्पेशल कॉस्मेटिक्स की जरूरत होती है।
1: मैं कुछ समझी नहीं।
0: ओफो, ब्यूटी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए खास तरह का मेकअप करना पड़ता है।
1: खास तरह का?
0: और नहीं तो क्या, ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीतना कोई हंसी खेल नहीं है।
1: हंसी खेल नहीं है तो क्या है?
0: वो सब आपके समझ में नहीं आएगा मम्मी।
1: हाँ भाई, हम तो ठहरे पुराने जमाने के, है ना
0: मम्मी? मेरे कहने का मतलब है कि...
1: अब बेटा, तुम्हारे कहने का जो भी मतलब हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं।
0: मम्मी तुम देखना, अगर मैं ये कॉम्पिटिशन जीत गई ना, तो माई गॉड, मेरा कितना नाम होगा।
1: और अगर तुम ये कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाई तो?
0: दिस इज इम्पॉसिबल।
1: मोनिका, तुम्हारे दिमाग में ब्यूटी कॉम्पिटिशन का जुनून किसने भर दिया?
0: किसी ने भी नहीं, मेरी अपनी मर्जी है।

0: हाय डैड।
1: हाय मॉम।
2: लो आ गया अपना नौनिहाल, जीवित बाप को डैड कह रहा है।
1: अरे डैड, पिताजी, पापाजी, बाबूजी पुकारना सब पुरानी स्टाइल है। अरे डैड कहकर पुकारने में जो थ्रिल है, बाकी में कहा।
2: वाह बेटे वाह, देखा शालू, इसे कहते हैं कंप्यूटर युग का मॉडर्न सन।
3: आखिर बेटा किसका है?
1: अच्छा याद दिलाया आपने, मुझे 2-4 दिन के भीतर नया कंप्यूटर खरीदना है डैड।
3: लेकिन बेटे तुम्हें कंप्यूटर चलाना तो आता ही नहीं।
2: फिर तुमने इसका कोई कोर्स भी तो नहीं किया है, क्या करोगे कंप्यूटर लेकर?
1: अरे डैड, उसमें फॉरेन के गेम शो आते हैं, सवालों के सही जवाब दिए तो लाखों डॉलर्स के इनाम।
3: तब तो बेटे जरूर कंप्यूटर लेना।
2: लेकिन इसके लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
3: अरे तुम अपने ऑफिस से लोन ले लेना 30-40 हजार का।
2: और इनाम नहीं मिला तो?
1: मम्मी डैड को समझाओ ना।
3: बच्चों का जब हौसला नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उन्हें हताश तो मत करो जी।
2: लेकिन ये कंप्यूटर चलाएगा कैसे, इसने तो सीखा ही नहीं है।
1: ओहो डैड, मेरा एक दोस्त है, प्रोग्रामिंग करने के सिर्फ 5 हजार लेता है, वो भी एडवांस में।
3: मैं दे दूंगी 5 हजार। अरे ब्याज पे रकम उठा लूंगी।
2: कंप्यूटर किराए पर भी तो लाया जा सकता है।
1: किराए पर? किराए पर कंप्यूटर लाएंगे तो आपकी क्या इज्जत रहेगी डैड?
2: इसकी फिक्र तुम मत करो।
1: ठीक है आपकी न सही, मेरे दोस्त तो मेरी हंसी उड़ाएंगे।
3: और नहीं तो क्या, आजकल तो घर घर में कंप्यूटर होता है।
2: मगर सब लोग गेम शो खेलने के लिए कंप्यूटर नहीं खरीदते हैं।
1: फिर क्यों खरीदते हैं?
2: अच्छा अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा।

0: ना बेटे, फिर मैं भी मिसेस जेटली को बताऊंगी। हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हमारे घर में भी कंप्यूटर है।
1: यानी कुल मिलाकर यह तय हुआ कि घर में हर हाल में नया कंप्यूटर आएगा, है ना?
0: हाँ, नहीं तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी।
2: जरा सोचिए डैड, कंप्यूटर पर जब ये कैप्शन आए

0: ये हुई ना कोई बात डैड, मैं तो चला अपने दोस्तों को ये खुशखबरी सुनाने। थैंक यू मॉम, ओके डैड।
1: मोनिका, ये तुम क्या कर रही हो?
2: डैडी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी।
1: अरे मुझे पता भी तो चले ये सब है क्या।
2: जो कुछ पूछना है मम्मी से पूछिए, पर प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए।
1: ठीक है ठीक है, अब मैं तुम्हारी मम्मी से ही पूछता हूँ। अब शालू,
3: शालू
4: आई। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो?
1: देख रही हो मोनिका की हरकतें? कभी तो आईने के सामने आड़ा टेढ़ा मुंह बनाती है, तो कभी बिल्लियों जैसी चाल चल रही है। ये सब क्या है भाई?
4: दरअसल मोनिका सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में भाग लेने की तैयारी कर रही है।
1: ब्यूटी कॉम्पिटिशन यानी सौंदर्य प्रतियोगिता में?
4: हाँ भाई हाँ, देखना जरूर पहले नंबर पे आएगी।
1: वैसे बिटिया कितने दिनों से ये सब प्रैक्टिस चल रही है?
2: पिछले 2 महीने से। मम्मी मेरे कॉस्मेटिक्स आ गए।
1: कॉस्मेटिक्स? क्या घर में क्रीम पाउडर खत्म हो गया है?
4: अरे ये स्पेशल कॉस्मेटिक्स हैं, मुंबई से मंगवाए हैं, पूरे 7,000 के।
1: 7,000 का? अच्छा, इसे लगाकर मोनिका कॉम्पिटिशन जीत जाएगी।
4: जरूर जीतेगी, इसे बनाने वाली कंपनी का ये दावा है।
1: हे भगवान, गए मेरे गाड़ी कमाई के पैसे पानी में।
2: मम्मी मेरे कैटवॉक देखना, मम्मी ठीक है ना?
4: तुम उस तरह क्यों नहीं चलती जैसे टीवी में मिस वर्ल्ड चलती है?
2: मम्मी कोशिश तो कर रही हूँ।
1: करो बेटा करो, खूब कोशिश करो। वैसे तुम इतनी मेहनत अपनी पढ़ाई के लिए करती तो तुम्हारा रैंक फर्स्ट क्लास में होता। हाँ
4: तुम कुछ नहीं समझते। अरे बिटिया इस कंपटीशन में जीत गई तो जानते हो कितना नाम होगा।
1: और नहीं जीत सकी तो?
2: डैडी अगर मैं ये कंपटीशन नहीं जीत सकी तो अपनी जान दे दूंगी।
4: सुन लिया बेटा, तुम हिम्मत मत हारना, तुम जीतोगी और जरूर जीतोगी।
1: चलो जरा बाहर तो चलो, तुमसे एक बात कहनी है।
4: क्यों क्या बात है, यही कौन है?
1: नहीं नहीं तुम जरा बाहर आओ।
4: हाँ अब बताओ क्या बात है।
1: शालू तुम्हें हमारी आर्थिक स्थिति का कुछ अंदाजा है? अरे बच्चों के इस प्रकार के फालतू शौक पर हम रुपये लुटाते रहे तो घर कैसे चलेगा?
4: तुम उसकी फिक्र क्यों करते हो? मिसेस शर्मा ने रुपए कमाने की एक शानदार योजना के बारे में बताया है।
1: कैसी योजना है ये, जरा मैं भी तो सुनूं।
4: नहीं अभी नहीं, जब मेरे हाथ में 40-50 हजार नोटों के हरे हरे बंडल आएंगे तब बताऊंगी इस योजना का राज।
1: कहीं तुम्हारी लॉटरी तो नहीं लग गई?
4: ओफो क्यों मेरा सर खा रहे हो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है?
1: जाता हूँ बाबा जाता हूँ। वैसे ये मिसेस शर्मा है कौन?
4: मेरी नई पड़ोसन, कितनी अच्छी है बेचारी।
1: अच्छा?
4: और देखो तो गहनों से लदी है, रोज नई नई साड़ियाँ कार, अमेरिका जापान घूम के आई है।
1: अच्छा?
4: लेकिन घमंड? घमंड बिल्कुल नहीं, आए दी है, मुझे तो सगी बहन से भी ज्यादा चाहती हैं। कह रही थी देखना शालू तुम्हें भी एक दिन जरूर अमीर बनाऊंगी, पास में इतने पैसे होंगे कि जो चाहे वो खरीद सकोगी, विद फैमिली फॉरेन टूर पर जाना चाहोगी तो वो भी हो जाएगा।
1: अच्छा?
4: मैंने हम सब का पासपोर्ट बनवाने के लिए भी उससे कह दिया है।
1: अरे वाह भाई, किसी दिन हमें भी दर्शन कराओ मिसेज वर्मा।
4: शर्मा
1: शर्मा, शायद हमारा भी अगला पिछला जन्म सुधर जाए।
4: अच्छा मुझे किचन में भी काफी काम है और आप महाशय कार्यालय के लिए प्रस्थान करें तो बड़ी कृपा होगी।
1: ठीक है मैं जा रहा हूँ।

0: नमस्ते भाई साहब।
1: नमस्कार। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं।
0: मुझे आपने नहीं पहचाना जी, मैं सती शर्मा हूँ, मिसेस सती शर्मा। आप मेरे हस्बैंड को तो जानते ही होंगे।
1: आपके हस्बैंड?
0: सत्यवादी शर्मा नाम है उनका।
1: आप लोग रहते कहाँ हैं?
0: आपके पड़ोस में ही तो रहते हैं, शालू ने नहीं बताया आपको?
1: ओ अच्छा, अब समझा। तो आप हैं मिसेस शर्मा। शालू बड़ी

0: तारीफ कर रही थी आपकी।
1: शालू तो मेरी बहन जैसी है।
0: हाँ सो तो है। आप शायद हम सबका पासपोर्ट भी बनवा रही हैं, है ना?
1: तो शालू ने आपको बता ही दिया। मैंने उसे कितना समझाया था कि कुछ दिनों के लिए सस्पेंस रखना।
0: अरे मैं भी कैसा आदमी हूँ, मैंने आपको बैठने के लिए भी नहीं कहा।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनों के साथ फॉर्मेलिटी कैसी।
0: हाँ हाँ सो तो है।
1: शालू घर में नहीं है क्या?
0: है ना, शायद किचन में होगी। शालू, शालू देखो तो, तुमसे कोई मिलने आया है।
2: कौन है?
0: आप बैठिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है।
1: हाय शालू, क्या कर रही हो?
2: अरे दीदी आप आइए आइए, मैं तो बस आपका ही इंतजार कर रही थी।
1: अच्छा तो लो भाई, हम आ गए। शालू क्या सोचा तुमने उस प्लान के बारे में?
2: दीदी एक बार फिर से समझाइए ना प्लीज।
1: अरे बहुत इजी प्लान है। पहले तुम 5,000 कंपनी के पास जमा करो, बदले में तुम्हें कंपनी से 4 फार्म मिलेंगे। फिर तुम अपने जान पहचान वाले 4 लोगों से फार्म भरवा कर उनसे भी 5,000 ले लेना। उन 4 लोगों को भी 4-4 फार्म मिलेंगे, वे भी 4 लोगों से 5,000 इकट्ठे करके कंपनी में जमा करेंगे। ऐसे जब 1,000 मेंबर बन जाएंगे तो कंपनी से तुम्हें 50,000 रुपये नगद या हीरो का हार मिलेगा। है ना बढ़िया योजना?
2: मगर दीदी मेरे पास फिलहाल 5,000 तो नहीं है।
1: अरे तुम्हारे गले में ये जो सोने का हार है ना, कम से कम 3 तोले का तो होगा ही। इसे गिरवी रखकर किसी से 5,000 ले लेंगे।
2: दीदी इसमें कोई रिस्क तो नहीं है?
1: अरे नहीं शालू, कोई रिस्क नहीं। फिर मैं जो हूँ, अपनी दीदी पर विश्वास तो है ना। अच्छा ऐसा करो, अपना हार तुम मुझे दे दो, तुम्हारे नाम पर मैं 5,000 जमा कर दूंगी। अरे हाँ, तुम्हारा पासपोर्ट भी तो बनवाना है। खैर उसका इंतजाम भी मैं कर लूंगी।
2: आप कितनी अच्छी हैं दीदी, लीजिए ले जाइए मेरा हार।
1: देखना शालू, तुम्हारे गले में इसके बदले हीरो का हार होगा।
2: बस दीदी आपकी मेहरबानी और मदद भर चाहिए। दीदी

0: सकता है।
1: काश कि बीवियों के मामले में भी यही बात होती।
0: क्या मतलब?
1: यही कि एक से शादी होती तो एक और पत्नी साथ में फ्री मिल जाती, कम से कम ये दूसरी वाली तो समझदार निकलती।
0: मैं सब समझती हूँ, साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि अब मैं तुम्हें नहीं भाती।
1: अरे शालू मैं तो मजाक कर रहा था। शालू तुम्हारा गला सूना क्यों है? क्या हार उतार कर कहीं रख दिया है तुमने?
0: जी वो तो
1: ये वो क्या कर रही हो? कहाँ गया हार? क्या गुम हो गया?
0: जी उसे तो मिसेस शर्मा ले गई। मुझे 5,000 कंपनी में जमा कराने थे ना।
1: अच्छा।
0: मेरे पास पैसे तो थे नहीं। हार गिरवी रख कर मेरे पैसे जमा करवा देंगी मिसेस शर्मा।
1: सत्यानाश, करा चुकी जमा और तुमने आंख मूंद कर उसकी बात पर भरोसा कर लिया?
0: तुमने उसकी योजना के बारे में सुना भी नहीं और बिला वजह किसी पे शक किए जा रहे हो।
1: मुझे सब पता है इस बेकार की योजना के बारे में।
0: ठीक है, 3 सप्ताह बाद जब मुझे 50,000 या हीरों का हार मिलेगा तब देखना।
1: अरे भगवान, हार उसके हवाले करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता।
0: हाँ तुमसे पूछती तो क्या तुम हार देने देते? पैसे बनाने के लिए मैं कुछ अच्छा काम करूं तो तुम्हें अखरता है? आखिर किसके लिए कर रही हूँ ये सब, बोलो बताओ।
1: अच्छा अच्छा बाबा, रोना धोना बंद करो, बच्चे आकर देखेंगे तो समझेंगे कि मैंने तुम्हें पीटा है।
0: हाँ बस अब पीटने की कसर ही तो बाकी रह गई है, जल्दी से ये भी अरमान निकाल डालो।
1: देखो शालू, बात का बतंग मत बनाओ।
0: मेरी तो आदत ही ऐसी है। अच्छा ये तो बताओ जैकी के नए कंप्यूटर का क्या हुआ?
1: कंप्यूटर उससे मिल गया है, जैकी दुकान से उठाकर ले गया है कंप्यूटर अपने दोस्त के घर।
0: दोस्त के घर? वहाँ क्यों ले गया?
1: अपने दोस्त के साथ मिलकर लाखों डॉलर इनाम के लिए गेम शो खेलेगा तुम्हारा लाडला।
0: और कंप्यूटर की कीमत?
1: पैसे चुकाने के लिए ये गुलाम जो हाजिर है, आपकी भी कोई ख्वाहिश हो तो बता दीजिए और लोन ले लूंगा ऑफिस से।
0: रहने दो, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं।
1: हाँ हाँ, तुम्हें भला पैसों की क्या जरूरत है? तुम तो 50,000 या हीरों के हार की मालकिन जो बनने वाली हो।
0: जरूर बनूंगी, क्यों जलन हो रही है क्या?
1: नहीं नहीं, मन में ठंडक का तूफान उमड़ रहा है।
0: जलीकटी सुनाने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी नहीं है।
1: मैं तुम्हें जलीकटी क्यों सुनाऊंगा भला, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है, तरस।
0: हाँ हाँ मैं अबला जो ठहरी, मुझ पे तरस नहीं खाओगे तो किस पे खाओगे?
1: वैसे शालू, आजकल तुम्हारी पड़ोसन, क्या नाम बताया तुमने? हाँ मिसेस शर्मा, उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं।
0: मिसेस शर्मा के दर्शन के लिए बड़े उतावले नजर आ रहे हो, क्या बात है, मन को भा गई क्या?
1: तुम भी कैसी बातें करती हो, मैं ठहरा पक्का पत्नी व्रता, तुम्हारे सिवा किसी दूसरी औरत के बारे में मैं सोचूं, इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आ सकती है देवी जी?
0: ठीक कहा तुमने, जहाँ तक मिसेस शर्मा का सवाल है अपने काम में बिजी होंगी।
1: सच,
0: जरा भी फुर्सत मिली तो देखना दौड़ी चली आएंगी
1: खुशियों का पिटारा लेकर।
0: बिल्कुल, जब वो आएंगी तो ढेर सारे रुपए लेकर आएंगी, देखना तुम।
1: और अगर नहीं आई तो?
0: तुम भी अभी से उसकी नीयत पर शक करने लगे, ये अच्छी बात नहीं।
1: हाँ हाँ, अच्छे बुरे का फैसला तो मिसेस शर्मा के आने के बाद ही होगा, है ना?
0: हाँ बिल्कुल होगा।
1: चलो यही सही, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं।
0: आज 3 हफ्ते पूरे हो गए, संदेश नहीं मिला, कहीं हार लेकर? नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं हो सकती, जरूर अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर गई होगी, आ जाएगी 2-4 दिनों में।
1: क्यों शालू, क्या बात है, ऐसे मुंह उतार कर क्यों बैठी हो?
0: मैं सोच रही थी
1: यही कि मिसेस शर्मा ने अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिए, है ना?
0: हाँ यही बात है।
1: तो आपको एक खुशखबरी दे दूं, आपकी मिसेस शर्मा अपने पति परमेश्वर के साथ इस शहर से रफू चक्कर हो गई है, कई लोगों को बेवकूफ बनाया है उसने, लाखों रुपये और जेवरात बटोर कर ले गई है, यकीन ना हो तो पुलिस थाने में फोन करके पूछ सकती हो।
0: हाय राम, मेरा सोने का हार, आग लगे उसके मुंह पे, बहनापा जोड़कर मुझे ही बेवकूफ बनाया।
1: रो मत, पुलिस को उसके किराए के मकान से कुछ रकम और जेवरात मिले जो वो हड़बड़ी में छोड़ गई है।
0: अभी चलिए पुलिस स्टेशन, में अपना हार पहचान लूंगी।
1: चलते हैं भाई चलते हैं, अभी तो 2 अच्छी खबरें तुम्हें और सुनानी है।
0: कौन सी अच्छी खबर है?
1: पहली खबर तो ये है कि तुम्हारे लाडले से कंप्यूटर गेम शो नहीं बन सका तो गुस्से में आकर उसने कंप्यूटर जमीन पर पटक डाला और मेरे गाल पर सीधे 40,000 की चपत लगा दी।
0: और दूसरी खबर?
1: दूसरी खबर यह है कि आपकी मोनिका बिटिया को ब्यूटी कंपटीशन में एंट्री नहीं मिली है।
0: क्यों एंट्री नहीं मिली? क्या मोनिका सुंदर नहीं है?
1: सुंदर तो है, लेकिन निर्णायकों ने उससे सामान्य ज्ञान के सवाल

0: पूछे जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला, बस फिर क्या है, प्रतियोगिता से बाहर।
1: यानी 7,000 की कॉस्मेटिक्स भी बेकार साबित हुए।
0: जी हाँ, अब कान खोलकर सुनो मेरी बात। मुझे तुम्हारे पैसे कमाने पर कोई आपत्ति नहीं है, रही बच्चों के शौक की बात तो उनके खर्चे मैं भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक हद तक।
1: क्या अमीर बनने की कोशिश करना बुरी बात है?
0: मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन संपन्न बनने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सोच समझकर योजना बनानी पड़ती
1: है। अब हमें नुकसान हुआ तो ये हमारी बदकिस्मती ही तो है।
0: बदकिस्मती नहीं, ना समझी है। ना
1: कौन सी ना समझी की है मैंने?
0: अब ये भी बताना पड़ेगा क्या?
1: हाँ हाँ बताना पड़ेगा।
0: ठीक है, पहले मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। कैसे तुमने मिसेस शर्मा पे विश्वास कर लिया? चंद दिनों की जान पहचान में उसने तुमसे बहनापा जोड़ लिया, रातों रात अमीर बनने के सपने तुम्हें दिखाने लगी, उसने मीठी मीठी बातों का ऐसा जाल बुना कि तुम उसमें खुशी खुशी फंसती चली गई। अब देखो इस सब का नतीजा क्या निकला।
1: अब मुझे क्या पता था कि मुझसे वो धोखा करेंगी?
0: अरे सोचो तो भला, उसने सबसे पहले तो तुम्हें अपने विश्वास में लिया, केक पेस्ट्री भिजवाती रही, तुम्हें अमेरिका और जापान घुमाने का झांसा देती रही, और बदले में तुमसे रुपये ऐंठती रही।
1: ये भी तो हो सकता है कि उसे बिजनेस में घाटा हो गया।
0: हाँ जरूर घाटा हुआ होगा, तुमसे और ज्यादा रुपये ऐंठ नहीं सकी तो बेचारी को जरूर घाटा ही हुआ होगा।
1: लेकिन अब मैं क्या करूँ?
0: करना क्या है, बस बैठे बैठे अपनी नादानी के बारे में सोचो, अपने आप से पूछो तुमने सही किया या फिर गलत।
1: शायद तुम ठीक कह रहे हो।
0: शायद नहीं, मैं यकीनन ठीक कह रहा हूँ मैडम।
1: जो हो, लेकिन मेरा हार तो चला गया। कितने अरमानों से तुमने मेरे लिए बनवाया था, मेरी तो मती मारी गई थी जो मैं उसके चक्कर में आ गई।
0: अच्छा अच्छा रो मत और चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन।
1: पुलिस स्टेशन क्यों जाना है?
0: अपना हार वापस लाने।
1: क्या मेरा हार मिल गया?
0: हाँ, हड़बड़ी में मिसेज शर्मा जो जेवरात छोड़ गई उसमें तुम्हारा हार भी शामिल है।
1: तो चलो ना, जल्दी चलो, देर क्यों कर रहे हो।
0: चलते हैं बाबा, चलते हैं। और हाँ, वहां से खास दुकान पर चलेंगे।
1: क्या लेना है दुकान से?
0: अरे वहाँ अकल की पुड़िया मिलती है, एक खरीदो तो दूसरी फ्री में दी जाती।
1: देखो
0: है।
1: देखो अब तुम मुझे बना रहे हो।
0: कसम से सच कह रहा हूँ।
1: अच्छा जरा ठहरना तो मैं तुम्हें अकल की पुड़िया देती हूँ।
0: 50,000 या हीरो का हार पाने के लिए, है ना।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक दूर की ढोल। लेखन सुभाष पांडे का था। कलाकार थे जी श्याम, करमजीत कौर, मनिंदर सिंह देवगुण, वैशाली थंथराटे और इंदिरा साय। प्रस्तुति थी जी श्याम की।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
5: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है

0: 2226666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजने को हैं हमारा अगला कार्यक्रम। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: Dear listeners, you have just heard the Chakyar Kutha presented by Shri Margi Madhu and party. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur.
0: Kshetriya Lok evam Sugam Sangeet ki Akhil Bharatiya karyakram ki agli prastuti mein hum aapke liye Shri Amal Antony dwara prastut Malayalam Sugam Sangeet lekar aaye hain. Shri Amal Antony ek parshva gayak, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य

0: वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocal songs presented by Shri Amal Antony. Shri Amal Antony is a playback singer, music composer, choral arranger and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani. A gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions, Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the P. Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: Aaj raat, Shri Amal Antony Char Sugam Geet प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चारों गीतों के बोल मलयालम के प्रसिद्ध फिल्म गीतकार एवं कवि श्री रफीक अहमद ने लिखे हैं। इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिया है।
1: Tonight, Shri Amal Antony presents four light vocal songs. The lyrics of all songs have been written by Shri Rafiq Ahmed, the renowned Malayalam film lyricist and poet. The music has been composed by Shri T. S. Radhakrishnan, a noted music director who is especially acclaimed in the field of devotional music.
0: Shri Krishna aur Radha ka sambandh matra laukik prem nahi hai, balki wo jeevatma aur paramatma ke divya milan ka prateek hai. आइए सबसे पहले राधा माधव के प्रेम का सुंदर चित्रण करने वाला एक गीत सुनते हैं।
1: द रिलेशनशिप बिटवीन श्री कृष्णा एंड राधा इज नॉट मियरली अ वर्ल्डली रोमांस। इट सिंबलाइजेस द डिवाइन यूनियन बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम बीइंग। Let us begin by listening to a song that beautifully portrays the love of Radha and Madhava.

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of

प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की

0: मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes, and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: कर धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बासुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक You were listening to a presentation of Malayalam Light Songs by Shri Amal Antony. The songs have been written by Shri Rafiq Ahmed and composed by Shri T. S. Radhakrishnan. He was accompanied by Shri Wilson K. X. on keyboard, Shri Babu Varghese on rhythm pad, Shri C. N. K. Murthy on flute, and Shri C. Shri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath, main Bhav Tarani. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने

0: संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding